0: से रोग आते हैं?
1: परवल के पत्तों में दिखता है झुलस रोग एक होता है और असित रोग होता है। हाँ, इसी में दो तरफ को होता है, चूर्णित असित रोग होते हैं हम लोग बोलते हैं इसका पाउडर मिल्ड्यू, और मृदरोमित असित रोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। ऐसा ही पत्ता में दिखने वाला रोग होता है।
0: जी सर, सबसे पहले आप हमें हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि झुलस रोग किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उसे किस प्रकार से पहचाने और उसका बचाव क्या है?
1: हाँ, अभी हम बात करेंगे परवल में झुलस रोग के बारे में। झुलस रोग क्या होता है, इसी का पत्ता में दिख देता है हम लोग को वहाँ पे पत्ता में ऊपर आपको निगरानी कैसे करना है, सारा पत्ता को हम लोग को देखना है, उसी के ऊपर हम लोग को दिखता है भूरे से काले रंग का छोटे छोटे चब्बी दिख जाते हैं। अनुकूल जब वो अनुकूल मौसम होता है, अभी हम लोग देखते हैं शाम में हम लोग का ये बरसात आ जाता है, दिन में हम लोग का वो सनलाइट ज़्यादा हो जाते है, वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं वातावरण उम्र ज़्यादा हो जाए, तभी हम लोग को ये पत्तियों को सूखने के लिए दिख सकता है। जब भी हम दिखते हैं सूखने वाला पत्ता, हम उसी के सामने जाके उसी का देखने से हमको पता चलता है वहाँ पे भूरे से काले रंग के छोटे छोटे छब्बे दिखते थे, वो जो छोटे छोटे छब्बे एक दो मिलकर कैसे हो जाएगा, पूरा झुलस रोग हो जाएगा। इसी से क्या हो जाते है, पत्ता पूरा सूख जाता है। इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्षमता कम जाता है, वो इसी की वजह से हम लोग का ये उत्पादन और गुणवत्ता भी कम हो जाएगा।
0: जी सर, बचाव के लिए क्या करेंगे?
1: बच्चा के लिए हम लोग को क्या, पहला भी जो भी रोग होते हैं हम लोग को निगरानी अच्छा से करना है। रोगग्रस्त पत्तों को पहला निकाल कर नष्ट करना है। खेत में जलभराव ना होना चाहिए और बालों में पुरिया दूरी से नहीं होना चाहिए। आवश्यक पर हम लोग को जो आवश्यक है, जो खाद देते हैं, जो पानी हम देते हैं, जो आवश्यकता वजह से ही देना पड़ेगा। हमारे पास जो खाद ज़्यादा है तो ज़्यादा खाद दिया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पत्ता हो जाएगा। पत्ता ज़्यादा हुआ तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो झुलस रोग का प्रॉब्लम से दिख जाता है। इसी के आवश्यकता से जो भी आवश्यकता, जब भी हम बोल देते परवल में छिड़काव करो फफूंद नाशक, नहीं ऐसा कोई हो नहीं होगा। आवश्यकता जरूरत हुआ तो हम लोग जो ग्रीन लेबल्ड जो होता है फफूंद नाशक, उसी का ही किसी का कृषि विज्ञानी का संपर्क करें, उसी के करें। जो आपको लिए आपको जानकारी होना है तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन डाइजिम है, जो जैसा फफूंद नाशक हम लोग छिड़काव कर सकते हैं।
0: जी, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही छिड़काव
1: करना चाहिए,
0: उतनी ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर, मतलब झुलस रोग से अगर बचना है तो खादों का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है।
1: जो खाद और पानी कम देने, जितना चाहिए उतना। जी, जब हम पानी ज़्यादा देते खाद ज़्यादा देते पत्ता ज़्यादा हो जाएगा, बाद में वो सूखने के लिए वो जो फफूंग है, वो झुलस रोग करने वाला फफूंग है, वो पत्ता में आराम से दिख जाएगा। इसी वजह से हम लोग का गुणवत्ता और उत्पादन भी घट जाएगी।
0: जी, तो हमारे किसान भाई बहनों, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप खाद का इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से आप सिंचाई करें। सर, अब हम असीता रोग के बारे में बात करते हैं। तो असीता रोग कितने प्रकार के होते हैं और उसकी पहचान क्या है?
1: असीता में इसमें दो तरफ होता है, असीता रोग में दो तरफ होता है, चूर्णित असीता एक हो जाते हैं और मृदरोमित असीता होते हैं। हम लोग ये बोल देते हैं मिल्ड्यू, इसमें मिल्ड्यू बोल देते पाउडरी मिल्ड्यू नहीं तो डाउनी मिल्ड्यू। चूर्णित असीता क्या होता है, इसमें कैसे दिखता है ना, आपको पत्तिया के ऊपर आपको आराम से वो देखते थे सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ आपको दिख जाते हैं। जो भी पत्तिया आप देखते हैं उसी के ऊपर सफ़ेद का चूर्ण जैसा पदार्थ दिख सकता है, उसी का पत्ता के नीचे आपको पूरा पीला रंग हो जाता है। जो आपका पदार्थ जो है वो सफ़ेद पूरा पत्ता में हो जाएगा ना, इसी वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्षमता पूरा घट जाएगा। बाद में वो इसी में बाद में जो पत्ता हो जाते ना वो पूरा सूखने के लिए चला जाएगा, जो पूरा पौधा सूख जाएगी, इसी वजह से उत्पादन बहुत घट जाता है इसमें। और एक है इसमें असिता, मृदरोमित असिता। अभी हम बोल देते वो सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ तो ऊपर दिखते थे, अभी मृदरोमित में क्या होते हैं उसमें उल्टा हो जाते, उसमें ऊपर आपको दिखता है पीला रंग का जैसा, पीला रंग श्रेणिया के जैसा आपको ऊपर दिखता है, नीचे नीचे आपका नीचे पत्ते के नीचे साइड में क्या होता है आपका फफूंग दिख सकते है, वो बैगन बैगनी रंग से बैंगनी रंग का फफूंग दिख सकते है, इसी की वजह से क्या हो जाते है आपको ज़्यादा उत्पादन घट जाते हैं। ये दोनों रोग, एक रोग आता है जून जुलाई में, एक रोग आता है जब गर्मी ज़्यादा, वो चूर्णित असति रोग आते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है ना, उसी टाइम में ये रोग दिख सकता है। जब उम्र ज़्यादा होता है, मृद असित होते हैं ना वो डाउन मिल्ड होते हैं हम लोग, जब उम्र ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग शाम में हम लोग दिख सकते हैं, वो बारिश आते रहते हैं, अभी जो आजकल हम देखते हैं ना वही वातावरण, शाम में बारिश होता है, दिन में बहुत इसी का सनलाइट ज़्यादा होता है, इसी के वजह से उम्र ज़्यादा, जब उम्र ज़्यादा होता है मृदरोमित का डाउन मिल्ड्यू का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा।
0: जी सर, इनसे बचाव के लिए क्या करें?
1: दोनों के बचाव के लिए हम वही बोले थे, जो भी परवल में पत्ता में आने वाले हैं उसमें पहला हम लोग को वो खाद और इसका पानी देने में जितना चाहिए उतना दीजिए, जितना आप ज़्यादा खाद दिए होते हैं ज़्यादा पत्ता हो जाता है, पत्ता वजह से पत्ता ज़्यादा होने से पत्ता जनिक फफूंग हो जाते हैं ना, उसी का फैलने का ज़्यादा अवकाश मिलेगा। और खेत और खेती में क्या होते हैं ना, जो भी पत्ता दिखता है आप अभी आप चूर्ण जनिक दिखाए और मृद जनिक दिखे, जब भी आप दिखते हैं उसी का पत्ता का पहला हटा दीजिए और नष्ट कर रहे हैं वो पहले के, क्योंकि वो फफूंग हवा से फैल जाता है और पानी से फैल जाते हैं, जो आप पहले देखते हैं ना उसी का पहला निकाल कर इसको नष्ट करना है। खेत में जल प्रभाव अच्छा से देखना पड़ेगा और बालों में पूर्णित दूरी से, जब भी जैसे हम करते हैं प्लांटिंग का एक पौधे से दूसरा पौधे को थोड़ा डिस्टेंस अच्छा से करें, जैसे होना चाहिए सूर्य का रश्मि अंदर घुसना है और हवा पूरा अच्छा से सफाई होना चाहिए, जो जो फफूंग होता है ये फफूंग दोनों का फफूंग हो जाता है, जो जो कचरा हाँ पत्ता का कचरा हो नीचे गिरता है ना उसी से फैलता है, इसीलिए हम लोग को अच्छा से रखना है खेत को।
0: जी सर, तो मतलब अगर कोई ऐसे पत्ते दिख जाए जिनके ऊपर ये रोग लगे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि उसे नष्ट करें
1: पहला
0: जी, और साथ ही खाद और पानी का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए।
1: जब भी ये रोग ज़्यादा हो जाते हैं ना तब भी हम लोग को फफूंग नाशक का छिड़काव करना है, जब भी इसमें फफूंग नाशक के चूड़िया असिता में हम लोग फफूंग नाशक एक्साकोनाजोल एक फफूंग नाशक है 1 ml/L छिड़काव कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत वो चीफ एंड बेस्ट है उसी का भी कर सकते हैं, और मृदरोमित के लिए हम लोग मेटालाक्सिल MZ है उसमें उसी का छिड़काव करने से रोग पूरा घट जाएगा।
0: जी, यानी कि अगर कम है तो आप पत्तों को नष्ट कर दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है तो फिर आप छिड़काव।
1: वही बोल रहा हूँ अभी, ये जैसा परवल इतना क्रॉप है इसमें ज़्यादा फफूंग नाशक के लिए हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, जो भी आपको करना है तो प्रिकॉशन कीजिए ना, उसी से हम ये इसका कम कर सकते हैं।
0: जी सर, सर अब विषाणु जनित रोगों के बारे में आप हमें बताइए कि वो रोग कौन कौन से हैं और पहचान कैसे किया जाए?
1: अभी हम सुना है पत्ता में आने वाला फफूंग का फफूंग वजह से होने वाले दो रोग जो जुलास के उसी के बारे में, और इसी पत्ता में वो जब हम लोग का मार्च अप्रैल में होता है ना इसी में विषाणु रोग दिख सकते हैं, इसी का हम लोग बोलते हैं वायरस रोग बोलते हैं ना, इसी में क्या होता है पूरा पत्ता पीला रंग हो जाता है, इसी को सब लोग जानते हैं। जब पता इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पत्ता में एक जगह हरा रंग होता है, एक जगह पीला हो जाता है। ऐसा नहीं एक पत्ता पीला हो गया दूसरे वजह से, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकता है और दूसरे वजह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं, मोज़ेक होना चाहिए। जैसा एक एक पीला और हरा रंग का मोज़ेक, दोनों मिक्सचर हो सकता है, इसी के हम बोल देते हैं मोज़ेक वायरस। ओके, और पीलापन भी हो जाता है, पूरा पत्ता दूर से भी हम लोग को दिख सकता है, पीलापन हो जाता है। और पौधे पूरा वृद्धि जो भी होता है ना, फूल और फल आने वाला पूरा अचानक वो घट सकते हैं, क्योंकि वो जो वायरस आता है पूरा पूरा पौधों को नुकसान करेगा। वो ये दो ये विषाणु रोग फैलता है कीड़ा से, क्योंकि ये वायरस से कीड़ा से फैलता है। जो हमारा जो कीड़ा हम देखते हैं उसमें सफ़ेद मक्खी देखते हैं, एफिड देखते हैं, थ्रिप्स देखते हैं, ये सब चीज़ें ना, यही चीज़ वो ये कीड़ा ये वायरस को फैलता है।
0: जी सर, तो इन अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन कैसे करें?
1: हमेशा हमको क्या करना है, पहला स्वास्थ्य रोग मुक्त रोशन को पहला सेलेक्ट करना है। जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, उसी टाइम में रोग मुक्त सामग्री को सेलेक्ट करना है। और रोगग्रस्त पौधा, जो भी एक रोगग्रस्त पौधा आप देखते हैं ना, इमीडिएटली हम लोग को ये पौधा का पूरा निकल के नष्ट करना है, ये पहला हम लोग करें। क्योंकि एक पौधा से पूरा जो सफ़ेद मक्खी आता है उसी के बैठता है, उसी से पूरा फैल जाता है। एक भी नहीं रुकना है, रखना है जो विषाणुजनक रोगग्रस्त पौधा को पहला हटाना है, नष्ट हटा के नष्ट करना है। और खेत में जो भी खाद हम देते हैं, जो भी जितना ही कम देना पड़ेगा। अवसर मिलने से अभी हम लोग को कीटनाशक क्योंकि ये सब चीज़ फैलता है कीट से ना, इसलिए हम लोग को कीटनाशक स्प्रे करने। अभी इसमें फॉर्मल में हम लोग वो केमिकल कीटनाशक थोड़ा कम करना है। जो भी होता है नीम ऑयल, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, वो इसी का स्प्रे कर सकते हैं हम लोग, छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और ये सफ़ेद मक्की दिखाने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप भी कर सकते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं येलो स्टिकी ट्रैप के ऊपर सफ़ेद मक्की देखते हैं, तभी हम लोग छिड़काव कीजिए नीम ऑयल से। इसी से हम लोग ये कीड़ा को कीड़ा के संघ की घटना से क्या होता है, ऑटोमेटिकली रोग का भी प्रबंधन हो जाएगा।
0: जी सर, तो अब हम मृदा जनित रोगों के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं जो मृदा जनित रोग होते हैं?
1: इसमें जड़ एव थना सड़न रोग होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग इसी को ये बोलते हैं उकुट रोग। अच्छा। उकुट रोग भी बोलते थे। इसमें क्या होता है ना, पौधा अचानक क्या होते है, सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक से उसे एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा तरफ ठीक लगता है, एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाता है। जड़ और थाने में निचल हिमसड़न हो जाता है, इसी से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये मृदा जनक होता है। फफुंग और जंतु जो हम बोल देते हैं नेमेटोड, आजकल जो भी पुराना खेत होते हैं ना, जब भी आप परवल डालने के बाद 2 साल हो गया, अभी 3 साल 4 साल 2 साल के बाद आप रखे, तो जो जंतु फफुंग होता है ना, इसी से फैलने के लिए ज़्यादा हो जाते, इसी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी ये मृदुजनिक होता है, पूरा पौधा सूख जाएगा, पौधा सूखने से क्या होता है, पूरा आपका उत्पादन गुणवत्ता सब चीज़ घटने से स्टार्ट हो जाएगा।
0: जी सर, तो इन जैसे कि अभी आपने बताया कि कौन कौन से मृदा जनित रोग हैं और उनकी पहचान क्या है, तो अब प्रबंधन के बारे में बताएं।
1: ये क्योंकि मृदा जनित फफुंग होता है, इसी के लिए हम लोग ज़्यादा वो फफुंग नाशक नहीं डाल सकते, क्योंकि जितना भी फफुंग नाशक होगा इतने भी ज़्यादा आवश्यकता बेसिस से हम लोग फफुंग नाशक करते हैं। जो भी पहला ये करना है हम लोग को स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को लेना है जब भी आप करते हैं। और खेत में जल निकास अच्छी से स्वास्थ्य रखे, और संक्रमित पौधों को निकाल कर वही बोल रहे हो हम लोग, जो भी हम जिसी में होते हैं, एक संक्रमित रोग हम देखने से पहला उसको पूरा निकालना है, वो कैसे बाहर हटाना है ये देखना है, ये ध्यान में रखना है कैसे बाहर हटाना है। और जो भी जैविक नाशक, जैविक फफूंद नाशक होते हैं, ट्राइकोडर्मा हम बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, ये जब जैविक फफूंद नाशक होते हैं उसी को हम लोग मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और जो भी FIM से यूज़ करते हैं उसी टाइम में भी मिल सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास ये दोनों यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, फफूंद का फफूंद निर्बंधन हो जाएगा, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी, जो पौधा का उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, इसी का यूज़ करने से फ़ायदा ज़्यादा है।
0: जी सर। सर अगर हम बात करें अब समग्र प्रबंधन के बारे में, तो किसान भाई बहन किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: किसान उनके लिए हमें क्या बोलते हैं, पांच, हम वही बोलते पांच महत्वपूर्ण बात किसान भाई, परवल रोग बचाने के लिए हमेशा पांच बात हम बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक पहला बात है, हम लोग स्वस्थ एवं रोग मुक्त रोशन का सामग्री का प्रयोग करें। जो भी आप प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं बाहर से, स्वस्थ और रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को भी हम लोग प्रयोग करना है। और दूसरी बात है, खेत में जल भराव ना देना है, जो भी वही जिसी का भी रोग होता है जल भराव से हो जाएगा। तीसरी बात है, रोगग्रस्त पत्तियों और पौधा होते उसी को हटाकर, तुरंत हटाना है, इसी को खेत से दूर नष्ट करना है। और चौथी बात होते है, खेत में स्वच्छता रखे और इसी को नियंत्रित निगरानी करना है, हमेशा हम लोग खेत को निगरानी करना है। पांचवा बात होते है, रासायनिक दवाई जहाँ पे होता है रासायनिक दवाई की, केवल अवसर बेसिस में, जब भी अवसर होते उसी टाइम में रासायनिक दवाई को छिड़काव कीजिए, नहीं तो हम लोग के पास जो प्लांट बेस्ड है और बायो कंट्रोल है, जैविक शिलिंद्र है, जैविक नाशक है, उसी से हम लोग छिड़काव करके वो इसी परवल को हम लोग उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
0: जी सर, यानी कि पूरी चर्चा में एक बात जो समान रही कि जितना कम से कम हो सके आप खाद, कीटनाशक या जो भी इस प्रकार के आप छिड़काव करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बेहतर है, और सिंचाई भी तभी करें जब ज़रूरत हो, है ना सर? जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और रोग के बारे में अगर आप हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहें?
1: वही ये जो हम बात किए था इसी के बारे में ध्यान में रखना है, ये वही पांच चीज़ रोग हम डिस्कस किए ना, उसी अभी यहाँ बागा बिहार कंडेश में ज़्यादा होने वाला रोग है।
0: तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी जो परवल की खेती करते हैं प्रमुख तौर से।
1: धन्यवाद
0: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें। आज की पहेली है छोटी सी नन्ही सी है।
1: पूछते हैं पहेली भी पूछते हैं।
2: मौसी पहेली सुलझाने में बहुत मजा आता है।
1: सच्ची?
3: जितनी मुश्किल पहेली उतना ज्यादा मजा।
1: तो ठीक है, आज मैं सबसे ज्यादा मुश्किल पहेली पूछूंगी।
4: सबसे मुश्किल
1: कौन सी पूछूं। हाँ, याद आ गई।
2: कौन सी?
1: सुनो, छोटी सी नन्ही सी है पर काम ये करती बड़े बड़े। ये मजदूर ये सैनिक मुश्किल लाख पड़े, ये बड़े चढ़े। इसने रानी बनकर भी ना सीखा करना कभी आराम। सीख सको तो इससे सीखो, मिलजुल कैसे करते काम। अच्छा, मैं दोहराऊं?
4: हाँ।
1: छोटी सी नन्ही सी है पर काम ये करती बड़े बड़े। सोचो, ये मजदूर ये सैनिक मुश्किल लाख पड़े, ये बड़े चढ़े, बताओ
2: जी क्या है।
1: इसने रानी बनकर भी ना सीखा करना कभी आराम। सीख सको तो इससे सीखो, मिलजुल कैसे करते काम। बहुत उछल रहे थे ना। मासी पहेली लो, आ गई पहेली। सोचो, तुम्हारे आसपास भी हो सकती है, क्या पता अभी भी हो।
2: ये क्या है? मजदूर सैनिक।
5: हाँ, मजदूर सैनिक।
3: रानी भी है, छोटी सी भी है, ही कैसी बात है। अरे हाँ, ये तो चींटी है। चींटी।
4: हाँ, चींटी चींटी चींटी।
6: हाँ जी, मिलजुल कर काम करती है।
1: शाबाश, बिल्कुल ठीक। छोटी सी नन्ही सी चींटी काम है करती बड़े बड़े। ये मजदूर ये सैनिक होती मुश्किल में भी बड़े चढ़े। चींटी ने रानी बनकर भी ना सीखा करना आराम। चींटी से हम सीख सकते मिलजुल कैसे करते काम।
0: आओ क्विज करें। अभी आप सुन रहे थे चींटी पर आधारित ये पहेली। कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे। ध्वनिंकन बटी लैंगलिंडो और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है, लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा मैम। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद उमा, और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
7: मैम, जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
8: हाँ बिल्कुल, जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुर्छया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल को लगाते हैं, और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है। लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछुआ चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये।
7: तो मैम, ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है?
8: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई, उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद, अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा, और उसी तरीके से साथ साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों जो पत्ते के किनारे किनारे से। ठीक है, उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है, जिसमें हमारा दाना बनता है, वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे, तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना, तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
7: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
8: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो, खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो, गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के एक डेढ़ महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपको अपने पौधों पे नजर आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
7: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
8: बिल्कुल बिल्कुल।
7: और मैम अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
8: हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तिला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तिला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है, जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जाकर के देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा, तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तिले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तिला, जिस पौधे पे जाकर के बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर लेकर के आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तिले को नियंत्रण

0: तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा, ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है। तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
1: जी मैम। मैम तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
0: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही हैं किसान। जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी, तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मी गर्मा में भी सर्वे किया। तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे, जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे। काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी। फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे, और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है, और ये बहुत पॉपुलर है। और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जा करके हमने सर्वे किया, तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है एक दो जगह पे लगाया, खरीफ में तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया, और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है। काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं, जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था। इस पर्पस से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की, आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया, तो काले तिल की अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था। मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा।
1: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम।
0: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
1: जी मैम। तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
0: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना, मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे, उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाएं, या अगर आपको दिख जाए बीज बीज उपचार करके नहीं लगाया, आपके 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है, तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिले का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
1: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है, और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान, और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास।

0: टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं अपना प्यारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई कई के आज नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी। और वैसे तो पिछले कई सारे एपिसोड्स में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, वेक्टर बोरोन डिजीज की भी, कभी फाइलेरिया की, कभी काला आजार की, तो कभी मलेरिया की। पर आज हम बात करने वाले हैं एक अहम वेक्टर जनित रोग की, यानी कि एक्यूट एनफ्लाइटिस सिंड्रोम की, जिसे कि हम जापानी दिमाग के बुखार के नाम से भी जानते हैं। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी आरजे उमा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो शख्स जिनसे पूरा इलाका सलाह लेता है, सेहत के बारे में पूछता है। हमारे साथ सेहत के साथी हैं सेहतिया सिंह जी। सेहतिया सिंह का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। सेहतिया भैया, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक घटना के बारे में बात करना चाहूंगी। हमारे पास के ही गांव में 6 साल की बिटिया चिंगी की बात करेंगे हम आज। बारिश के बाद बगल के खेत में पानी भर गया था और चिंगी वहीं खेल रही थी, और शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और रात में अचानक उसे दौरा भी पड़ने लगा था।
1: हाँ आरजे उमा, यह मामला AES या JE का ही था। परिवार को लगा कि बस थकान होगी, किसी ने झाड़ फूंक की सलाह दी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी है, ये इंतजार नहीं कराती।
0: और देखिए, दुख की सबसे बात यही है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं होती है, ऐसी घटनाएं बरसात के मौसम में कई बच्चों को होती है और कई बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग इस बीमारी को सही समय पर पहचानें।
1: अरे भाई, आज फिर कुछ काम की बात करेंगे। आजकल मौसम ही ऐसा है कि सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए आज हमें सुनने वालों को बताना बहुत जरूरी है कि JE AES क्या है, कैसे फैलता है और गांव समाज मिलकर कैसे इसे रोक सकते हैं, ताकि एक भी बच्चा चिंगी जैसी स्थिति में ना पहुंचे।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल गांव, बाजार, खेत खलियान, हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, AES और JE। लोग इन शब्दों से डरे हुए भी हैं, उलझन में भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे श्रोताओं को सही और सरल भाषा में पूरी जानकारी दे दी जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर AES या फिर जिसे JE भी कहते हैं, वो आखिर होता क्या है।
1: देखो आरजे उमा, AES का पूरा नाम है एक्यूट इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम, यानी अचानक होने वाली तेज दिमाग की सूजन वाली बीमारी, और JE यानी जैपनीज इन्फ्लाइटिस यानी जापानी दिमाग की बुखार, AES का ही एक गंभीर रूप है।
0: यानी AES एक बड़ा नाम है और JE इसका मुख्य कारण है।
1: बिल्कुल सही। जैसे बरसात में कई तरह के बाढ़ आते हैं, पर उनमें से एक बहुत खतरनाक होता है, उसी तरह से AES में कई वजहें होती हैं, पर JE उनमें भारी बीमारी है।
0: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग कह रहे हैं कि ये हवा से फैलता है, कोई कहता है फल से फैलता है, कोई कहता है मच्छर से फैलता है, लेकिन सच्चाई क्या है?
1: आरजे उमा, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी JE का फैलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। इसका कारण इसका अपना पर्यावरणीय चक्र है। इस वायरस को बढ़ने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एम्प्लीफाइंग होस्ट जैसे सुअर और कुछ पक्षी जैसे बगुला, सारस वगैरह वगैरह, और दूसरा क्यूलेक्स मच्छर, जो इन जानवरों से वायरस लेकर इंसानों तक पहुंचाता है। इसी वजह से JE ज़्यादातर उन इलाकों में मिलता है जहां धान की खेती ज़्यादा होती है, खेतों में पानी भरा रहता है और बरसात के बाद मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। यानी यह बीमारी न पूरे देश में फैलती है, न हर मौसम में, यह खासकर धान के खेतों वाले इलाकों और बरसात के बाद सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है।
0: थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना सेहतिया भैया।
1: अरे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि JE एक वायरल बीमारी है और वेक्टर यानी मच्छरों के जरिए फैलती है, खासकर क्यूलेक्स मच्छर। ये वही मच्छर होते हैं जो भारी गंदे पानी, खेतों के किनारे जमा पानी, सुअरों के पास तथा जंगल के इलाकों में ज्यादा मिलते हैं।
0: अच्छा, इसका मतलब मच्छर ही इसके मुख्य कारण है।
1: हाँ, बात यही नहीं खत्म होती। ये वायरस पशुओं, खासकर सुअर और पक्षियों में चक्कर लगाता है और मच्छर उसे इंसानों के शरीर तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं जूनोटिक चक्र।
0: और AES की किन वजहों से होता है?
1: AES कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, गंदा पानी, पोषण की कमी, लीची खाने से भी अगर बच्चा भूखा हो, लेकिन JEE इसका सबसे खतरनाक रूप है।
0: अब तक हम जान गए कि कैसे फैलता है, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि कौन से लक्षण दिखे जो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए, ना कि किसी और तरीके का सहारा लेना चाहिए।
1: बहुत जरूरी सवाल। AES या JEE में लक्षण अचानक आते हैं, इसमें जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, जिसे मुख्य लक्षण है तेज और अचानक बुखार, उलझन, बच्चा बार बार रो रहा हो, नींद ज्यादा आना, या उल्टा हो सकता है कि नींद बिल्कुल आना ही नहीं, लगातार रोना, दौरा पड़ना जिसको मिर्गी या फीट बोलते हैं, बच्चा होश में न रहना, गर्दन अकड़ना या चलने फिरने में दिक्कत होना।
0: मतलब ये सारे लक्षण बहुत तेजी से खराब होते चले जाते हैं, इतनी तेजी से कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है।
1: अरे हाँ, AES समय बर्बाद नहीं कराता, इसलिए हमें भी नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को लक्षण दिख जाए तो घर वाले क्या करें ऐसी स्थिति में?
1: कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। तुरंत अस्पताल ले जाएं, समय बिल्कुल न गवाएं, घरेलू इलाज जैसे झाड़ फूंक, देसी दवा में समय बर्बाद न करें। रास्ते में मरीज की सुरक्षित रखने के लिए कुछ आपको हम टिप्स दे देते हैं। वो है कि बच्चा बेहोश हो तो कुछ भी मुंह में न दें, न पानी न दवा। बुखार ज़्यादा हो तो गुनगुने पानी की पट्टी लगाएं। फिट्स आए यानी कि बेहोशी छाए तो बच्चे के दोनों ओर करवट दिलाकर रखें। रास्ते में गिरने से बचने के लिए सिर को सपोर्ट दें। अस्पताल में बताए गए नियमों का पालन करें। किसी भी हालत में डॉक्टर द्वारा बताई गई उपचार बीच में न रोकें।
0: अच्छा भैया, बीमारी तो एक तरफ है, पर गांव समाज की इस बीमारी को रोकने में भूमिका क्या है? हम AES या JEE को रोकने में क्या क्या कर सकते हैं?
1: बहुत कुछ कर सकते हैं आरजे उमा। AES या JEE के खिलाफ असली लड़ाई गांव में ही जीता जा सकता है। JEE वैक्सीन, 1 से 15 साल के बच्चों को यह टीका जरूर लगे। यह टीका मुफ्त उपलब्ध है और प्रभावशाली भी है। दूसरा है कि मच्छरों को पनपने से रोकें, घर आंगन में पानी न जमने दें, सुअरों के बाड़े को घर से दूर रखें, नालियों की सफाई, पानी की टंकी को ढककर रखना और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग। इसके साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखें, खेलते समय पूरा कपड़ा पहनाएं, शरीर खुला न रखें और सुबह शाम बच्चे बाहर न जाएं। पानी और खाना हमेशा साफ रखें। स्वच्छ पानी AES के मामलों में बड़ा कारण है। उबला पानी दें, बासी खाना न खिलाएं और लीची खाली पेट न दें। लक्षण दिखते ही बेझिझक अस्पताल जाएं। समय पर इलाज मतलब कि जीवन बचाना।
0: मतलब समय पर अस्पताल जाना जरूरी है। अच्छा भैया, हमारे एक श्रोता हैं रामवरन, पिछले साल उनके पड़ोसी का एक बच्चा बुखार से ग्रसित हो गया। घर वाले बोले कि 2 दिन रुक जाओ, शायद ठीक हो जाए, पर जब अस्पताल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी।
1: हाँ आरजे उमा, AES में 24 घंटे ही निर्णायक होते हैं। लोग समझते देर कर देते हैं और बीमारी अपना काम शुरू कर देती है। भाइयों बहनों, AES JEE कोई आम बुखार नहीं, यह ऐसी बीमारी है जो हमें सोचने का समय नहीं देती। हम जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी जान बचेगी।
0: अच्छा सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी असली कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि AES या JEE कितनी गंभीर बीमारी है और समय पर कदम उठाना क्यों जरूरी है?
1: बिल्कुल आरजे उमा, एक घटना आपको सुनाता हूँ जो आज भी मेरे दिल में बस गई है। यह कहानी है हमारे ही पास के एक गांव की, जहाँ सुबह का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और औरतें नए ओवरहेडेड टैंक से पानी भर रही थी और गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसी समय हमारे इलाके की आशा बहन ममता देवी अपने दिन की तैयारी कर रही थी। अचानक उनका फोन बजा, दीदी मेरा बच्चा बहुत तेज बुखार में है। मैंने 108 पर फोन कर दिया। एक घबराई हुई माँ की आवाज थी। ममता ने तुरंत कहा, बहुत सही किया बहन, बस मैं अभी जा रही हूँ, हिम्मत रखिए। वह अपना स्वास्थ्य बैग उठाकर तुरंत उस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा था, सेहतिया जी यही तो हमारा काम है, जब गांव को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब पहुंचना। जब ममता ने दरवाज़ा खटखटाया तो दस्तक सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वह परिवार के लिए उम्मीद थी, भरोसा था, जीवन रक्षक कदम था। देखिए आरजे उमा, कुछ साल पहले इसी इलाके में AES और JE ने बच्चों की जान ले ली थी। लोग डरते थे, समझ नहीं पाते थे कि यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है या कोई श्राप है, अभिशाप है, कोई जादू टोना है। बहुत से माता पिता झाड़ फूक में विश्वास करते थे और जब तक अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। ममता जैसी आशा बहनों सरकारी प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें सिखाया गया कैसे शुरुआती लक्षण पहचाने, कैसे परिवारों को समझाएं और कैसे ई कवच पोर्टल से हर केस को ट्रैक करें।
0: ई कवच ये कैसे मदद करता है भैया?
1: बहुत जबरदस्त टूल है ई कवच पोर्टल। CHO और आशा को यह सुविधा देता है कि कौन बच्चा किस बीमारी के जोखिम में है, किस परिवार को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हों, पोषण NCD से संबंधित जानकारी क्या है, किसे कब रेफरल की जरूरत है। यह ऐप उन्हें कदम कदम पर मार्गदर्शन देता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे।
0: वाह, ये तो अच्छी बात है। और ममता बहन ने इन सब का इस्तेमाल कैसे किया?
1: अरे आरजे उमा, ममता तो इस काम में मिसाल बन गई। वो रोज घर जाती, उनके बैग में पर्चे, स्टिकर, टीकाकरण रिकॉर्ड सब रहता। शुरुआत में परिवार टीके से डरते थे, इंजेक्शन से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ऐसा उनका डर था, पर ममता ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपने ही बच्चों का टीकाकरण गांव वालों के सामने करवाया और बोली, देखिए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आप भी डरिए मत। और धीरे धीरे लोगों का डर भरोसे में बदल गया।
0: अच्छा सेहतिया भैया, आपने बताया कि JE बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका बचाव कैसे हो सकता है? क्या इसका भी कोई टीका है?
1: हाँ बिल्कुल आरजे उमा, JE से बचाव का सबसे अच्छा और मजबूत तरीका टीकाकरण ही है। सरकार ने इस पर बहुत साफ गाइडलाइन बनाई है। हमारे देश में बच्चों को JE के दो टीके जरूर लगाते हैं।
0: दो टीके कब कब?
1: पहला टीका 9 महीने की उम्र में, ठीक उसी समय जब बच्चों को खसरा का टीका लगता है। दूसरा टीका 16 से 24 महीने के बीच, जब बच्चे को DPT बूस्टर लगता है। अप्रैल 2013 से ये दोनों डोज देश के 334 एंडेमिक जिले में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है।
0: अच्छा भैया, बच्चों के लिए तो टीका है और बड़े लोगों के लिए भी टीका होता है क्या?
1: हाँ, जिन राज्यों में बड़ों में भी JE के केस देखे गए हैं वहाँ एडल्ट वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। 3 राज्यों जिनमें असम के 9 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले और पश्चिम बंगाल के 26 जिले में 15 साल से ऊपर के लोगों को JE का टीका लगाया जाता है। इसके लिए एक खास वैक्सीन इस्तेमाल होती है, JenVac, जो कि वयस्कों के लिए बनाई गई है।
0: मतलब बच्चे हो या बड़े, समय पर अगर टीका लग जाए तो JE से बचाव काफी हद तक संभव है।
1: बिल्कुल आरजे उमा, आपने सही कहा। इसलिए हम आशा, ANM और CHO लगातार यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा और हर जरूरतमंद वयस्क JE का टीका लगवाए।
0: अच्छा भैया, आपको क्या लगता है हमारी रेडियो जैसी कोशिशें कितना फर्क डालती है?
1: बहुत बड़ा फर्क। जब रेडियो से सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचती है तो लोग जागरूक होते हैं, टीकाकरण बढ़ता है, मच्छर रोकथाम पर जोर बढ़ता है, अस्पताल आने में हिचक खत्म होती है। इस तरह सेहत सही और लाभ कई जैसे कार्यक्रम व्यवहार बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
0: तो दोस्तों, आज हमें AES या JE का पूरा ज्ञान मिला, यानी कि इस बारे में हमने पूरी जानकारी ली, इससे कैसे बचना है, इसे कैसे पहचानना है, क्या करना है और कैसे अपने गांव को सुरक्षित रखना है।
1: हम लगातार यही कह रहे हैं, आदत बदलें, सेहत सुधरेगी, साफ सफाई रखें, टीका लगवाएं और जागरूक रहें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों ध्यान रखें, जानकारी ही बचाव है और सही समय पर डॉक्टर ही असली उद्धारक। तो अभी के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेहत से जुड़े विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रेडियो 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
1: हम अपने अब और अपने फिर से, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को
0: अपने
1: और अपने अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
7: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुंदर ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी सुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए। बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
0: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे 30 त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं आम की सघन बागवानी एवं छतरक प्रबंधन के बारे में। सघन बागवानी क्या होती है और अगर सघन बागवानी करते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही छतरक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे आम के पौधों के लिए, पेड़ के लिए फायदेमंद होता है, इस बारे में आज विस्तार से जानेंगे डॉक्टर कुमारी करुणा से। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सघन बागवानी क्या है।
1: हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सघन बागवानी जो है एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम दूरी पर और कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित जमीन और कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले फलों या सब्जियों का उत्पादन प्राप्त करना है।
0: जी मैम, तो मैम अगर हम सघन बागवानी की बात करते हैं तो क्या सघन बागवानी करने से कुछ फायदे होते हैं?
1: हाँ, कम जमीन में कई गुना अधिक पैदावार मिलती है इसको सघन बागवानी करने से, और फलों का आकार एवं गुणवत्ता भी अच्छा हो जाता है। तुराई हो, सिंचाई हो एवं देखरेख करना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें पौधे के साइज को मेंटेन किया जाता है, छोटा रखा जाता है, तो जो भी कर्षण क्रियाएं हैं वो करने में आसानी होती है। साथ ही साथ किसानों की आय पारंपरिक खेती की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है।
0: जी मैम। मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सघन बागवानी की विशेषताएं क्या हैं और इसे क्यों करना चाहिए?
1: सघन बागवानी में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, तो इस पद्धति में मजदूर भी कम लगता है क्योंकि पौधा को छोटा रखा जाता है जिससे पौधे पर किया जाने वाला कार्य आसानी से हो जाता है। इस पद्धति में पूरे जमीन का सही सही उपयोग हो जाता है। सघन बागवानी में जैसे खाद, पानी, सूर्य की रोशनी, फफूंदनाशी, कीटनाशी इत्यादि का लगभग पूरा का पूरा उपयोग हो जाता है जिससे कि परंपरागत बागवानी की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस बागवानी को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक होती है और हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिक फलों की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ खेती एवं बाग लगाने के लिए जमीन कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसके चलते कि जमीन थोड़ा सा कम होते जा रहा है। अगर हम इस पद्धति से बागवानी करेंगे तो जो मेरी बढ़ती जनसंख्या का डिमांड है फल और सब्जी का वो मिल पाएगा।
0: जी मैम। मैम, अगर हम सघन बागवानी करते हैं हमारे किसान भाई बहन तो क्या उसमें कुछ विशेष किस्म होते हैं जिनका चयन करना चाहिए?
1: सघन बागवानी के लिए ये होता है कि सभी का स्ट्रक्चर, पौधा हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, थोड़ा अलग अलग होता है। कोई अधिक ग्रोथ करता है, कोई कम ग्रोथ करता है, तो इसमें भी पौधा में भी आम में भी कुछ बौना किस्म होते हैं तो उसको प्रीफर करते हैं सघन बागवानी के लिए। इसमें वैरायटी की बात करें तो है आम्रपाली, जैसे इसको किचन गार्डन के लिए भी सूटेबल माना गया है क्योंकि इसमें ग्रोथ कम होता है, कम स्पेस लेता है, तो आम्रपाली लगा सकते हैं सघन बागवानी में। मल्लिका का भी थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा ही है, पूसा अरुणिमा है, पूसा अरुणिका है, पूसा श्रेष्ठ है, ये सब का जो ढांचा होता है पौधा का वो थोड़ा छोटा होता है, इसको प्रीफर कर सकते हैं सघन बागवानी के लिए।
0: जी मैम। मैम, क्या सघन बागवानी करने के लिए भूमि की कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है और पौधरोपण कैसे करते हैं?
1: भूमि की तैयारी के लिए कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो परंपरागत बागवानी के लिए जो तैयारी होती है पौधा लगाने का, वही तैयारी इसमें भी की जाती है। सिर्फ पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी जब हम रेखांकन करते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितना रखें
0: जी।
1: तो एक आम के लिए अगर सघन बागवानी करनी है तो सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 5 मीटर बाय 5 मीटर है, और पौधा लगाने के लिए जो गड्ढा बनाएंगे तो उसमें 60 घन सेंटीमीटर का गड्ढा मई के महीने में खोदकर उसको फिर मानसून आने से पहले 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 50 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाकर भर देना चाहिए। पौधरोपण के लिए आम के लिए पौधा से पौधा की दूरी, और ये जो उच्च गुणवत्ता वाला पौधा जो होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, इसे किसी विश्वसनीय पौधशाला या शोध संस्थान से ही लेना चाहिए। फिर उन्हें जुलाई के मध्य तक सावधानीपूर्वक तैयार गड्ढों में विधिवत रोप देते हैं और रोपने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं।
0: जी मैम, अब आप हमें सिंचाई के बारे में विस्तार से बताइए कि सिंचाई कैसे करनी चाहिए।
1: हाँ, अगर हम सिंचाई प्रथम 2 वर्षों तक आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, जब लगे कि हाँ पौधे को आप जरूरत है पानी का तो उसको 1 दिन में 2 दिन में, क्योंकि 2 साल के पौधे बहुत छोटे होते हैं 2 साल तक, तो उसका बहुत प्रॉपर केयर करना पड़ता है, कब उसे पानी की आवश्यकता है किसान भाई को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन 2 साल के बाद जब बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसको परंपरागत तरीके से अगर हम सिंचाई करें तो ठंडा में यानी जाड़े में 15 दिन के अंतराल पर और गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं, और अगर सूक्ष्म सिंचाई द्वारा हम पानी अगर देते हैं तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी पौधा को देना चाहिए, उससे पानी का बचत भी होता है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: जी मैम, मैम अब हम छत्रक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, तो सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करेंगे?
1: सघन बागवानी में प्रारंभिक कटाई छटाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। पौधरोपण के 1 वर्ष बाद मुख्य तने को भूमि के सतह से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर से दिसंबर जनवरी में काटते हैं। तनों की कटी सतह पर फफूंदनाशक दवा का पानी में या अंडी के तेल में घोल बनाकर अच्छी तरह लगाना चाहिए। कटाई के बाद तनों पर अप्रैल से बहुतायत में कल्ले निकलते हैं, जिनमें से केवल 4 कल्लों को चारों दिशाओं में बढ़ने देते हैं, शेष कल्लों को यथाशीघ्र काट देना चाहिए। फिर इन्हीं कल्लों को पुनः 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काटते हैं। इन 4 कल्लों को चारों कल्लों से पुनः 2 से 3 कल्लों का सृजन होने देते हैं। इस प्रकार 3 से 4 वर्ष में पौधे का वांछित छतरीनुमा आकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पेड़ में जुलाई में निकले लगभग 80% शाखाओं में मंजर आ जाता है, फलस्वरूप अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। 10 वर्ष बाद पौधे से लगभग 10 से 12% टहनियाँ, जैसे सूखी टहनियाँ हो या रोगग्रस्त टहनियाँ हो, तो प्रतिवर्ष निकालते रहना चाहिए ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश मिले और स्वस्थ कल्लों का सृजन हो सके। इस प्रकार पौधों का सामयिक प्रबंधन करके 20 से 25 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण भरपूर फलन ली जा सकती है।
0: जी मैम, अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो 20 से 25 वर्ष तक अच्छे फल मिल सकते हैं हमें। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार से आम की सघन बागवानी करें और सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो हमारे किसान भाई बहन जो बागवानी करते हैं, आप मैम की बातें जो मैम ने बताई है उन बातों का ध्यान रखिए, और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे फल आएंगे, गुणवत्ता युक्त फल आएंगे और अधिक फल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का, अपनी मिट्टी का ध्यान रखें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और ये है आपका अपना पसंदीदा FM ग्रीन, और मैं हूँ RJ अनु। उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जलवायु अनुकूल खेती पर आजकल ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसी से रिलेटेड आज एक विषय हम लेकर आए हैं, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन। और इस विषय पर खास चर्चा के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर घनश्याम, और मैं आपको बता दूं, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले

0: हमारा जो प्रदेश बिहार है, बिहार का संपूर्ण भाग उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, जो एक मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु यानी ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ पर विशेष रूप से तीन ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च से मध्य जून तक चलती है, वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, और तीसरी शीत एवं शरद ऋतु जो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक चलती है।
1: जी, और साथ ही अगर मिट्टी के बारे में बता दें, खास तौर पर बिहार के बारे में, तो थोड़ी जानकारी हमारी और बढ़ जाएगी सर।
0: अगर समग्र रूप से देखा जाए तो बिहार की मिट्टियों में गंगा का उत्तरी मैदान, तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ, पुरानी जड़ोल मिट्टी या बांगर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, खादर या दियारा क्षेत्र की मिट्टी, गंगा का दक्षिणी मैदान, टाल की मिट्टी, अभ्रमक मिट्टी, कृषि उत्पादन, उपजाऊ मिट्टी एवं उपयुक्त जलवायु को ध्यान में रखकर बिहार को तीन भागों में बांटा गया है। क्षेत्र एक जिसमें 13 जिले हैं, क्षेत्र दो जिसमें 8 जिले हैं, और क्षेत्र तीन इसमें 17 जिले हैं। इस क्षेत्र को फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है, क्षेत्र 3A जिसमें 6 जिले हैं, और क्षेत्र 3B इसमें 11 जिले शामिल हैं।
1: जी सर, अगर फसल और उनकी प्रजातियों के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन हम करते हैं तो कैसे करें, इसकी जानकारी दें।
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। फसल और फसल की प्रजातियां पोषण तत्व प्रबंधन में विशेष महत्व रखती हैं। यदि हम अपने फसल चक्र में केवल सस्य फसलों यानी सीरियल क्रॉप्स को ही शामिल करते हैं तो इस दशा में हमको अधिक पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि हम अपने फसल चक्र में सस्य फसल के साथ साथ दलहनी फसल भी लेते हैं तो इससे हमको कम पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दलहनी फसलें स्वतः ही वायुमंडल की नाइट्रोजन को ज़मीन में स्थापित करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देती हैं, और साथ ही ये गहरी जड़ वाली फसलें होती हैं जो कि नीचे के पोषक तत्व जो ज़मीन में पड़े हुए हैं उनका उपयोग करके कम पोषक तत्व लेने में ही अच्छा उत्पादन देने में सफल रहती हैं।
1: जी सर, पौधे के लिए कौन कौन से पोषक तत्व ज़रूरी हैं जिनका प्रबंधन करना चाहिए?
0: वैज्ञानिक आधार पर ये पाया गया है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 17 है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। ये सारे तत्व पौधे तीन तरह से प्राप्त करते हैं, कुछ तत्व जल से, कुछ थल यानी पृथ्वी से, और कुछ वायु से, और इसके अलावा जो चौथा स्रोत जो होता है आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का, वो जैविक पदार्थ एवं उर्वरक होते हैं जिनको हम मिट्टी जांच के आधार पर सिफारिश की हुई मात्रा उस मिट्टी में और उस फसल और प्रजाति के अनुसार देते हैं। यदि हम लंबी अवधि की फसल की प्रजाति लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमको अधिक पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अगर अधिक उपज लेने वाली अगर प्रजाति हम लगा रहे हैं तो उसके लिए अधिक पोषक तत्व देने की ज़रूरत होती है, बशर्ते कम अवधि की फसल प्रजाति के लिए। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि कम पोषक तत्व पर भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। साथ ही जलवायु परिस्थिति को देखते हुए कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो सूखे के मौसम में भी अच्छा करती हैं, जैसे धान की अर्जल और गेहूं की सबौन निर्जल, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो सूखे के क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं, और बहुत सी ऐसी प्रजाति हैं जो कि गहरे पानी में अच्छे से लगती हैं, जैसे स्वर्णा सबवन।
1: जी तो सर, अगर समग्र पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहेंगे हम, और इनमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है इसे भी बताएं।
0: पोषक तत्वों के लिए समग्र पोषक तत्व एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है।

0: समग्र पोषक तत्व प्रबंधन में हम उन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं जो हमारे पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में सहायक होती हैं। दूसरा, इनके प्रयोग से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक बना रहता है और हमको लाभदायक टिकाऊ उत्पादन मिट्टी से मिलता रहता है। हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। इसके लिए हमको जैविक खादों के साथ साथ उर्वरक और पौधों के अवशेषों और जीवाणु खाद का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहाँ पर हम किसी तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करने में अक्षम हैं, वहाँ पर बरसात के समय में हरी खाद का उपयोग करके हम उस मिट्टी में जैव पदार्थ और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारी परिस्थिति सिंचित है तो उसमें हम पोषक तत्वों को पूर्ण रूप से अच्छी मात्रा में दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार की मात्रा उसमें स्प्लिट डोजेस दी जा सकती हैं, जबकि असिंचित अवस्था के लिए फसल के लिए हमको एक ही बार पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर सूखे की परिस्थिति है और पानी कम है तो ऐसे में हमको उर्वरक का पर्णीय छिड़काव करने में ज़्यादा फायदा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैविक खाद, उर्वरक, जीवाणु खाद और पौधों के अवशेषों का समुचित और यथासंभव प्रयोग मिट्टी में करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आज की इस वार्ता को सुनकर। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और इसमें किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आपने जाना। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। इसे फ्रिक्वेंसी याद रखिएगा, 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट अनु। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए एक और खास विषय लेकर आए हैं और विषय है हमारा खास तौर पर हमारे देश के बच्चों के लिए। जी हाँ, कुपोषण को दूर भगाना है और इसीलिए कुपोषण निवारण के बारे में, साथ ही मशरूम की उपयोगिता क्या है कुपोषण निवारण में, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे मशरूम के उत्पादन की विधि क्या होती है, इसके प्रबंधन क्या है। तो खास तौर पर कुपोषण निवारण की हम बात कर रहे हैं और आज साथ ही उसमें बात कर रहे हैं हम मशरूम की। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ हैं अनीता मैम और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, जैसा कि अभी हम कुपोषण के बारे में बात कर रहे थे, उसके निवारण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मशरूम की उपयोगिता हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं कि मशरूम क्या है।
1: मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसमें पर्णहरित नहीं होता है। इसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। भोजन की आवश्यकता पूर्ति है तो यह मृत जैव पदार्थों तथा अन्य जैविक कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होता है। इसकी खेती हम कृषि अवशेषों जैसे गेहूं, जौ, मक्का, धान, कपास, गन्ना इत्यादि का जो कृषि अवशेष होता है उस पर इसकी खेती बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यों कहें, ये मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, यह भी हम कह सकते हैं।
0: मतलब कि मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, इसको सब्जियों की श्रेणी में हमने डाला है। जो है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से एक योजना भी चलाई जा रही है, अपनी क्यारी अपनी थाली, और उसमें मशरूम की उपयोगिता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कहा गया कि बच्चों को सब्जी में मशरूम दें। तो ऐसा क्यों किया गया है, यानी कुपोषण को दूर भगाने के लिए मशरूम की उपयोगिता इसमें क्या है, वो बताएं श्रोताओं को।
1: हमारे देश में बच्चों में काफ़ी कुपोषण है और इस कुपोषण को ध्यान में रखकर ही ये जो योजना चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली, ये सब ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही है जो कुपोषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी है उसके माध्यम से बच्चों को मशरूम युक्त आहार देने का प्रावधान है। असल में बच्चों में जो कुपोषण होता है उसके कई कारण है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्वालिटी प्रोटीन की उपलब्धता हमारे बच्चों को नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो कुपोषित होते हैं। और मशरूम जो है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें बहुत उम्दा किस्म का क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है और जिसे हम बड़ी आसानी से, इसको हम थोड़ी सी एक तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करके हम इसे अपने घर के किसी कमरे में, किसी कोने में एक कोई झोपड़ी बनाकर इसकी खेती बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और इसीलिए इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये इसके उम्दा किस्म का, इसका प्रोटीन की जो बात करें, इसका प्रोटीन जो पशु से प्राप्त प्रोटीन जो होता है उसके समतुल्य होता है। अब जो आपका मीट मछली अंडा से जो प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को उसके समतुल्य माना जाता है। और हमारे भारत में अधिकतर आबादी जो है वह शाकाहारी है, तो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा वरदान है कि शाकाहारी परिवार से होते हुए भी हम उम्दा किस्म का प्रोटीन युक्त आहार लें और हमारे बच्चे पोषित रहें। और इसके अलावा इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में अन्य पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व, राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, ये सभी पोषक तत्व तो पाया जाता है। इसलिए इसका यदि हमारे हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे इसका सेवन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण से मुक्त रहेंगे।
0: तो ये तो आपने बताया मैम कि कुपोषित अगर बच्चे हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है जो उनके कुपोषण को दूर करेगा, लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं, जैसे कि वृद्ध हुए, जो जवान लोग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो कुपोषित नहीं हैं, तो उनके लिए क्या उपयोगिता है इसकी?
1: मशरूम की काफ़ी उपयोगिता है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ कुपोषण बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कृषि योग्य भूमि, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, कल कारखाने चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है कि कृषि योग्य भूमि निरंतर घट रही है। घटती हुई कृषि योग्य भूमि से हमें बढ़ती हुई आबादी के लिए उम्दा किस्म का खाद्य पदार्थ चाहिए। तो इसके लिए मशरूम काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि मशरूम ऐसी खेती है जो कि खेती बिना खेत की होती है। इसके लिए हमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसी बंजर भूमि पर भी यदि हम एक झोपड़ी बना देते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर जगह होता है, मतलब छत और ज़मीन के बीच का जो जगह होता है, उस जगह का उपयोग करके इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम यदि भूमि नहीं भी है तो भी हम इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा कि आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके साथ साथ रोजगार का अवसर घट रहा है, तो ऐसे मशरूम एक स्वरोजगार का उत्तम साधन हो सकता है। इसके अलावा जिसे हम देखते हैं, हमारे युवाओं का कृषि के प्रति रुझान घटता जा रहा है, क्योंकि वो कृषि का मतलब समझते हैं कि जेठ के धूप में कृषि में काम करना, सावन के मूसलाधार बारिश में खेती में काम करना और पूस की ठंड में खेती में काम करना। लेकिन इस सारी तथ्यों को मशरूम खेती में हम गलत साबित करते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति में एक्सपोज होकर खेती नहीं करना है, बल्कि किसी कमरे के अंदर मौसम की मार से बचते हुए खेती करना है। तो ये इसलिए हमारे युवाओं का रुझान भी मशरूम की ओर बढ़ सकता है। साथ ही इसमें आपका जो खेती में हम पैसा लगाते हैं, तो यह कोई ज़रूरी नहीं जितना हम पैसा लगाए हैं उतना पैसा हमें मिलेगा, और वो मिलता भी है तो एक फसल का जो क्रॉप सीजन होता है वो ख़त्म होने के बाद ही मिलता है। लेकिन मशरूम ऐसा फसल है जिसमें आज हम पूंजी लगाते हैं तो एक महीना से डेढ़ महीना के अंदर हम यदि हम 100 रुपया लगाए हैं तो वो कम से कम 200 से 250 रुपया हमको एक से डेढ़ महीने के अंदर मिल जाता है। तो इसमें हम कहते हैं आमदनी हमारा एक से डेढ़ महीने के अंदर आ जाता है। तो यह इसलिए भी हमारे युवाओं का रुझान इसकी ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो पारंपरिक फसल का उत्पादन होता है उसमें खर्च काफ़ी लगता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में मशरूम के उत्पादन में खर्च काफ़ी कम लगता है, इसलिए यह एक लाभकारी फसल है। इसके अलावा यह छोटे किसान और भूमिहीन किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि इसकी खेती के लिए काफ़ी कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो हमारा दूसरे फसल से जो उत्पादन के बाद जो कृषि अवशेष बचता है उस कृषि अवशेष का उपयोग करके हम इसकी खेती कर सकते हैं। और इस खेती को चूंकि हम कमरे के अंदर करते हैं, इसे पाला आंधी तूफान पशुओं आदि से हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, और इसके यदि हम इसको बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो इसको निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण जरिया ये हो सकता है, क्योंकि घर घर की महिला खेत नहीं जा सकती है, लेकिन यदि घर के पिछवाड़े में ही या घर के किसी कमरा में खेती करना हो तो वो हर की घर की महिला कर सकती है। इसलिए हम महिलाओं के खाली समय का सदुपयोग करके उनको सशक्त कर सकते हैं। इस तरह से मशरूम न केवल हमारा एक पोषक आहार है, एक कुपोषण का जरिया है, बल्कि यह कई मायने में हमारे लिए उपयोगी है।
0: जी, तो ये आपने जाना कि इसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए, कैसे ये हमारे लिए खास है, क्योंकि इसमें हमें कहीं बाहर धूप में और जो आंधियों में नहीं रहना पड़ता, यानी हमें भूमि पर नहीं जाना पड़ता है, बस अपने आप कमरे में ही इसे उगा सकते हैं, छोटे से कमरे में छांव में ही आप इसे उगा सकते हैं। और मैम, इसके औषधीय गुण के बारे में हम जानना चाहें, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग जो है हर चीज़ के औषधीय गुण को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और इसमें इससे बचाव के लिए क्या हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलेगी, पौष्टिक चीज़ें हैं वो मिलेंगी, तो इसके पौष्टिक एवं औषधीय गुण के बारे में बताएं।
1: मशरूम जो है वह सभी उम्र के लोगों के लिए स्वादिष्ट व उत्तम पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें का प्रोटीन ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन अमीनो अम्ल के कारण उच्च श्रेणी का माना जाता है, और इसे हम आसानी से पचा सकते हैं, इसलिए इसके प्रोटीन को सुपाच्य प्रोटीन कहा जाता है। उत्तम प्रोटीन के कारण कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का भी उचित अवशोषण होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के कारण दांतों की समस्याओं से दूर करता है। बी कम्प्लेक्स ग्रुप में इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है, जो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। इसमें लौह तत्व की पूरी मात्रा शरीर को उपलब्ध होने की अवस्था में होती है, इसलिए यह जो एनीमिया है उस एनीमिया के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। इसमें भस्म और रेशे उपलब्ध होने के कारण पेट का जो अम्लीयपन होता है या कब्ज होता है उसकी समस्या को यह दूर करता है। नियासिन और पेंटोथेनिक अम्ल जो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यह चर्म रोग तथा हाथ व पैरों के जलन को समाप्त करने में सहायक होता है। मशरूम में पाया जाने वाला इंगेस्टेरॉल पाचन क्रिया के दौरान विटामिन डी में बदल जाता है। अतः यह हृदय रोगियों के लिए भी अच्छा भोजन है और हड्डी के हमारे मजबूती के लिए भी अच्छा है। इसमें कम कैलोरी, कम वसा, कम स्टार्च, कम कोलेस्ट्रॉल तथा अधिक पोटेशियम सोडियम अनुपात के कारण यह उन व्यक्तियों के लिए वरदान है जो मोटापे, अधिक तनाव, हृदय रोग एवं मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है। अतः यह मशरूम ना केवल स्वादिष्ट है, ना केवल पौष्टिक है, बल्कि औषधीय उपयोगिता और गुणों से भरपूर है।
2: जी,
1: इसे FAO ने एक मशरूम को संपूरक आहार का दर्जा भी दिया है।
2: संपूरक आहार यानी कि इसमें हर वो चीज़ मिलेंगी आपको जो आपके शरीर को जिसकी ज़रूरत है। तो मैं आप जानते हैं कि बिहार का जो जलवायु है आप भी इससे अवगत हैं, तो क्या इसमें हम ये जान सकते हैं कि मशरूम के कौन कौन सी प्रजाति हमारे इस बिहार की जलवायु में लगा सकते हैं हम, और ये अच्छा जो फल है वो हमें मिलेगा इसका?
1: मशरूम कैसे बिहार में हम लोग चार तरह की प्रजातियां जो कि लगा सकते हैं, एक बटन मशरूम, दूसरा ऑयस्टर मशरूम, तीसरा मिल्की मशरूम और चौथा पुआल मशरूम। इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है वह बटन मशरूम का होता है, लेकिन बटन मशरूम की तकनीक थोड़ी जटिल है। उसमें हम लोग को कंपोस्ट बनाना होता है और कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया सितंबर लास्ट अक्टूबर में हम लोग करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट बनाने में छोटी विधि से यदि हम कंपोस्ट बनाए तो लगभग 15 दिन लगता है और लंबी विधि से बनाए तो 1 महीने लगता है। और लेकिन इसमें हमारे किसान भाई ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपोस्ट बनाने की जो खुले में प्रक्रिया होती है तो उसमें काफ़ी जो इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है और कंपोस्ट उम्दा क्वालिटी का नहीं बनता है। और लेकिन हमारे किसान भाई बना रहे हैं, भागलपुर में भी कई किसान भाई बना रहे हैं। तो आप यदि बटन मशरूम खेती करना चाहते हैं तो सितंबर के लास्ट में आप इसके लिए कंपोस्ट बना सकते हैं, और कंपोस्ट बना करके फिर कंपोस्ट को निर्जीवीकृत करके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद उसको निर्जीवीकृत अखबार से ढक देते हैं। फिर जब उसमें माइसेलियम रन कर जाता है तो फिर उसमें हम लोग केसिंग करते हैं, फिर केसिंग के बाद उसमें फलन आता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा जो खेती होती है हमारे यहाँ वह है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम की तकनीक काफ़ी सुगम है, काफ़ी आसान है, और इसे बहुत कम कीमत पर आप इसकी खेती आप कर सकते हैं। लेकिन है कि इसका मार्केट में बहुत डिमांड नहीं है, इस कारण से क्या कि इसको हम लोग लाइफ बहुत कम है, इसको हम कोई प्रोसेस करके इसको ताज़ा हम नहीं रख सकते। जैसे कि बटन मशरूम को हम हार्वेस्ट के बाद भी 1 सप्ताह तक रख सकते हैं, उसको हम लोग उसके कुछ रसायन है सोडियम पोटासियम मेटाबोसल्फाइट, उस रसायन के साथ इसको यदि ट्रीट कर दें तो इसको हम लोग 1 सप्ताह तक रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। लेकिन ऑयस्टर मशरूम को हम किसी रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है वह गलने लगता है। अच्छा। इसका मार्केट नहीं है, लेकिन यदि इसको हम ताज़ा इसका यदि मार्केट उपलब्ध हो, यदि ताज़े रूप में हम इसका सेवन करें तो यह काफ़ी उपयोगी मशरूम है, काफ़ी पौष्टिक है और इसकी खेती बहुत आसान है। तो हम लोग जो भागलपुर में मुख्यतः इसकी खेती होती है ऑयस्टर मशरूम की होती है, और इसका भागलपुर में इसका लोकल में बाजार उपलब्ध है। जो भी किसान करते हैं उनको यदि पहले सीजन में जो किसान करते हैं तो थोड़ी मार्केटिंग की समस्या होती है, लेकिन वो जैसे ही दूसरे लोग जान जाते हैं उनको मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं आती है। प्लस दूसरा कि इसका उत्पाद बना के रख के ऑफ सीजन में इसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, और इसकी भी तकनीक काफ़ी आसान है। इसके लिए गेहूँ का भूसा या पुआल की कुट्टी को हम लोग मौसम में भंडारित कर लेते हैं, जिस मौसम में उपलब्ध हो सस्ते में, उसके बाद इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। निर्जीवीकृत करने की अलग अलग प्रक्रिया है, भाप द्वारा, ताप या फिर रसायन द्वारा निर्जीवीकृत करके इसके नमी की जांच करते हैं। पर्याप्त मात्रा में नमी होने के बाद इसमें हम लोग मशरूम का बीज या स्पॉन से बिजाई करते हैं और इसको पीपी बैग में, पन्नी में उसको पैक करके किसी कमरे में, झोपड़ी में, निर्जीवीकृत झोपड़ी में इसको रख देते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद माइसेलियम पूरी तरह से रन हो जाता है। 20 से 25 दिन के अंदर पहला फसल निकलता है, और फिर पहला फसल तोड़ने के बाद हम उसमें लगातार नमी देते रहते हैं। फिर दूसरा फसल आता है, दूसरी फसल तोड़ने के बाद भी हम लगातार नमी देते हैं, फिर तीसरी फसल भी आती है। उसके बाद 3 फसल लेने के बाद भी उसमें फसल आता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 3 फसल के बाद उसे या तो पशुओं को खिला देना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट पीट में उपयोग कर लेना चाहिए या जमीन के अंदर डाल दें कि वो कंपोस्ट में बदल जाए।
2: जी,
1: और इसकी तकनीक काफ़ी आसान होती है। इसकी यदि आपको प्रशिक्षण लेना हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र अपने सबौर में है, भागलपुर में स्थित है, वहाँ संपर्क करके आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। और कई प्रशिक्षित किसान भाई भी हैं जो कि केवीके से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने गाँव में भी प्रशिक्षण देते हैं, तो उन किसान भाइयों से भी संपर्क करके आप इसकी खेती कर सकते हैं।
2: अभी फिलहाल मौसम की बात करें तो इस मौसम में ऑयस्टर मशरूम जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं मैम, तो इसकी विधि के बारे में जैसा बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे इसके उत्पादन की विधि होगी और कैसे वो इसे लगा सकते हैं।
1: ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम आप गेहूं का भूसा ले लें। यदि आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो गेहूं का भूसा ही लें। गेहूं के भूसा को आप रात भर फुलो भिगो दें पानी में। सुबह में जैसे आप धान को उबालते हैं धान से चावल बनाने के लिए, इसी तरह से उसको किसी बर्तन में लेकर के उसको उबाल लें। जब पूरी तरह से भाप आने लगेगा तो उसको उस बर्तन को उतार के रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसे किसी टोकरी में, साफ सुथरा टोकरी में पलट दें, उसका पानी निकलना बंद हो जाए तब उसे किसी प्लास्टिक सीट पर, साफ सुथरा निर्जीवीकृत प्लास्टिक सीट पर उसे फैला दें छांव में जहां हवा लगता रहे। फिर जब उसमें नमी लगभग 70-75% नमी बचे तब उसमें आप 10 kg जैसे आपका भूसा है तो 1 kg मशरूम का स्पॉन्ज चाहिए, स्पॉन्ज को उसमें मिला दें और पीपी बैग ले लें। पीपी बैग में आप मशरूम और स्पॉन्ज को पैक कर दें, फिर उसमें रबर को बंद करके लगभग 15-20 छेद कर दें, 2-3 छेद ऊपर, 2-3 छेद पेंदा और बाकी 10-12 छेद बीच में आप कर दें। उसके बाद किसी कमरे में या तो मचान बना दें या फिर शीका बना दें या फिर ज़मीन पर आधा टुकड़ी ईटा को रख के उसको रख दें, कमरे को फिर बंद कर दें और लगभग आप 15-20 दिन के बाद देखेंगे उसमें पूरा माइसिलियम रन कर गया है। तब फिर आप उसमें उसका देखेंगे कि पिन हेड निकलता है, पिन हेड निकलने के बाद 3 दिन के अंदर वो मशरूम का रूप ले लेता है। फिर आप उसको तोड़ लें और फिर नमी देते रहेंगे, फिर दूसरा और तीसरा फसल ले सकते हैं। आपसे हमने बात किया बटन और ऑयस्टर मशरूम, इसके अलावा बिहार में मैंने बताया था 4 प्रजाति का मशरूम कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्की मशरूम है और आपका मिल्की या दुधिया मशरूम है और है पेडिस्ट्रा मशरूम। मिल्की या दुधिया मशरूम की खेती हम लोग करते हैं आपका अप्रैल मई में उसकी खेती करते हैं और जो इसकी खेती के लिए भी आपको ऑयस्टर और बटन दोनों के बीच का तरीका अपनाते हैं। दोनों कुछ भाग ये ऑयस्टर का लेता है, कुछ भाग मिल्की का ये बटन का लेता है। इसके अलावा चाइनीज या पुआल मशरूम है, उसका भी खेती हम लोग मई जून में करते हैं।
2: तो ये तो आपने जाना कि ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन की विधि क्या हो सकती है और इसके अलावा भी मैम ने बताया आपको कि उपयोगिता इसकी क्या है, औषधीय गुण क्या है, मशरूम के पौष्टिक गुण क्या है। और मैम अंत में ये हम जानना चाहेंगे कि मशरूम से हम कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रमुख बात यह है कि हम उत्पादन तो कर लिए लेकिन अब बारी आती है व्यंजन बनाने की, तो कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं।
1: मशरूम के लिए व्यंजन बनाने से पहले हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों बहनों को कि बहुत लोग मशरूम खरीद के ले जाते हैं फिर कहते हैं कि उनको बनाने का प्रक्रिया सही ढंग से नहीं आता, कहते हैं कि बहुत बेकार लगा। एक्चुअली ये मशरूम में एक प्रकार का गंध होता है, यदि आप प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वह गंध रह जाएगा तो वो खाने में आपको फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि जब मशरूम तोड़ के आप हार्वेस्ट करके ले जाते हैं या खरीद के ले जाते हैं तो उसे गुनगुना पानी कर लें, गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए मशरूम को डूबो के छोड़ दें, फिर उसे जैसे स्पंज वाले रसगुल्ले का रस निचोड़ते हैं उसी तरह से उसको निचोड़ करके उस पानी को फेंक दें। फिर आप उसको धो करके मनचाहा तेल मसाला देकर इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप जैसे आप मटन बनाते हैं उस तरह से तेल मसाला देकर मटन जैसा इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप इसका भुजिया बना सकते हैं, आप इसका खीर बना सकते हैं, आप इसका रायता बना सकते हैं, आप इसका भरवा पराठा बना सकते हैं, इसका आप मशरूम कचौड़ी बना सकते हैं, मशरूम का आप कोफ्ता बना सकते हैं और मशरूम का अचार बना सकते हैं, मशरूम का बड़ी बना सकते हैं, मशरूम का खोता बना सकते हैं, मशरूम का पाउडर बना सकते हैं। तो इसलिए मशरूम का वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है, आप जो सोच सकते हैं, बस यही एक लाइन में आप समझें, मशरूम का जो आप सोच सकते हैं, जो भी डिश सोच सकते हैं वो सारा चटनी से आप मशरूम का बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप मशरूम मंचूरियन की ही बात करें, जैसे मंचूरियन आप बनाते हैं तो मंचूरियन में जो आपका इंग्रेडिएंट है वो सारा एसेसरी इंग्रेडिएंट, मतलब जो उसको मशरूम मंचूरियन बनाने में सहायक सामग्री, वो सारा सामग्री सेम रहेगा। मुख्य इंग्रेडिएंट की जगह पर आप मशरूम को ले लें तो आप मशरूम मंचूरियन बना सकती हैं। जैसे मशरूम पकौड़े की बात करें, फूलगोभी के पकौड़ा आप जैसे बनाती हैं वैसे आप मशरूम का पकौड़ा बना सकती हैं। तो फूलगोभी की के जगह पे आपको मशरूम लेना है, बाकी जो बेसन मसाला लेना था वो वैसा ही लेना है। तो मशरूम का आप जो सोच सकती हैं हर डिश मशरूम का बन सकता है, लेकिन हर ये ध्यान रखें कि उसको हम लोग थोड़ा पानी के साथ प्रोसेसिंग करके उस पानी को फेंक देंगे ताकि उसका जो एक गंध है वो गंध दूर हो जाएगा।
2: तो यहाँ पर हमने जाना कि मशरूम के कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं, और साथ ही आज का हमारा विषय भी था कि कुपोषण निवारण में मशरूम की क्या उपयोगिता है। तो मैम ने बखूबी बताया आपको कि इसके गुण क्या हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से पौष्टिक गुण हमें मिलते हैं, और कुपोषण को दूर करने के लिए क्या क्या इसमें विटामिन्स मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं, जो वसा फैट और इसके अलावा प्रोटीन सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं मैम ने बताया जैसे कि ये पूरक एक सब्जी है, पूरक आहार के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो बच्चों को अगर मशरूम मिल जाएगा तो सोचिए कि बच्चों के इस शारीरिक विकास के लिए कितना फ़ायदा होगा ये। तो इसीलिए अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत अब बच्चों को मशरूम भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरक आहार में शामिल हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इसकी उपयोगिता के बारे में बताई है, ख़ासतौर पर कुपोषण निवारण के लिए। तो आगे भी आप सभी से मुलाकातें होंगी, हम एक नए विषय के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें 90

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सामुदायिक की बात BAU के साथ में। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने वाले हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक किराना दुकान चलाते हैं। और जब हम किराना दुकान की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर समाज के हर तबके के लोग आते हैं और वहाँ पर बहुत सी बातें होती है। एक किराना दुकान में जब कोई बैठता है तो वहाँ पर कई बार ऐसे 4-5 लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं और अलग अलग बातों के बारे में वो चर्चा करते हैं, देश विदेश के मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके समाज में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या उनकी परंपरा है उसके बारे में भी बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि किराना दुकान जो होता है वहाँ पर हर बात होती है, हर तरह की बात होती है और आप कह लीजिए कि हमारे जो समाज की होती है वो एक तरह से आत्मा है। हर किसी के घर पे राशन तो पहुंचता ही है, साथ ही हर किसी के घर की गपशप और हर किसी के घर की परेशानी भी वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही विस्तारित तरीके से वहाँ पर चर्चा की जाती है। ऐसे ही किराना दुकान एक संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, रंजीत कुमार। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जितनी भी इनके जितना भी इनसे बन पड़ता है ये अपने आसपास के लोगों की मदद भी करते हैं। और अगर इनके पास कोई जानकारी होती है, किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी है या फिर कुछ बदलाव हुए हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, ये बातें भी लोगों तक पहुंचाते हैं। और इनके पास एक बहुत ही अच्छा साधन है, इनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म कह दीजिए है कि किराना दुकान है इनके पास। बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की परेशानी बताते होंगे और इनसे जहाँ तक हो सके उनकी परेशानी का समाधान करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रंजीत कुमार का। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
11: नमस्कार मैम।
10: तो रंजीत जी, आप बताइए कि किराना दुकान आप कब से चला रहे हैं?
11: ये पारिवारिक है, बहुत पुराना है, करीब 10-20 साल हो गया।
10: 10-20 साल हो गया। तो जब किराना दुकान में आप बैठते हैं तो बहुत तरह तरह के लोग आते होंगे, बहुत तरह तरह की परेशानी बताते होंगे।
11: जी जी।
10: तो रंजीत जी, आपके किराना दुकान में तरह तरह के लोग आते होंगे, उनके तरह तरह की परेशानियां वो आपको बताते होंगे।
11: जी जरूर बताते हैं।
10: तो जब आप उनकी परेशानी सुनते हैं तो आप अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि उनकी मदद हो सके?
11: जी जरूर करते हैं।
10: तो किस तरह की मदद आप करते हैं?
11: पहले तो आर्थिक रूप से जरूर मदद कर देते हैं और क्या कहता है, न्यूज के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है, पेपर के द्वारा होती है, फेसबुक के द्वारा होती है, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो इस तरह से होता है। अब ऐसा नहीं कि बोल उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, वेरीफाई करके मतलब जो सही जानकारी होती है वही सिर्फ देते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगा।
10: तो मतलब आप जानकारी पहुंचाते हैं लोगों तक और
11: जी,
10: सही
11: जी।
10: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप जानकारी, न केवल जानकारी पहुंचाते बल्कि उसको वेरीफाई करके लोगों तक पहुंचाते हैं
11: जी।
10: जो सही बात है वही लोगों तक पहुंचे, ये बहुत ही अच्छी बात है। जानकारी पहुंचानी दूसरी बात होती है और सही जानकारी पहुंचानी सबसे ज़रूरी है। तो आप सामाजिक कार्य करते हैं तो मतलब कब आपने ऐसा काम करना शुरू किया और लोगों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, तो ये कब से आपने शुरू किया?
11: ये मैम करीब 2004 या 2005 से ये रेगुलर चल रहा है।
10: पहली बार आपने किसी की किस तरह की मदद की थी और क्यों की थी?
11: पहली बार मैम ये क्या कहता है, एक आदमी बीमार पड़ा था तो उनको हमने मायागंज ले गए थे, वहाँ डॉक्टर से जितना देर भी टाइम लगा सब चीज़ वो प्रोवाइड करवाए, इलाज करवाए, फिर वापस आ गए। फिर इस टाइप से मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते, ऐसा नहीं कि ये फैमिली को सिर्फ देखते हैं, समाज में जो भी आ सारे को देख करते हैं, कोशिश करते हैं।
10: तो जिनकी आप पहली बार आपने मदद की थी वो क्या बुजुर्ग आदमी थे?
11: जी मैम।
10: कई बार हमारे समाज में ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके आसपास बच्चे नहीं हैं।
11: जी जी।
10: परेशान हो जाते हैं वो।
11: जी।
10: तो ऐसे और भी आसपास अभी मतलब अभी भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं?
11: जी।
10: जिस तरह की भी मदद हो।
11: जी।
10: जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पहली बार किसी बुजुर्ग को आप हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो इसके साथ आप और आर्थिक सहायता भी करते हैं, तो आपने कभी किसी की आर्थिक सहायता की हो तो किस तरह की वो आर्थिक सहायता थी?
11: आर्थिक सहायता में यूँ क्या कहता है, उनको दवाई जब दिला रहे थे तो उनके पास पेमेंट का इशू था, तो हमने पेमेंट इशू क्लियर कर दिया और वो ये नहीं सोचे कि वो कब देंगे। जब दिए तो दिक्कत
12: बस आपने यही सोचा कि दवाई के लिए पैसे दे रहे हैं तो जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है। तो और जब आप आर्थिक सहायता करते हैं रंजीत जी, तो क्या आप को कभी ऐसा लगता होगा कि जितनी उन्हें ज़रूरत है सामने वाले को उतनी जो रकम है हमारे पास नहीं है, तो फिर आप किसी और की भी मदद लेते हैं या फिर आपसे जितना बन पड़ता है वही आप करते हैं?
11: कोशिश करते हैं मैम कि दूसरे से भी हेल्प लें, लेकिन सब आदमी नहीं समझता है, तो जहाँ तक मेरा अपना होता है उतना ही करके छोड़ देते हैं मैम, और उनको रास्ता बतला देते हैं कि इस रास्ते से आप जाइए तो अगला आप और ज़्यादा आपका सहायता हो जाएगा मैम।
12: तो आपके किराने दुकान पे कई बार ऐसे भी लोग आते होंगे जिन्हें कोई राशन नहीं लेना या कोई और चीज नहीं खरीदनी?
11: जी
12: वो केवल पूछने आते होंगे कि भैया कोई परेशानी है तो उसके बारे में बता दीजिए, योजना के बारे में जानने आते होंगे। तो कई सारे कार्ड बनते रहते हैं, कई सारे और भी चीजें होती है, तो उसमें भी आप लोगों को मदद करते हैं?
11: ये आयुष्मान योजना जो निकला था उसमें भी बहुत सारे आदमियों को बताते रहते थे हमेशा, और ये स्वच्छ भारत अभियान का जो टॉयलेट वाला सिस्टम निकला था तो उसमें भी बहुत सारे को बतलाते रहते थे। अभी भी बतला देते, बहुत अभी भी छूटा हुआ है कि बहुत जगह अभी भी टॉयलेट नहीं बना है, तो उस बारे में भी बतलाते हैं कि इस रास्ता जाइए आपका टॉयलेट बन जाएगा, से करते रहते हैं।
12: तो रंजीत जी आप लोगों को टीका के बारे में भी जागरूक करते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग टीका से डरते हैं।
11: जी मैम।
12: तो जब आप उन्हें टीका के बारे में बताते हैं तो किस तरीके से आप उन्हें बताते हैं?
11: बतलाते कि नहीं ये सरकार का जो टीका है ये वेरीफाई किया हुआ है, सब चीज सही है, आपको अपंग जो होता है वो नहीं होगा, बौंझपन नहीं होगा, इसी तरह से समाज में फैला हुआ ये सुई लेने से मतलब हो जाता है, लेकिन उसको बोलते हैं नहीं ये कुछ नहीं होगा, हम भी लिए हैं और बहुत कुछ दिलाए में कहीं कोई इस तरह का शिकायत नहीं आई है अभी तक।
12: तो रंजीत जी आपके जब किराना दुकान पे इन सब के बारे में बातें तो होती हैं, लोग अपनी परेशानी लेकर भी आते होंगे, लोग अपने घर की परेशानी घर की बात भी लेकर आते होंगे, और कई बार जैसे अभी त्यौहार आने वाला है तो त्यौहारों के बारे में भी बात करते हैं, तो क्या आप कभी उन्हें कोई किस्सा कहानी सुनाते हैं? जैसे अभी विश्वहरी पूजा आने वाली है तो क्या इसके बारे में भी आप उन्हें बताते हैं?
11: हाँ जरूर बताते हैं।
12: तो क्या कहानी जो है विश्वहरी पूजा के पीछे की, वो कहानी आप हमें हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
11: जरूर मैम, जरूर सुनाना चाहेंगे, क्यों और अगर हम कहीं बाहर किसी राज्य में जाते हैं खासकर बंगाल तो जरूर जाते हैं, तो वहाँ इस सब का जो कहानी है ये बेला बसरी वाला तो उसको और वहाँ चाव से सुनते हैं, वहाँ बंगाल में उतना नहीं है इसकी जानकारी, तो जब हम लोग जाते हैं यहाँ का गाना वीडियो जो भी चीज़ होता है तो ये सब को बतलाते हैं, तो और वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, कभी कभी आते भी हैं वो लोग देखने के लिए यहाँ।
12: आप हमारे श्रोताओं को कहानी सुनाइए रंजीत जी।
11: जरूर मैम, जरूर सुनाइए। ये कहानी है बिहला और विसरी के लिए, अभी जो अभी जल्दी इधर आने वाले हैं। ये कहानी है ऐसे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ये नाथ नगर चंपा नगर से शुरुआत होती है, इस कहानी में एक चांद सौदागर रहते थे, चांद सौदागर था वो शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी के जो परम भक्त थे तो शिव जी की पुत्री कथित पुत्री है क्या कहते हैं मनसा देवी, वो एक बार चांद सौदागर से मिली और बोली कि आप जब मेरे पिताजी की या मेरे देव के पूजा करते हैं तो आप मेरी भी पूजा कीजिए, मैं भी तो उस लायक हूँ ना, तो लेकिन चांद सौदागर बोले कि नहीं देवी, मैं सिर्फ आप भगवान शिव के ही पूजा करूँगा, आपकी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हृदय को स्वीकार नहीं होगा। तो बेला मनसा देवी क्रोधित हो गई उस पर, तो क्रोधित हो गई तो का वो डराया गया, धमकाया गया कि आप अगर पूजा नहीं कीजिएगा तो मैं आपके सारे पुत्रों को मार दूंगी, आपका जहाज डुबा दूंगी, आपका बिजनेस बर्बाद कर दूंगी, हमने आपको किसी तरह से जीने लायक नहीं रहने दूंगी, सारे नुकसान पहुंचाऊंगा। फिर भी चौंस वगैरह अगर बोले कि नहीं देवी आप कुछ भी कीजिए मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, ये अटल मतलब ये निर्णय लिया हुआ है फाइनल। तो फिर भी उनको उनका जहाज जो था वो डुबा दिए, बिजनेस खराब कर दिए, छह पुत्र जो थे सबको मार दिए, फिर भी वो नहीं माने। तो फिर जब छह पुत्र सारे को मार दिए तो भगवान शिव का पूजा करते करते चांद सौदागर के घर में फिर एक दो वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम लखिंदर था। तो जब लखिंदर बड़े हुए वो भी उसी टाइप से भी सब चीज़ करने लगे। लखिंदर जब बड़े हुए तो उनका भी साथ चांद सौदागर शादी करवा दिए देवी बिहला से, देवी बिहला से शादी करवा दिए। तो देवी बिहला को ज्योतिष जी ने बतलाया कि आपका ये जो शादी हो रहा है तो ये क्या कहते हैं आपके ज़्यादा शादी नहीं ज़्यादा दिन टिकने वाली है, क्योंकि आपका आपके पति को अकाल मृत्यु आने वाली है आज ही रात में। फिर भी वो नहीं माने कि नहीं ये मेरे रहते नहीं ऐसा हो सकता है। तो उसके पहले ये हुआ था कि चांद सौदागर एक महल बनवाए थे, तो वो लोहे का महल बनाया गया था, एकदम बारीक एक भी छिद्र नहीं हुआ, उनका जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हुआ, लेकिन जो बनाने वाले वो थे विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा जी, उनको देवी क्या नाम है बिला नहीं मनसा देवी सॉरी मनसा देवी को बोला गया कि आप जो है मेरे कहने पे एक छोटा सा क्षेत्र दीजिए जो कि पता नहीं चले, चेक भी हो जांच भी हो फिर भी पता नहीं चले कि ये छिद्र है। तो सब चीज़ चेक हुआ, सब चीज़ सही हो गया, उसी महल में दोनों को रखा गया था, लखिंदर को और देवी बिहला को। तो जब प्रथम रात्रि थी तो उसी दिन रात में तो वो देवी मनसा देवी जी जिसके एक सांप को भेजा गया एकदम महीन छिद्र में, एकदम चीटी की मतलब हवा टाइप का एकदम, तो वो उसमें गया और जब गया तो देवी बिहला जो है जब पता चल गया कि इस मेरे में आ गया है, मेरे रुमाल में आ गया है, तो देवी महल में आ गया तो उनको बोला कि आप मेरे पति को नहीं मारिए, आपको जो बोलिएगा हम करेंगे। रात भर उनका सांप का सेवा हुआ, दूध लावा जो भी चीज़ होता है खाने पीने का सब चीज़ रात भर दिया गया। लेकिन एक दोपहर एक टाइम आया 2 से 3 बजे के रात में, दोपहर लास्ट पहरेरी में, तो उनका नींद आ गया, उनको तो नींद आ गया, बस वो उसको डस लिया तो लखिंदर को डस लिया गया। तो सुबह राजकुमार था राजा था, तो सुबह आराम मचने लगा, पूरा राज्य में हाहाकार मच गया, मेरे राज्य का क्या होगा, सब मतलब परेशान हो गया, सब कहा कि इसको तो जलाया नहीं जा सकता है तो अब इसको क्या किया जाएगा। तब देवी बिहला बोली कि नहीं मैं अपने पति को जीवित करके दिखाऊंगा, चाहे इसके मुझे संसार में कहीं भी जाना पड़े। तो एक केले का थम होता है, तो उसको मंजूसा बोला जाता है, उस पर वो नाव टाइप का बना दिए और उसी पे चल नदी के द्वारा चलते गए। 2-3 साल 4 साल 5 साल इस टाइप से जाते यात्रा करते करते बहुत दूर पहुँची। बीच में बहुत सारा तूफान आया, आंधी आया, बहुत कोई डराया कि नहीं आप नहीं जा पाइएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी परेशानी हुई, लेकिन देवी बिहला जो है नहीं डरी, देवी बिहला नहीं डरी। तो वो यात्रा करते करते देवों का जो घाट होता है वहाँ धोबीन घाट कहा जाता है, तो उस घाट पे वो पहुँची। तो धोबीन घाट पे जो वहाँ का जो कपड़ा धोने वाली थी देवलोक का धोबीन घाट, मैं जो कपड़ा धोने वाले थे तो याद नहीं आ रहा अभी, तो उनको बोलेगी देवी, बोला बोले कि देवी आप, मैं इतने पृथ्वी लोक से आई हूँ, मैं इतना इतना कष्ट की हूँ, आप प्लीज़ मुझे देवों मैं भगवान शिव से मैं एक बार मुझे मिला दीजिए और देवी मनसा से भी मिला दीजिए ताकि मैं अपने पति को जीवित कर सकूँ। बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रयास किए, तब उनको दया आ गया, धोबिन जो थी तो उनको दया आ गई कि हाँ मिला देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मिला दिए। तब उनसे रिक्वेस्ट की देवी भगवान से, भगवान शंकर से भी बोले, तो बोला कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, ये जो किया है वो मेरी पुत्री है, उनसे ही बात कीजिए, वही कर सकती है इसके बारे में कुछ भी। तो देवी मनसा को बोले, तो बोले मनसा बोले ठीक है, मैं आपके सब चीज़ वापस कर दूंगा, आपके पुछे पुत्र को मार जो मरी मरा है उनको वापस कर दूंगा, कचरा हाई डूबा उनको वापस कर दूंगा, आपका व्यापार बिजनेस तबाह हो गया उनको ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी पूजा करनी होगी, ये शर्त तो आपको मानना ही होगा। तो जो राजा थे चांद सौदागर, तो वो बोले कि भगवान शिव का मैं पूजा करता हूँ, आपकी पूजा मैं कैसे कर सकता हूँ। तब देवी मनसा बोली कि ठीक है आप उनका भी पूजा कीजिए, लेकिन एक हाथ से उनका पूजा कीजिए, एक हाथ से मेरा भी पूजा कीजिए, नहीं मेरा बाएं हाथ से आपको कर कीजिए, और उनका जो जैसे ही करते हैं आप दाएं हाथ से वो कर सकते हैं। तो कहा ठीक है मान दे, आप मान लीजिए, भगवान शिव उनको बोले तो मान लीजिए ठीक है, तो कहा ठीक है आज से हम पूजा कर देंगे। तो उनको जैसे ये बोले थे उसी समय से उनका सब चीज़ सही हो गया, छह पुत्र जिंदा हो गया, सातों पुत्र जिंदा हो गया, व्यापार बिजनेस सही हो गया, जहाज़ फिर वापस अपने जगह पर आ गया, सब सारे जो चीज़ समाप्त हुआ था सब चीज़ वापस आ गया। तब से लेकर आज तक वो देवी बिलाबुसरी का जो पूजा होता है वो हमारे समाज में ये चल रहा है, परंपरा के रूप में चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज इसका उद्भव स्थल चंपानगर नाथ लगर, ऐसे तो पूरा देश में भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ का एक विशेष महत्व है
12: चंपानगर में जो उनका स्थान है, वहाँ पे एक महीने पहले से ही तैयार
11: जी जी जी जी,
12: और जो विवाह वाली रात्रि होती है पूरी परंपरा पूरी रीति रिवाज के साथ।

0: जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं आप करते रहिए, और हमारे समाज में ऐसे अगर कुछ और भी लोग हो जाए तो बहुत हमारा समाज बेहतर बन सकता है। तो रंजीत जी, आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको जिस भी रूप में सामाजिक स्तर पे मदद करने का अवसर मिले, वो नहीं चुकी कि मेरा क्या भला हो रहा है, आपका भला बाद में होगा, पहले आप दूसरे का भला कीजिए। और ये भी नहीं देखिए उसके बदला में मुझे क्या मिलेगा, अगर आपके पास समय है और आर्थिक रूप से है करने का है तो ज़रूर कीजिए। अब पैसा नहीं है आर्थिक रूप से तो कम से कम समय जरूर दीजिए, समय भी नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए उसको बतला दीजिए, ये प्रोसेस कीजिए, ये रास्ता पे जाइए, आपको ये हो जाएगा, इनसे मिलिए ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कीजिए कि उनका वो कुछ नहीं कर सकता था, मतलब वो नहीं कुछ बोला तो हम नहीं बोलेंगे करेंगे, नहीं, आपका ये भलाई का है, ये बाद में आपका इसको फल मिलेगा, तुरंत नहीं मिलता है। आदमी आज के ज़माने में कि तुरंत क्विक चाहता है, नहीं, हर चीज़ का थोड़ा सा समय लेना चाहिए, ये चीज़ मेरा मानना है।
0: बिल्कुल रंजीत जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि आप अपनी भलाई को बाद में सोचिए कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, वो बाद में सोचिए। सामने अगर कोई ऐसे परेशानी में व्यक्ति दिख रहा है तो उसकी पहले मदद कीजिए, और उसका अगर जो फल मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। कह के गए हमारे कृष्ण जी, गीता में गए, उन्होंने कहा है कि पहले कर्म कीजिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए।
1: जी जी
0: जी। और अगर आपकी एक किसी की मदद करने से किसी एक का भी अगर भला हो जाता है तो समझिए आपने बहुत अच्छा काम किया है।
1: और एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे, आप जिस दिन मदद कीजिएगा जिस भी रूप में, चाहे एक सेकंड ही समय क्यों नहीं दें, तो आप घर आइएगा, खाना खाइएगा, आराम कीजिएगा ना, तो आपको उस दिन लगेगा कि हम बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिए हैं। आपके पास एक बहुत पैसा है लेकिन अगर क्या कहता है शांति नहीं है मन में, तो वो खुशी नींद नहीं आएगी। ये चीज
0: किसी की मदद करने के बाद जो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो रंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ आए, आपने जो बातें हमें, जो कहानी आपने हमें सुनाई, हमारे श्रोताओं को सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से आप काम करते रहिए। उम्मीद है कि आपकी कहानी से जो आप कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, उसे हमारे श्रोताओं को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने स्तर पर अपने आसपास के लोगों की जिस तरह से हो सके मदद कर सके।
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जितना हो सके आप अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। इसी कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त।

कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहाँ आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे ज़रूर भेजिएगा और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है, और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है, पदार्थ है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी, बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है। और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुंझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है, तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं, तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज़ 5,000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही ले। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही, इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर जरूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐंठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जांच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और फिलहाल आज जो विषय लेकर आए हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बाढ़ की स्थिति की बात करें तो इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, लेकिन हम एक आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो हम अपने आप के बचाव के लिए ऊँचे स्थान पर जाते हैं, अपने खान पान का पहले से सारी तैयारियाँ कर लेते हैं, लेकिन जो पशु हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो तो पशुपालक भाइयों पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में पशुपालक भाई बाढ़ की स्थिति में अपने पशुओं के आहार का, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखेंगे, इन सारी जानकारी को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले।
11: धन्यवाद
6: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जैसा कि हमारा विषय है कि बाढ़ ग्रस्त इलाके में पशुओं की रख रखाव, तो ऐसे स्थिति में पशुपालक भाई क्या करें, क्योंकि देखा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो पशुओं के लिए उनके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
11: जी, ये एक आम समस्या है और ख़ासकर भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के में जल जमा के जल नदियों के पानी में जब काफ़ी बढ़ोतरी होती है तो बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है। तो जहां पर बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है वहां के पशुपालक अपने पशुओं पशुपालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां अचानक बाढ़ आ जाती है वहां पशुओं को के रख रखाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य तो छत पर जाके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए ऊंचे स्थान पर ले जाना आवश्यक होता है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, खासकर पशुपालन विभाग के द्वारा, कई ऐसे स्थान हैं जो प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में चिन्हित स्थान होते हैं, जहां से पूर्व से ही वो स्थान निर्धारित है जहां आप अपने पशुओं को बाढ़ के अचानक स्थिति में अगर पानी आ गया तो वहाँ से आप अपने पशुओं को निकाल कर ले जा सकते हैं और वहाँ रख सकते हैं। वहाँ वैसे जगहों पर उनके पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रति वयस्क पशु 3 से 5 किलो सूखा चारा और सूखा भूसा और कुछ दाना की व्यवस्था की जाती है, जो प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वैसे जगहों पर जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो वहां के पशुपालक अपने पशुओं के चारे के लिए ऊंचे स्थान पर चारा पहले से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वैसे स्थानों पर जहां अचानक बाढ़ आती है तो पूरी तरह से चारा भींग जाता है, भूसा भींग जाता है, हरा चारा डूब जाता है। तो उस स्थिति में हमारे पशुपालकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खास करके पशुओं के चारे प्रबंध में। तो वैसे जगहों पर आप देखेंगे कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं या जो ऊंची सड़कें हैं वहां अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लेकर जाते हैं या ऊंची स्थान पर लेकर जाते हैं, लेकिन पशु को ले तो जाते हैं लेकिन उनके सारा जो चारा है वो डूब जाता है, और भींगा हुआ चारा आप अगर अपने पशुओं को खिलाएंगे तो उनमें कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप पहले से इसका निर्धारण करें, अगर बाढ़ आती है तो सूखे स्थान पर चारा का व्यवस्था करके रखें, अन्यथा ऊंचे स्थान पर जो सरकार के द्वारा चिन्हित है, पशुपालन विभाग के द्वारा, राज्य जिला प्रशासन के द्वारा, वैसे जगहों पर पूर्व से ही बाढ़ के समय जब आने की संभावना हो पूर्व से ही अपने पशुओं को ले जाकर रखें तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लें।
6: जी, तो ये बात हो गई कि कैसे रख रखाव करना है। अब देखा जाता है डॉक्टर साहब कि जब बाढ़ आता है तो चारे का काफ़ी अभाव हो जाता है, जो कि मुख्य यूं कि आहार है हमारे पशुओं का, तो ऐसे में पशुपालक भाई कैसे खाने का प्रबंधन करें?
11: जी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब चारा एकाएक बाढ़ आने के बाद जब चारा पूरी तरह से घर से नहीं निकाल पाते हैं लोग, भूसा अपना या पुआल, तो वैसी स्थिति में जो वैकल्पिक चारा का स्रोत है, पेड़ की पत्तियां हैं, डालियां हैं, या जो मकई का या सूखा डंठल है, या जो अन्य अवशेष है, फसल अवशेष हैं, अगर उसकी उपलब्धता होती है तो ठीक है, अन्यथा पेड़ की टहनियां, पेड़ के पत्ते को खिलाकर आप अपने पशुओं को वैकल्पिक रूप से खिलाकर जिंदा रख सकते हैं। लेकिन उनकी पोषक तत्वों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हरेक कॉम्फेड के माध्यम से या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से या पशु चिकित्सा विद्यालयों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के माध्यम से हरेक जगह पर फीड ब्लॉक के संधारण की व्यवस्था की गई है, और खास करके अभी कंप्लीट फीड ब्लॉक जो एक ईंटे के शक्ल में कंप्रेस करके चारा को बनाकर जिसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, और जब बाढ़ की अवस्था होती है या जब चारे का अभाव होता है तो वैसे जगहों के पशुओं के लिए इस फीड ब्लॉक को आसानी से हम पहुंचा सकते हैं और वहां पर फीड ब्लॉक खिलाकर अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
6: जी, अब बात करते हैं जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो कई जगहों पर जो है गंदगी जमा हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, और ऐसे में मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी कई बीमारियां होने की जो खतरा है वो बना रहता है, तो ऐसे में इसका जो बचाव है वो कैसे करेंगे पशुपालक भाई?
11: जी, जल जमाव के बाद जब जब पानी जब उतरता है तो उसके बाद एक कई जगह तो कीचड़ होता है, कीचड़ के बावजूद भी नई घास का बहुत तेजी से वहाँ पर पनपती है, और खास करके वैसे जगहों पर जहाँ बाढ़ का पानी जमता है या उन जगहों पर जहाँ पानी उतरता है, वहाँ के पशुपालक अगर अपने पशुओं को नया चारा जो निकला उसको अगर खिलाते हैं तो पशुओं में छेरा नामक बीमारी जो लीवर फ्लूक के चलते होता है, जिसमें कि काफ़ी पतला दस्त होता है और उसके जबड़ा के नीचे सूजन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हर जगह नमी की अधिकता रहती है, ऐसे समय में कई प्रकार की परजीवी जनित रोग या जो ब्लड प्रोटोजोआ है उनके द्वारा होने वाले कई प्रकार के रोग हैं, जैसे बेबीसिया, थैलेरिया और ट्रिप्नोसोमेसिस या सर्रा नामक बीमारी का भी काफी प्रकोप होता है। खास करके जल जमाव अधिक होने के चलते मच्छर, मक्खी और जो चमोकन की भी अधिकता होती है उसके चलते भी कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इन जैसे आपने अभी हमने बताया कि वहाँ पर ब्लड पैरासाइट या ब्लड प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं उससे बचाव के लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय में अगर आपके पशुओं में रेड वाटर या किसी अन्य प्रकार की बीमारी है तो उसके हिसाब से चिकित्सा करवा सकते हैं। लेकिन खास करके छेरा से बचने के लिए आप अपने पशुओं के बाढ़ग्रस्त इलाके में खास करके ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिसोल ग्रुप की दवा का प्रकोप करें जो कृमिनाशक है और आपके पशुओं में छेरा से बचाव में काम आ सकता है। खास की जब जल की निकासी हो जाए और नया घास आए तो ऐसे जगहों पर अगर आप देखें घोंघे की अधिकता है तो घोंघा एक प्रकार से वेक्टर का काम करता है, तो उनको जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक का सॉल्यूशन से घोल बनाकर देकर घोंघे को नष्ट करें। अगर घोंघे नष्ट हो जाएंगे तो ये जो छेरा नामक रोग है इसके जो वेक्टर में बीच में ब्रेक होगा और ये जो छेरा बीमारी है इससे आप बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने पशुओं को जो पेरिनियल जो प्रत्येक वर्ष टीका लगाया जाता है पशुपालन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, इसका भी आप ले सकते हैं। HSBQ का टीका पड़ता है, फुट एंड माउथ डिजीज का टीका पड़ता है, साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस का टीका पड़ता है, बकरियों में PPR का टीका पड़ता है। इन बीमारियों का टीका जो है खास करके मई जून के महीने में HSBQ का टीका, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी में जब FMD का टीका पड़ता है, तो रोग से बचाव के से टीका से बढ़िया कोई उपाय नहीं है, अर्थात रोग होने से अच्छा है कि रोग से बचाव हम कर लें टीका के माध्यम से। तो अपने पशुओं को टीका लगवाएं, समय समय पर कृमिनाशक दवा का प्रयोग करें, और अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में आपके का चारा डूब गया है और उसके बाद जल्द ही पानी निकला है तो अगर आप उस चारे का प्रयोग करें भी तो उसको पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही उसका प्रयोग करें, अन्यथा जो एफ्लाटॉक्सिन या इस प्रकार के कई फंगस लग जाते हैं जिससे भी कि पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उनका अगर प्रयोग आप करते हैं तो पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही करेंगे।
6: जी जी, तो इस अच्छी सी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से बातें होंगी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राजेश कुमार सर से, और बहुत ही उपयोगी वो विषय होगा। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और नमस्कार। उन्नत कृषि।
12: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
13: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
12: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
14: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
15: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
14: टीको ये मौसम है टीका।
1: टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
0: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
15: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
16: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
17: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
16: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
17: आपकी सेहत की बातें,
16: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
17: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
16: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
17: वो कहाँ पर?
16: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
17: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
15: उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
18: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं। और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
6: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
18: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है, 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
6: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
18: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है, तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है। इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से, अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं, वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
6: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी, उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
18: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं, तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहां जहां पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहां बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियां हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
6: जी सर। सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
18: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें दो तीन तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भूटा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
6: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
18: बीज दर जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
6: और बुआई की विधि क्या?
18: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है तो हमारा, और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
6: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में।
18: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पे डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है, ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
6: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
18: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
6: सर, बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
18: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भूटे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
6: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
18: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पे बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिस पे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा, और चूंकि नाली पे किए हैं मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
6: जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
18: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है, तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें, इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें, बीज पैकेट खरीदें उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
6: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
18: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेड़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है पौधा है उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
6: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
18: धन्यवाद, धन्यवाद।
6: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि,
12: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
13: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
12: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
14: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है।

0: रूबेला बीमारी है खातर, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू तेरे कितने दोस्त है?
2: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग

खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी की ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओ, और मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है ना।
3: जी,
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी,
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी,
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात।
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी,
3: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
3: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
3: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
2: जी,
3: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
2: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
3: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
2: जी,
3: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
3: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
2: जी,
3: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
2: इसका संबंध खान पान से है।
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
3: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: अश्रोता, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
3: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
2: सरिया खेलते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे अवर।
0: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
3: प्रणाम पिताजी।
4: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
3: लेकिन क्या पिताजी?
4: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
3: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
4: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
3: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
4: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
3: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
4: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
3: जी पिताजी।
1: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
5: पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में, कैसे शुरुआत हुई?
6: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो बहुत खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ, फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था, तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
5: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
6: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटी होगी खाऊँगा, पर मैं रियाज करूँगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँगा घर की विद्या है। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अब अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दे दिया, ही नहीं दिया ही। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है, मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
5: बहुत सुंदर बात आपके बारे में, हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
6: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेता ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथई है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाते हो? हाँ खाते हैं। तो
7: सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह, तो वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे।
5: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
1: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
0: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
8: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
9: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
10: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
9: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
8: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
11: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
8: भगत सिंह।
12: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
13: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
12: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
14: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
15: कौन है?
16: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
15: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
16: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
15: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
16: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
15: ये इस शीशी में क्या है?
16: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
15: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
16: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
15: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
16: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
12: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
14: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
16: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
17: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
16: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
12: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानंद सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
14: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
8: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
11: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
18: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
19: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
20: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
19: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
21: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के माध्यम से, आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे जरूर भेजिएगा, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीजें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को खत्म करके वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है। कोई तो इसका फायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी। तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। सर आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी।
0: सर आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
1: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए। मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 500 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा। मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को। मान लीजिए हर सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें। तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में, और ऐसी खेती का बहुत महत्व है क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था। इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को। तो पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियां या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें। इसीलिए इसका महत्व आज के ज़माना में तो और भी ज़्यादा है।
0: तो सर बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसी है?
1: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं परिवार के, वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं। एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं। तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छे तरह से बेच सकता है, कम लागत में, जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए। तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहां पे भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे।
0: सर जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती। हालांकि आपने कुछ महत्व बताए, लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
1: बिल्कुल, तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं, आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसके FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना इनकम, सालाना जो आय है वो 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख पहुँच गया है। तो अगर 5 लाख किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है। उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
0: सर, जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
1: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में, मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और कर सकता है। तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान, वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फ़ायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको एफपीओ भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छी अच्छा आय भी आमदनी भी कर सकते हैं। और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज, इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है, उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
0: सर, आप लगातार एफपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, ये एफपीओ क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
1: हाँ, तो एफपीओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का। तो एफपीओ जो है आप देखेंगे कि हर जिले में बहुत सारे आजकल एफपीओ आ गए हैं। सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 एफपीओ खुल जाए, और वो हो भी गया है। तो एफपीओ का कोई भी आदमी एफपीओ बना सकता है। एफपीओ एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है एफपीओ बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं एफपीओ, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी नाबार्ड जो है वो मदद भी करती है एफपीओ खोलने के लिए, क्योंकि एफपीओ एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन नाबार्ड उसके उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका एफपीओ का जो मालिक होते हैं, जिसको सीईओ बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए, और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं, क्योंकि एफपीओ के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान। क्योंकि जानते होंगे आप कि एफपीओ के पास 300 सदस्य रहते हैं, 300 सदस्य का अगर जरूरत, अगर उसको उसको लेना है मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में, इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का एफपीओ बहुत सारा खुला है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है, एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए एफपीओ का बहुत सारा संभावनाएं हैं, और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
0: सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि एफपीओ के लोग होते हैं उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
1: हाँ एफपीओ के लोगों को नहीं, जो एफपीओ के सीईओ होते हैं, मतलब जो एफपीओ के मालिक होते हैं, सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस नाबार्ड की तरफ से कवर कर लिया जाता है। और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी नाबार्ड ही बियर करती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर कोई एफपीओ खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं एफपीओ खोलने का।
0: तो सर, सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक खेती को प्रोत्साहित करती है?
1: बिल्कुल, हाँ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो FPO तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं। अगर जिस जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार 50 से लेके 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं उसके ऊपर भी छत पर भी सरकार की योजनाएँ हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर शुरू करेंगे तो उनको एक दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
0: सर, पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
1: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है तो वो छोड़ देते हैं बीच में। और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार को एंगेज कर पाएँ। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं तो अपने परिवार को क्यों एंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में। तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पर इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत ज़रूरी है।
0: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था जो नोकिया का जो पैड वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सबके पास एक परिवार के पास एक स्मार्टफोन तो है लेकिन वो स्मार्टफोन का प्रयोग सही रूप में नहीं हो पा रहा है। जनरली लोग उसको गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन कृषि में बहुत संभावनाएं हैं। कितने सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं अभी जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सही में आपको खेती में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको जो युवा हैं आपके परिवार में वो जरूर मदद कर सकते हैं। इसलिए एक चेष्टा करनी चाहिए कि परिवार को एक साथ आके एक बार वो खेती करना शुरू करें तो इसमें ज़रूर मुनाफा होगा।
0: सर, पारिवारिक खेती को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
1: पारिवारिक खेती को अगर मजबूत करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे इसमें स्रोत हैं। सबसे पहले तो है कि गवर्नमेंट का जो भी सरकार की योजनाएं होते हैं कम से कम किसी योजना के साथ जुड़िए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी FPO से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप नई उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास से बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है आप पारिवारिक खेती करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुए हैं।
0: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
1: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल यूज रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं और वो लोग इवन वो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाज़ार पर निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जानते होंगे कितना, अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए, जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था, उस समय बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी, इतनी जटिल बीमारी नहीं हुआ करती थी। और उस समय जो वैरायटी था वो सब वैरायटी भी बहुत अच्छा था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो सब वैरायटी, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो ये सब अभी अपनाने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा और जो जिसको भी बेच रहा है वो

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है।

अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रुचि। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कंगारू केयर डे के बारे में। अलग है, सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रहा है इस पर बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत भी रखता है। और इस विषय को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज के हमारे शो में।
1: धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत में ही इतनी भावुक कर दी कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।
0: बात तो सच में बहुत बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाले कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह से गलत सोच रही हूँ?
1: अरे नहीं नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्तों में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी ज़िंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती और ख़त्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चे की देखभाल कितनी ज़रूरी है।
0: ये तो सच में बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज़्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की ज़रूरत होती है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसा मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गाँवों और दूर दराज इलाकों में। और जहाँ उपलब्ध भी होती है, वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और उसे सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रही है भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधा लगा कर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगा कर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है, बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ज़रूरी है।
0: ओ, तो इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए, वही काफ़ी है?
1: नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफ़ी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगा कर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इसमें बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यह एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसे उसे माँ के गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीके सच में इतने असरदार हैं?
1: बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई उनकी मृत्यु दर कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज़्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर मन भर आता है।
1: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: वाह, ये बात तो दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें भी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चे घर लौट आते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का क्या तरीका है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी समझ सके।
1: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह से रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे, और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांधा जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीके सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी एक तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदा क्या क्या हैं, ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज़्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज़्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन सामान्य से तेज़ी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बढ़ने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगा कर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदा दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उसके बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहता है या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी शामिल होते हैं तो बच्चे को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सहतिया जी, हर चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती है। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फोन से दूर बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चों पर रहे। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
0: और इसे कितनी देर तक करना चाहिए, क्या इसका कोई समय तय होता है?
1: कम से कम एक घंटे तक तो लगातार करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी है। शुरुआत में मैं थोड़ी झिझक रही थी और समझ नहीं पा रही थी ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए।
1: यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना ताकि हर परिवार अपने बच्चे को बेहतर देखभाल कर सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी न खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं है बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज एक शपथ लेते हैं कि
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जाँच और टीकाकरण और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही।
0: मैं आपकी दोस्त आरजे रुचि आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे इसी सेहत।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ख़ासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद
6: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
7: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40-30 रुपए से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इसे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
6: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
7: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फ़ायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
6: अच्छा,
7: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत, आप देखिए ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है। तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैट इसमें, पॉइंटेड गार्ड में, परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूज़र है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जी और फलों से ही फाइबर मिलती है। तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
6: जी।
7: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से, कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
6: परवल में,
7: हाँ, परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सब से बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
6: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्व की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में। तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है, और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
7: देखिए, परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ देखिए, परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगाने में अगर कहिए, जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीने में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का, इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए, और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे अब लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं, इसमें आप मचान विधि भी लगाते हैं, टेलिस विधि भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं। तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पर तैयार करिए, या 2x1 मीटर पर तैयार करिए। 2x2 होगा 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है, आप जो है वहाँ 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, और मिट्टी ले करके आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूरा डाल डालिए, 2 ग्राम, एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उस पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए, कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए, और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए। और अंग्रेजी के 8 के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पे जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहें तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए। इतना उसके साथ कोई मरोवत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद उस जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
6: जी।
7: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी से ढक दीजिए, और हल्का सा उस पर फवारे से इरिगेशन कर दीजिए। और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का, ज़्यादा पानी नहीं देना है इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कल्ले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है, लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है, और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको, तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा आपको जो है, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा, और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो, या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल अगर किसी से ढक दीजिए, या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े, हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के लिए चले जाइए, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आनवर्ड, जैसे ही फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे जितनी भी नोट्स है उसमें 7-8 नोट, आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोट उसमें थे, तो जितने नोट से सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए, और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए, जो मेच्योर है, खाने लायक है, टेंडर है, आप उसको हार्वेस्ट करिए, और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए
6: जी। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो हैं इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
7: देखिए परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियां तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियां हैं इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्राप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है। तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले जाते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है। कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियां जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल वन है, राजेंद्र परवल दो है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है। तो इस तरह की ये प्रजातियाँ हैं, नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है। तो ये सब प्रजातियां हैं जिसको आप, जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियां हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को दे करके 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है
6: जी।
7: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं
6: जी। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियाँ आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब की, किस प्रकार के खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
7: देखिए अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट्स देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
6: जी।
7: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है। और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में, उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए जाके उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए, तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
6: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
7: देखिए किसान भाई बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है और वह क्यों होती है। किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें 2 तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पर आता है और मादा फूल अलग पौधे पर आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है, और मादा फूल पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है। तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है, जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
6: जी,
7: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है 1:10 जरूर रखिए। जब तक आप 1:10 मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो 10 पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका, नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, आप फेरोमोन ट्रैप जो है एक एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फेरोमोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है, तो वो और मेल अट्रैक्टेंट होता है वो, तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
6: अच्छा।
7: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता, वहीं वो मर जाता है। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है।
6: जी।
7: तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
6: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल,

0: पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती, कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले, आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम भागलपुर से हैं और भागलपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, और ख़ास तौर से जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो हमारी परंपरा को इतने प्यार से दिखाते हैं कि क्या कहने। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग किसी खास परंपरा को, किसी खास त्यौहार के पीछे की कहानी को, लोक कथा को भूल रहे हैं, तो आप हमें बताइए वो कौन सी लोक कथा है, वो कौन सा स्मारक है, या फिर वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसका हम मूल स्वरूप भूल चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे ऐप पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com। आइए एक कोशिश करते हैं अपनी धरोहर को संजोने का, मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें फोटो के

माध्यम से आप हमें या तो फिर वीडियो के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको अच्छा लगे, आप हमारी ईमेल आईडी पर आप कहानी भेज दीजिए। और ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 90.8fmgreen@gmail.com। तो कहानी, कविता, फोटो, वीडियो, जो भी आपका दिल करे ज़रूर भेजिएगा। और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: मंदिरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 से 19 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को खेत के काम स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081, DHM 117 और रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 379, RU8 और बांकुला। इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रुपाई इस महीने पूरी कर ले और धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव बना रहे। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया जरूर डालें और धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भाग खेत में डाल देना चाहिए। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धन बाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा और खरपतवार निकलने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर मिर्च की बुआई कर लेनी चाहिए। मुक्त परागित किस्में हैं अलका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंत लाल। मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। किसान भाई बहनों, मिर्च के लिए बीज दर ध्यान रखें। मुक्त परागित किस्मों के लिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान दें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित बीजों से फसल अच्छे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और मिर्च की रोपाई के लिए 50x45 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो लौकी या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी की नियमित निगरानी करें और नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप हो तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस के मचान यानी कि ट्रेलीज पे चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को समर्पित यह गीत। ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और महेश को संहार करता कहा गया है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में आइए तो हमारे किसान बंधु को पालन करता क्यों नहीं कहा जाए? विश्व के समस्त प्राणी, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, धरती पर चलने वाला मानव हो या जल में विचरण करने वाला जीव जंतु, यदि किसान नहीं होते तो इनका अस्तित्व मिट जाता। तो आइए, इन किसान बंधु के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने काफ़ी हद तक प्रयास किया है, जिसको गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और ये है आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन। जी हाँ, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन। और साथ ही हर रोज़ की तरह हम एक और खास विषय लेकर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हाजिर हैं, वो है हमारा धान में समेकित कीट प्रबंधन। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच है डॉक्टर किरण कुमारी मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि धान जो है, अगर खाद्यान्न की बात करें, उसमें प्रमुख फसल है। हमारे बिहार की बात करें तो लोग जो है चावल बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। तो जहाँ तक बात होती है खेती की, धान की खेती उसी अनुसार करना होता है जहाँ पर मांग कितना है, जितना मांग हो उतना ही खेती हो। तो हमारे बिहार में इसका मांग ज़्यादा है, इसलिए इसकी खेती भी बहुत मात्रा में की जाती है। और जब खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो ज़रूरी होता है कि हम अपने फसल को कीट पतंगों से दूर रखें, क्योंकि ये हमारे फसलों को हानि पहुँचाते हैं, जिससे कि हमारी मेहनत बर्बाद होती है और हमें जितना आय, जितना मुनाफा मिलना चाहिए बाज़ार में से ले जाकर, वो नहीं मिल पाता है। तो आज इसी के प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो जिस प्रकार हमारा विषय है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम से कि धान में लगने वाले हानिकारक कीट कौन कौन से हैं।
1: जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि जो कीड़े हैं वो सभी फसलों पर को हानि पहुंचाते हैं, और सभी फसलों की तरह धान फसल पर भी कीड़ों का प्रकोप होता है। और जो जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है, वही कीड़ों के बढ़ने में भी सहायक होता है। और कीड़ों की संख्या जुलाई महीने के बाद से ही बढ़ना शुरू हो जाती है, और सितंबर अक्टूबर महीने में इनकी संख्या बहुत चरम पर पहुंच जाती है, और फिर नवंबर महीने के बाद से धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगती है। धान के प्रमुख जो कीड़े हैं जो धान फसल को हानि पहुँचाते हैं, वे हैं तना छेदक, केसवर्म, गंधी कीट, पत्ती लपेटक, हरा एवं भूरा मधुआ, सैनिक कीट एवं ग्रास हॉपर।
0: जी, तो मैम तना छेदक कीट की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये किस प्रकार हानि पहुंचाता है धान की फसल को, और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं?
1: जी, तना छेदक कीट का पिल्लू गंदापन लिए हुए उजला रंग का होता है, और या पीला हरा भी होता है। तितली जो इसकी वयस्क होती है वो तितली होती है, और उसका अगला पंख नारंगी पीला रंग का होता है। उन पंखों पर एक एक काला धब्बा होता है। इस कीट के पिल्लू धान के पौधों में छेद कर उसकी गाभा को अंदर से काट देते हैं, जिसे पौधे का गाभा सूख जाता है एवं खींचने से आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहते हैं या मृत केंद्र भी कहते हैं। बालियां निकलने के समय भी तना छेदक कीट का प्रकोप होता है, और जब बालियों की अवस्था में इस कीट का प्रकोप होता है तो बालियां केवल सफ़ेद नज़र आती हैं और दाने खखड़ी हो जाती हैं। इस कीट से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, और बीजोपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 FS का 5 ग्राम या क्लोरपाइरीफॉस 20 ईसी का 4 ml प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। साथ ही खेत की सफाई, खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। जड़ की सफाई करने से भी कीट की संख्या में कमी हो जाती है। फेरोमोन ट्रैप 10 या 12 ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप, जिसे प्रकाश प्रपंच भी कहते हैं, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। इन ट्रैपों पर, यानी फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप पर, वयस्क मौत जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, इसमें फंसकर वो मर जाते हैं।
0: जी,
1: रोपनी के पहले पत्तियों के ऊपरी छोर को काटकर खेतों में रोपनी करना चाहिए, जिससे तना छेदक के कीट के जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं
2: जी।
1: ट्राइकोग्रामा के 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 बार धान के पत्तियों पर प्रयोग करना चाहिए। कीटों का अधिक प्रकोप होने पर कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 4G या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
0: तो ये बातें हो गई हैं श्रोताओं हमारे किसान भाइयों तना छेदक कीट की, कि आप कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप की बात की मैम ने, और इसके साथ ही कैसे आपको इसको पहचानना है, कैसे ये हानि पहुंचाता है, इसके बारे में भी बात की मैम ने। मैम अब आते हैं केश वर्म, जो कि आपने बताया कि मुख्य ये कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं, तो केश वर्म कीट कैसे हानि पहुँचाता है और इसको हम कैसे पहचान पाएंगे ये भी बता दें, और साथ ही साथ इसका प्रबंधन हम कैसे करें।
1: जी, केशवर्म कीट, इसे बुढ़िया कीट भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसे बुढ़िया कीट भी कहते हैं और भनभनिया कीट के भी नाम से जाना जाता है। ये पानी लगे खेतों में ज़्यादा लगते हैं और पत्तियों की हरियाली को खा जाते हैं। कभी कभी पत्तियों को लपेट कर नली जैसा बना लेते हैं, उसी के अंदर उसकी जो क्लोरोफिल हरियाली होती है उसको खाते रहते हैं, और ज़्यादा प्रकोप होने पर खेत बिल्कुल उजला दिखने लगता है, क्योंकि ये हरियाली खा जाते हैं इसलिए उजलापन जैसा हो जाता है। इस कीट से बचाव के लिए एक बड़ी रस्सी लेकर उसे किरासन तेल में डुबा देना चाहिए, फिर उसे दोनों तरफ से पकड़कर धान के खेत में एक तरफ से दूसरे तरफ तक पौधे से सटाकर चलाना चाहिए, जिससे केशवर्म कीट खेत के पानी में गिर जाते हैं, और फिर पानी को खोलकर बहा देना चाहिए जिससे कीट वो खेत से बाहर आ जाते हैं।
0: जी, तो केशवर्म कीट के बारे में आपने जाना, और अब बात करते हैं मधुआ कीट और पत्र लपेटक कीटों के बारे में मैम, कि ये कैसे हानि पहुंचाते हैं और साथ ही इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
1: जी, मधुआ कीट दो तरह का होता है, एक तो हरा मधुआ और दूसरा भूरा मधुआ। हरा मधुआ पौधों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, और जब इनका अधिक आक्रमण हो जाता है तो इनके पौधों से रस चूसने के कारण पौधे सूख जाते हैं। भूरा मधुआ पौधों के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं, ये पौधों की धड़ से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां झुलसी नजर आती हैं और दूर से जला जैसा दिखता है, और जिसके कारण इसे हॉपर बर्न भी कहते हैं। मधुआ कीट के प्रबंधन हेतु, यानी दोनों हरा मधुआ एवं भूरा मधुआ दोनों के प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप लगाना चाहिए, और रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में, या कोई भी नीम आधारित दवा का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पत्र लपेटक कीट पिल्लू, इसके पीले हरे रंग के होते हैं, ये कीड़े पत्तियों के किनारे को रेशम जैसे धागों से लपेट कर अंदर ही खाते रहते हैं, और जब इनकी अधिक प्रकोप होता है तो पौधे ठूंठ और बीमार जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि सभी पौधों को ये खा जाते हैं। इस कीट से प्रभावित खेत के फसल की ऊपरी पत्तियों की कटाई कर देना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव फसलों पर कम हो जाता है, क्योंकि ऊपरी छोर पर ही ये ज़्यादा खाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट कीटनाशी का 1.5 ml प्रति लीटर या प्रोफेनोफॉस 50 cc का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी, तो मधुआ कीट के बारे में आपने जाना, साथ ही पत्र लपेटक कीट के बारे में, और अंत में कुछ और कीट बाकी हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं मैम, जैसे कि गंदी बग के बारे में आपने कहा था, सैनिक कीट के बारे में आपने कहा था, और ग्रास हॉपर, ये भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं धान की फसल को। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम अपने किसान भाई को ये बताना चाहते हैं कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, और साथ ही हानि और प्रबंधन के बारे में जानकारी।
1: जी, अभी तक तो जो भी कीट मैंने बताया, तना छेदक, केशवर, मधुआ कीट, पत्र लपेटक, ये सब ज़्यादातर पौधों के पत्तियों को खाते हैं, और अगला है गंधी कीट। गंधी कीट ये जो है, जब बाली लग जाती है तो दुग्धावस्था में ही ये बालियों से उसमें जो दूध बनते हैं उस दूध को चूसते हैं, जिससे दाने खकड़ी हो जाते हैं। और गंधी कीट जो हैं वो हरे एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं, और जहाँ पर ये दानों में रस चूसते हैं वहाँ पर भूरा दाग दिखाई पड़ता है। इसे हम वो पहचानते हैं कि गंधी कीट का आक्रमण हो गया है, और इससे जो है विशेष प्रकार का दुर्गंध तो निकलता ही है, वो भी ये इसका यह पहचान है। और इस कीट से प्रबंधन हेतु नीम बीज चूर्ण का जो है उसको छिड़काव करना चाहिए, जिससे गंधी कीट या का उसका जो है प्रबंधन हो जाता है। और बहुत प्रकोप की बहुत अधिकता में इमिडाक्लोपीड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करना चाहिए
0: जी।
1: और सैनिक कीट है, सैनिक कीट भी जब पौधे बड़े हो जाते हैं, बाली लग जाते हैं, तब ये जो बालियों पे ऊपर चढ़कर इनको काट गिराते हैं। और सैनिक कीट जो है इनको आर्मी वर्म भी कहा जाता है। इस कीट के जो पिल्लू होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं, और वयस्क पतंगा जो होता है मौथ, जिसे मौथ भी कहते हैं, वो भूरे रंग के होते हैं। और ये जो कीट होते हैं अंधेरा होने पर पौधों पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं, और दिन में ये पौधों की जड़ों में या जमीन के जो दरार होते हैं उसमें छिपे रहते हैं। और इसके नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का जो दानेदार कीटनाशी है उसका 2 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ग्रास हॉपर जो है वो हरे पीले रंग के होते हैं, 40 से 50 ml लंबा होता है। इसका प्रकोप अगस्त से अक्टूबर महीने में देखा जाता है। ये पत्तियों को किनारे से काट कर खाते हैं। ग्रास हॉपर के प्रबंधन हेतु खेत में पानी भर देने से इसके अंडे खत्म हो जाते हैं। मेड़ की खुदाई कर देने से भी इसके अंडे जो है नष्ट हो जाते हैं। और जो नीम बीज चूर्ण है उसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। टीन पर कोल्टार लगाकर भी खेतों में चलने से ग्रास होपर टीन पर वो जो कोल्टार लगा रहता है उस पर आकर सड़ जाते हैं, जिससे वो कुछ तो मतलब सटकर मर भी जाते हैं, और जिससे कि इनकी संख्या भी कम हो जाती है
0: जी। तो यहाँ पर आपने जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की कि आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं, साथ ही आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ध्यान रखिए कि आप फसलों से अधिक मुनाफा चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी फसलों की देखभाल करें, और उस समय जो कीट लग रहे हैं आप उन्हें पहचानें और उसका तुरंत से तुरंत प्रबंधन करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
8: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पश्चिमी हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जो महिलाएं होती है ना, ये जो लेडीज होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेडीज फर्स्ट कहने की नौबत क्यों आई और क्या अभी भी समाज में ये लोग मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट यानी कि स्त्रियों को पहले मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, आज भी हमारा समाज उसी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि समाज ने अपने सोच के ऊपर एक बदले हुए रवैया का परत चढ़ा लिया है, लेकिन आज भी उसके अंदर सोच वही है। अगर ये सच नहीं है तो ये भी सच नहीं होता कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर लेडीज फर्स्ट जैसी बातों को हमने स्वीकार कर लिया होता, स्त्रियों को हमने बराबर का सम्मान दिया होता, ज्यादा की बात नहीं हो रही, बराबर की, बराबरी का सम्मान दिया होता, बराबरी का मौका दिया होता, घरेलू हिंसा की वजह से, दहेज की वजह से आज भी बहुत सारी स्त्रियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आए दिन हम नए नए केस सुनते हैं, पढ़े लिखे घरों में भी घरेलू हिंसा से तंग आकर स्त्रियां खुद को खत्म कर लेती है या फिर घरेलू हिंसा इस कदर बढ़ जाती है कि उस स्त्री की मौत हो जाती है। तो इन सारी बातों को सोचकर जरा भी लगता है कि आज भी हमारा समाज लेडीज फर्स्ट को समझ पाया है? चलो लेडीज फर्स्ट ना सही, पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिल पाया है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है तो आप जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। हाँ, वक्त बदल रहा है, बहुत जगहों पर स्त्रियां अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है और कुछ जगहों पर तो वो काफी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। लोगों को ये समझना बाकी है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2012 से 2022 के बीच करीब घरेलू हिंसा के 13 लाख मामले सामने आए और लगातार ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो वो महिलाएं हैं जो थाने तक पहुंची। बहुत सारी महिलाएं तो थाने तक पहुंचती ही नहीं है, उन्हें लगता है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। अगर घर पर उनके साथ घरेलू हिंसा होती भी है तो वो सह लेती हैं घर की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन घर की इज्जत बचाते बचाते वो अपना स्वाभिमान खो बैठती हैं और इन महिलाओं के लिए उनका घर भी सुरक्षित नहीं रहता। उन्हें पता नहीं होता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की दीवारें आज भी उतनी मजबूत है, समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का दावा करता हो। दोस्तों घरेलू हिंसा के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आज भी लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से कम हैं, ज्यादा ना हो पर बराबर की तो हैं, बराबर का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, दहेज प्रथा। दहेज के बारे में कितने कानून हैं, दहेज से जुड़े हुए बच्चे स्कूल में कितना पढ़ते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर दहेज लेते हैं। और विडंबना ये है कि लड़की वाले खुशी खुशी दहेज देते हैं। लड़की के जन्म के साथ ही उनके दिमाग में जो पहली सोच होती है कि इसके लिए मुझे इतने दहेज इकट्ठा करने होंगे। हमने दहेज जैसी समस्या को कितना आम बना दिया है कि ये हमें अब समस्या लगती ही नहीं है। कोई समस्या तभी खत्म होगी जब उसे हम समस्या समझेंगे। दहेज की वजह से बहुत सारी औरतें आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है और कई औरतें तो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। इसके बाद आता है शराब या नशा। शराब या नशे की वजह से भी घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि नशे की हालत में फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर वो हिंसक व्यवहार करता है। और जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष नशे की हालत में ही घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं और कई बार पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का कारण बनती है। महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो फिर उनके साथ कुछ भी हो वो सहती रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या। और कई बार जागरूकता की भी कमी होती है। हम अपने आसपास जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे माहौल को देखते हैं, हमें लगता है कि वही सच है। और जब आसपास घरेलू हिंसा आम हो तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि यही जीने का तरीका है, वो इसे मानकर अपने जीवन को जीने लगती है। और अगर कुछ महिलाओं को ये पता है कि ये गलत है, जो हो रहा है उनके साथ वो सही नहीं है तो भी वो चुप रह जाती हैं, क्योंकि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की इज्जत को बचाना है। ये तो कारण हो गए कि किन किन वजहों से घरेलू हिंसा होते हैं, और घरेलू हिंसा से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो जागरूकता, महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उसी चीज में ढल जाएं, उन्हें आवाज उठाना चाहिए। और ये बात कि अगर हम बाहर जाएंगे तो घर की इज्जत उछलेगी, कौन से घर की इज्जत, घर तो वो होता है ना जहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं, घर तो वो होता है ना जहाँ आप थके मांदे आते हैं और कोई आपको पुचकारने वाला मिलता है, कोई आपका ख्याल रखने वाला मिलता है। लेकिन ये कैसा घर है कि जहाँ हर रोज हर पल आप आतंक में जीते हैं कि न जाने अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाए, न जाने कौन आपको क्या बोल दे, न जाने कौन आप पर हाथ उठा दे। उस घर को घर कहना उचित है क्या? यकीन मानिए समाज आपका साथ देगा जब आप अपने लिए आवाज उठाएंगी। यकीन मानिए आपके या आपके घर की इज्जत खराब नहीं होगी अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि आपके आसपास की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। ना जाने कितनी सारी लड़कियां, अगर आपकी कोई बेटी है या फिर आपकी बहन है तो उसे भी ये समझ आएगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास की लड़कियों को भी चुप रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा शिक्षा बहुत जरूरी है। जब लड़कियां पढ़ती हैं और उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं तो फिर वो मजबूर नहीं होती है घरेलू हिंसा को सहने के लिए। इसके अलावा परिवार और समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज के तौर पर भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई स्थिति देखे, ऐसी किसी औरत को देखे तो उसके हक के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आए हम, तभी एक बेहतर समाज बनेगा ना। कल को आपके साथ ये हो सकता है, कल के आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप महिला हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 181, 112। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक नंबर है 9771468006, यानी कि 9771468006। इस पर आप फोन कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 181, 112 इन नंबरों पर भी आप फोन कर सकते हैं। आप एनजीओ से मदद ले सकते हैं, आप महिला संगठन से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीज़ें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप किसी अपने परिचित के साथ, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या, कितना बुरा, कितना बड़ा हो सकता है आप नहीं जानती हैं। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा, समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा और यह समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज्यादा करना पड़ता है, और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा
2: अलावा भी बहुत सारे कानून हैं,
1: लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़ें, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़ें कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगे तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगी तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें, और वो जो पिता हैं, भाई हैं, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहें, खुश रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। Ladies first.
3: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
4: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हमारा यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और जी हां, हम लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी उपयोगी बातें। तो आज भी एक ऐसे ही विषय को हम अपने उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं और हमारा विषय है मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का पहचान एवं इनका नियंत्रण। और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह और सर वैज्ञानिक हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉल आर्मी वर्म है ये मक्के में किस सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अमूमन आप किसान भाइयों, जो हम लोग बिहार में देखते हैं कि दो सीजन में मक्के लोग लगाते हैं, एक अभी जो लगाए होंगे खरीफ सीजन में जो इनका अभी चल रहा है, और दूसरा जो है कि रबी सीजन में लगाते हैं। तो उनका जो है वितरण अलग अलग ज़िले में लोग अलग अलग जिनको जैसा लगता है वैसे लगाते हैं। तो ये जो फॉल आर्मी वर्म है ये आप किसान भाइयों में इसको पहचानने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो कीट है एक तना छेदक होता है, तो तना छेदक के जैसा ही ये मिलता जुलता है। लेकिन दोनों में तुलना करना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए कि अगर तना छेदक आपका लगा हुआ है तो उसके लिए अलग उसका नियंत्रण होता है, और फॉल आर्मी वर्म अगर लगा हुआ है तो उसके लिए आपको अलग से उसका नियंत्रण के उपाय करने होंगे, कीटनाशक देने होंगे। तो सबसे पहले दोनों को आपको समझना है कि कैसे इनका कैसे नियंत्रण होता है या कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब तना छेदक मुख्यतः जब होता है तो आप देखेंगे कि जब आपके मक्के के जो पौधे हैं जब घुटने या उसके नीचे भी जब रहता है तो आप देखेंगे कि जो मक्का के जो पत्तियां हैं उसमें लाइन से तीन आपको गोला गोला कटे हुए का निशान दिखेंगे। तो ये तना छेदक के चलते हो सकता है। और आप जब देखेंगे कि जो उनका जो बढ़वार होने वाला जो पोजीशन होता है या जिसको हम लोग मक्के का कंठ कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हो सकता है कि कुछ जो इसके जो शिशु होते हैं वो तना छेदक के वो उसमें मिलेंगे आपको। तो ये है तना छेदक का। और ये जो तना छेदक है मतलब आपके फसल को थोड़ा धीमी रफ्तार से क्षतिग्रस्त करते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर फॉल आर्मी वर्म से अगर आपके पौधे अगर आक्रांत हो जाते हैं तो ये आपके पौधे को बड़ी तेज़ी से क्षतिग्रस्त करते हैं। और साथ ही में ये जब आपके मक्के का जो कंठ होता है ये भी उसी में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये अपना स्क्रीटा या कहे कि उत्सर्जन जो इनका छोटा छोटा जो जैसे कि केचुआ का जो जो बिष्टा होता है मल होता है उसी टाइप से इसके छोटे छोटे आपके उसके कंठ में दिखाई देंगे कि पड़ा हुआ है, जो काले कलर का मुख्यतः होता है। साथ ही में ये फॉल आर्मी वर्म जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। अब मुख्यतः जैसे कि दो सीजन में हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग मक्का लगाते हैं, तो अमूमन देखा गया क्या कि ये जो खरीफ सीजन होता है खरीफ सीजन में इसका प्रकोप रबी के तुलना में जो ठंडे सीजन में हम लोग जो करते हैं उसके तुलना में इसमें इसके समस्या ज़्यादा आती है। तो इसके आने के कारण बहुत सारे कारण हैं, उसमें मुख्य कारण ये है कि इस मौसम में वर्षा होती रहती है और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, जो इस कीट के बढ़वार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो

0: यही कारण है कि इसमें ये ज़्यादा होता है। अब है क्या कि कुछ और कारण हैं कि उसको कैसे आप पहचानिएगा, कैसे, मतलब जो कीट है तो तना छेदक है या फॉलर मीवर्म का कीट है उसको आप कैसे पहचानिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको सही से पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसका समुचित उपचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का आक्रामकता भी हमने अभी तुरंत बताया है आपको कि अलग अलग है। एक थोड़ा धीमी रफ्तार से आपके पौधे को क्षतिग्रस्त करता है, दूसरा जल्दी, जिसमें आर्मी लगा हुआ है। आर्मी का काम आप लोग सब लोग को पता है कि आर्मी अपने काम बहुत तेज़ी रफ्तार से करता है, इसीलिए इसमें आर्मी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इसको पहचाने कैसे, तो हम आपको फॉल आर्मी बॉम के बारे में बता रहे हैं। अभी तना छेदक को आप रहने दीजिए, उसको जो जितना हम बताए लगभग उसे तना छेदक आप पहचान जाएंगे। अब फॉल आर्मी बॉम को कैसे पहचानेंगे, तो ये जो कीट होता है तना छेदक की तरह दिखता है लेकिन ये उससे मोटा और लंबा होता है, साथ में ही इनके जो शरीर होता है उस पर काले धारियां आगे से पीछे तक, मतलब सर से उसके पूंछ तक काले धारियां रहती हैं। अब एक चीज, दो चीज़ और है जो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका जो जिधर जो मुंह होता है या अगला हिस्सा में, तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो इंग्लिश का उल्टा वाई इसके माथे पे निशान होता है, जैसे हर जैसे कि किसी किसी पशु है या जो भी है उस पर कुछ न कुछ निशान होता है, हम लोग पहचानते हैं, उसी तरह से इसमें जो उल्टा वाई का निशान होता है इसके आगे वाला पोर्शन जिधर सर बोलते हैं उस साइड में, और जब पीछे साइड में जब आप आएंगे तो पीछे साइड में इसके चार काले काले धब्बे होते हैं जो बड़ी आसानी से आप ऐसे ही आँख से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ इसके पहचानने का। अब दूसरी बात क्या है, ये जो पहचानने का है तो इसमें लगभग लगभग नहीं 6 इन स्टार होते हैं। अभी आप बताएंगे कि इन स्टार क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के जो बच्चे होते हैं तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद वो पहले सोया रहता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर खड़ा होने के बाद वो रफ्तार से चलने लगता है। तो जब तक वो, तो ये अलग अलग उनके फेज है हमारे जो मनुष्य हैं उनके बच्चे का, इसी तरह से इस कीट के भी 6 फेज है। तो 6 फेज में जो उनका जो फेज 1 होगा या 2 होगा, तो वो अंडा के बाद, जस्ट अंडा के बाद जो निकलने वाला वो उसका अवस्था होता है, फेज इंग्लिश में बोले अवस्था होता है। तो उस कंडीशन में उस कीट का साइज छोटा होगा, और साइज जब छोटा होगा तो उसी रफ्तार में वो आपके फसल को भी उस समय में थोड़ा धीमा धीमा रफ्तार करेंगे, और उसको कंट्रोल भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब यही कीट जब है खाते खाते जब कुछ वो 3-4 इन स्टार वाले फेज में जब चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा हो जाता है, और उस कंडीशन में वो जो सिंपल आपका जो कीटनाशी है उससे हो सकता है कि उसका नियंत्रण ना हो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया। अब ये क्षतिग्रस्त कैसे करता है, ये किस किस भाग को, मक्का के किस किस भाग को क्षतिग्रस्त करता है, ये कब कब आता है, तो ये इसके आने का टाइमिंग जो है ये कभी भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः जो है जब हमारा मक्का जब मुख्यतः जब 4-5 पत्तियों का हो या कह लें कि एक महीने के जब आसपास होता है, उसके आगे जब बढ़ना होता है तो उस समय में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब ये करेगा क्या कि आपकी जो पत्तियां हैं, जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं उसी के ऊपर ये आक्रमण करता है, उसको ये पूरी तरह से खा जाता है, और खाने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि आपका जो पत्तियां हैं उसको ये जाली नुमा बना देंगे। जाली नुमा कहने का मतलब ये आर पार उसको कट नहीं करते, आर पार उसको खा करके ख़त्म नहीं करते, बल्कि नीचे से वो खुरच लेते हैं, उनका जो हरा जो पत्तियां का जो हरा भाग होता है उसको खुरच के उसको खा जाते हैं, और पत्ती जो है वो लगेगा कि पेपर की तरह, जैसे कि जो अखबार या जो कोई कागज़ होता है उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है, उस टाइप से आपकी पत्तियाँ दिखेंगी। जो तना छेदक में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है कि एक तो आपके पत्तियां को पूरा जो कंठ वाला है जो बढ़ने वाले उसको तो खा ही गया, और जो दूसरी जो पत्तियां बची हुई हैं उसको आर पर दिख रहा है बहुत सारे पत्तियों में, तो ये हो सकता है कि आपका ये फॉल आर्मी बम के चलते ऐसा हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है कि ये जो कंठ में है ये कंठ में छुपा हुआ रहता है, तो जब कंठ की आप जब देखेंगे उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे ये इनके कीट आपको दिखाई देंगे आसानी से। साथ ही साथ वहाँ उसके बहुत सारे मल मूत्र भी उसमें रखे रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका साइज भी जो पिलेट साइज बोलते हैं तो वो मतलब वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब अगर ये ज़्यादा आपको इसका प्रकोप हो गए तो ये 3 से 4 दिन में आपके जो मक्के की फसल है उसको पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका जो फॉल आर्मी बम है ये जब अगर मक्का अगर क्या पौधा अगर नहीं रहे, जब मक्का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तब ये कहाँ जाता है। तो ये जो फॉल आर्मी बम है ये मुख्यतः जितने भी जो ग्रामनी फैमिली के जो हमारे फसल है तो उन पे भी, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये आपको ज्वार बाजरा ये सब पे भी ये जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है। अगर इनको इधर से अगर मक्का ख़त्म हो गया, मक्का कोई काट लिए तो आसपास में अगर ये लगी हुई हैं तो उस पे भी जा सकता है। अब तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि मक्का अगर नहीं होगा तो ये नहीं रहेगा, इसके कई अल्टरनेट होस्ट है, इस अल्टरनेट होस्ट पे ये चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इसके जो वयस्क हैं वो एक रात में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं, लगभग 80 से 100 किलोमीटर भी ये उड़ सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है इनके जो वयस्क हैं उनका। इनका जो जो क्षति करने वाला है ये इनके वयस्क क्षति करते हैं जो चलते हैं, जो चल के सिकुड़ते हुए चलते हैं उस ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई, ये काफ़ी आपको समझने के लिए हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको अगर किसान भाई अलग अलग टाइमिंग में अगर मक्का को लगाते हैं, कोई मक्का आज लगाए कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, अगर और उस क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि सारे किसान भाई मिल करके एक साथ अपने मक्का की फसल को लगाएं, ताकि ये होता क्या है कि अलग अलग अगर अवस्था में आपके पौधे रहते हैं तो उसको ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, उसके ओर ये एक को क्षतिग्रस्त करते हुए फिर जो पौधा उस अवस्था में आता है तो उधर वो शिफ्ट करके उधर वो आ करके उसको ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अगर जिधर इनकी समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे किसान भाइयों को चाहिए कि सब किसान भाई मिल करके एक ही टाइम में अपना जो है इसके बीज को लगाइए, ताकि पौधा आप सब किसान भाइयों का पौधा एक टाइप का रहे और इनका प्रकोप कम से कम हो। साथ ही में अगर जहाँ भी ये होगा तो अगर एक किसान भाई के फील्ड में अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी ये मूव करें। और इसका जो है कि अगर 100 में से 5 पौधे में अगर आपको दिखता है कि ऐसा हो गया है, इसका फॉल आर्मी वर्म की समस्या है, तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे कम है तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों ये मैं बोलूँगा कि जब भी अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको अपने खेत को फ्रिक्वेंट, मतलब है कि हर दिन लगभग आपके फील्ड में खेत में जाना चाहिए कि इनका क्या स्थिति है, कहीं कोई मतलब इसका कैसे फैलाव है, ज़्यादा तो फैल नहीं रहा है, तो वैसे आपको इसको रोकथाम करना है। अब क्या है कि इसको कैसे इसका उपचार कैसे करें, तो उपचार तो हम कुछ आपको बताए हैं कि अलग अलग टाइम ना दे करके एक साथ रोपाई करें। दूसरी बात है कि हमको इसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लें सबसे पहले, जो लोकल बीज का चयन ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लें जिसमें किसी भी कीट का प्रकोप कम से कम होता है। खाद समुचित मात्रा में देना है। बहुत किसान भाइयों में ये रहता है कि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमारा जो है बढ़वार ज़्यादा होगा, हमारी फसल ज़्यादा होगा, लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया देने से का, उससे अगर हम जब ज़्यादा देते हैं यूरिया तो क्या होता है कि ये फसल में तेज़ी से बढ़वार होता है, उसके जो फिजिकल कंडीशन है मतलब जो पौधे की पत्तियां या पौधे की लंबाई बढ़ने की जो होता है वो तेज़ी से होता है, और उसका जो टिशू है, सेल है, वो मुलायम हो जाता है, और ये ऐसा होने के चलते जो फॉल आर्मी वर्म या कोई भी कीट उसको आसानी से उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ अगर कभी तेज हवा आई तो उसमें आपका गिरने की भी समस्या रहती है, इसीलिए यूरिया की मात्रा उतना ही देना है जितना अनुशंसित है। साथ में फर्टिलाइज़र में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों देने की होती है संतुलित मात्रा, उसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं करें। अगर आप पोटेशियम की कमी करते हैं, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो इसके चलते भी आप में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। पोटेशियम ऐसा उर्वरक है जो आपको कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए पोटेशियम आपको देना ही है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और जो हम लोग जो उसके बोलते हैं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यूरिया एक ही बार में दे देना है, उसको बांट बांट करके फसलों के अलग अलग फेज में देना है, तो वो आपको करना है। साथ में जब अगर हम केमिकल पे जब आ जाते हैं कि उसको रासायनिक विधि से कैसे करना है, ये सब तो आपको बचाव के लिए करना है, लाइन आपको मेंटेन करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है वो मेंटेन करना है, और इन सारे चीज़ों को करते हुए भी अगर जब फॉल आर्मी वर्म का जब आपका प्रकोप होता है, तो एक सिंपल है, अगर पहला और दूसरा स्टेज में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5SG इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो झिल्ली की तरह होता है, झिल्लीनुमा होता है, इसको पहले आपको थोड़ा सा पानी में घुलाना है, और जब घुल जाए तब इसको फिर से आप अपने जो स्प्रेयर है उसमें इसको डाल करके करना है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इसको 10 लीटर पानी में मात्र 4 ग्राम आपको ये झिल्ली वाला दवा लगता है, मतलब पहले उसको पानी में घुलाना है, मतलब आप हिसाब से कर लीजिए, अगर आपका पीठ वाला अगर 15 लीटर का है स्प्रेयर, तो उसके लिए आपको कि पहले एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी पात्र में 6 ग्राम आपको कीटनाशी डालना है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको जो है आपको फिर आपको स्प्रेयर में डाल करके उसको शाम के समय में छिड़काव करना है, जनरली 4 बजे के आसपास करना है, और उसको मेर पे भी करिए। ये है। दूसरी बात है कि जब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब चला जाता है, तो दो कीटनाशी और है जो आपको थोड़ा ये कॉस्टली है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। एक है उसमें थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोहोलिन 9.6%, इसकी जो है 0.25 ग्राम, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसकी 1 ml दवाई जो है 4 लीटर पानी में आपको डालना है, मतलब कहे कि अगर 15 लीटर वाला स्प्रेयर है तो उसमें 4 ml दवाई थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोहोलिन 9.5% का देना है। और जब भी आप कीटनाशी जब देते हैं तो उसमें जो है कोई जो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैम्पू या वेटिंग कोई भी चीज़ उसको आपको देना है, ताकि वो आपके सरफेस टेंशन को बढ़ाता है, आपके कीटनाशी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और दूसरा जो एक और इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है स्पाइनोटोरम, 11.7%, इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ स्टिकर मिला करके इसको आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव करने से आपका जो है ये फॉल आर्मी वर्म की जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को कर करके आप अपने जो मक्के की जो फसल है उसमें कीट का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं अभी आपने फॉल आर्मी वर्म के बारे में जाना, और ये कीट की पहचान हम कैसे करेंगे इस कीट की, और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है, और आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नमस्कार। उन्नत कृषि। बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, जब बारिश का मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कई मायनों में हमें विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होती है, और खास तौर से हमारे पशुओं के लिए जो बेजुबान होते हैं। और पशुओं की देखभाल इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में किस तरीके से करनी चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर MZ हुदासर। सर आप हैं KVK सबौर से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों, अभी जो बरसात का मौसम है ये काफ़ी सेंसिटिव मौसम होता है पशुओं के लिए। खास करके जो सबसे पहला हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि हमारे जो जहाँ पर हम पशु रखते हैं उसका छत कहीं से लीकेज नहीं हो। अगर कहीं से लीकेज वगैरह है तो आप उसको ज़रूर हटा दें, उसको सही दुरुस्त करवा लें। दूसरी बात कि आप अपने इस मौसम में अपने पशुशाला को बिल्कुल ड्राई रखें, पानी जमा नहीं हो, ये नहीं तो फिर दिक्कत होता है। तीसरा जो हम लोगों को करना है कि उसमें वाटर लॉगिंग, आपके जहां पर भी आप पशु रख रहे हैं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो जो उसका बेडिंग जो यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ हस्क वगैरह यूज़ करते हैं आप, उसको आप ज़रूर सूखा बेड मटेरियल उसमें यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात कि आप एक जगह पर बहुत ज़्यादा पशुओं को क्राउडिंग नहीं करें, उसका जो एक प्रॉपर स्पेस है उस स्पेस में अपने पशुओं को रखें।
6: सर ये तो बात हो गई रहने का प्रबंधन कैसे करना चाहिए पशुओं के लिए, अगर हम खाने के प्रबंधन के बारे में बात करें तो इस दौरान, इस मौसम के दौरान पशुओं का खान पान कैसा होना चाहिए?
7: देखिए किसान भाइयों, इस मौसम में आपको पशुओं की बहुत देखभाल करनी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी के मौसम में खास करके बाढ़ भी का सीज़न आ जाता है, पानी जगह जगह जमा हो जाता है, ग्रीन फोडर्स नहीं होते हैं, तो आपको ये आदत बना लेनी होगी कि आप इस समय हे और साइलेज बनाने की विधि जरूर सीख लें पहले, और हे और साइलेज को जो है आप बना के स्टोर करके रखें, जिससे कि ग्रीन फोडर्स की कमी आपको ना हो। दूसरा, आप मिनरल मिक्सचर आप जरूर अपने पशुओं को कम से कम 50 ग्राम प्रत्येक दिन के हिसाब से दें। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि खाना अच्छा होना चाहिए, चौथा जो आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप इस समय पशुओं को नमक की मात्रा हर दिन कोशिश करें कुछ ना कुछ नमक दें। आप ये बात को सुनिश्चित करें कि जो आपने पूर्व से जो ग्रेन्स जमा की हैं, जैसे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो मक्का गेहूं वगैरह जमा करके रखते हैं, तो अगर उसमें फंगस लगा हुआ है तो उस फंगस लगे अनाज का उपयोग अपने पशुओं में नहीं करें। इन सारी बातों में को आप अगर ध्यान देंगे तो आप बरसात के दुष्प्रभाव से आप बहुत हद तक बच सकते हैं।
6: सर, बरसात के मौसम में कुछ खास तरह की बीमारियों से भी पशुओं को परेशानी होती है, तो वो कौन कौन सी बीमारी है जिनसे पशुओं को बचाना चाहिए?
7: देखिए, अभी के मौसम में खास करके खुरा एवं मुंह पका रोग, जिसको हम FMD कहते हैं, ये बीमारियों का प्रचलन अधिक होता है। तो ये जरूरी है कि किसान बरसाती के मौसम के लिए नहीं, इसका अक्रेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अपने पशुओं को साल में 2 बार टीका FMD वैक्सीन जो है हर 6 महीने पर 2 बार दे दें। दूसरा, जो परजीवी जनित बीमारियां हैं, चमोकन है, ठहल है, किलनी है, जू हैं, ये सब जो परजीवी रोग हैं ये आपके पशुओं के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, दूध की क्षमता को कम करते हैं, बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। इससे बचाव के लिए आप निश्चित रूप से बरसात से पहले आप अपने पशुओं को या तो आइवरमिक्टीन या फिर फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग जरूर करा दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय थनैल जो गंदगी होती है, तो थनैला बीमारी आपके पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उससे बचाव के लिए आप कोशिश करें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो भी बचाव के तरीके हैं थनैल के, जैसे कि आप जब मिल्किंग करते हैं तो आप अपने हाथ को कोई भी साबुन से आप साफ करके दूध निकालें। दूध निकालने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपकी पशु बैठे नहीं, उसको उस वक्त खाना लगा दें, और पोटासियम परमैंगनेट, जो लाल पोटास के नाम से हमारे किसान भाइयों जानते हैं, दूध दूने के बाद एक कटोरे में एक चुटकी पोटासियम परमैंगनेट डाल के चारों जो हमारा टीट कैनाल होता है उसको, जो चारों जो थन का बांट होता है उसको आप डिप कर दें। अगर आप इतनी सावधानी बरतते हैं तो जो बहुत जो थनैल से आप परेशान रहते हैं इससे आपको बचाव बहुत हद तक हो जाएगा। इस और दूसरा जो अभी जो मौसम आता है, देखिएगा कि रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, दिन में थोड़ी गर्म होगी, उमस होगी, तो आपको जो एक गलघोंटू बीमारी होती है HS, जिसको हम लोग हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, वो बीमारी खास करके भैंसों में देखने को ज़्यादा मिलती है, तो आप ये कोशिश करें। और ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ी कहते हैं, तो रक्षा ट्रायोवैक नाम की वैक्सीन आती है जो FMD HS BQ तीनों के अगेंस्ट काम करती है, तो आप वैक्सीनेशन बिल्कुल करें। और अभी बरसात शुरू होने से पहले आप जिन लोगों ने भी कृमिनाशक दवा अपने पशुओं को नहीं दी हो, तो तुरंत एक कृमिनाशक दवा, जो खास करके जो बाढ़ग्रसित क्षेत्र का इलाका है जहाँ जल जमाव होता है, उसमें आप बरसात शुरू होने से पहले एक बार कृमिनाशक दवा दे दें, और दूसरा बरसात खत्म हो जाए तब एक बार आप कृमिनाशक दवा दे दें। ये दवा आप अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशु को बरसात के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं।
6: सर, इस दौरान परजीवियों से भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है पशुओं को, तो परजीवी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
7: देखिए किसान भाई जब एक गलती करते हैं, जब इनके पशुओं के शरीर पर परजीवी होता है, तो मैंने अभी बताया कि एक कृमिनाशक दवा वो जरूर दे दें। आपके पास जितनी पशु है सबको, या फिर अमितराज आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप आइवरमेक्टिन इस्तेमाल कर रहे हो, आपके यहाँ जो भी पशु है सारे पशुओं पर एक साथ इस्तेमाल करें, और इस अमितराज का घोल या फिर साइपरमेथ्रीन का घोल आप अपने सारे जो यहाँ पर पशुशाला है वहाँ रखते हैं वहाँ पर भी छिड़काव कर दें। तो अगर ये कर लेते हैं तो आपकी पशुएं जो बाह परजीवी है इससे सुरक्षित हो जाएगी। और आपको ज्ञात नहीं है या है ये बता दें कि ये जो बाह परजीवी है वो आपके पशुओं में जो बहुत ज़्यादा बीमारी बड़ी होती है, जैसे खूनी पेशाब है, सर्रा है, थिलेरियोसिस है, और ये सब काफ़ी पशुओं की बड़ी बीमारियां हैं। ये सब इन्हीं जो चमोकन, अठैल, किलनी, टिक्स, माइट, लाइस वगैरह जो परजीवी हैं, वह परजीवी इन्हीं के द्वारा एक जो संक्रमित पशु है उसे स्वस्थ पशु में फैलाया जाता है। तो इससे अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपको इन जो जानलेवा बीमारियाँ हैं इससे भी आपको निजात मिलेगी, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें।
6: जी सर। सर, नवजात पशुओं के लिए हर मौसम में जरूरी होता है कि उनके लिए हम कुछ विशेष प्रबंधन करें, उनकी विशेष देखभाल करें। बरसात के मौसम में नवजात पशुओं की क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए?
7: देखिए, बरसात के मौसम में खास करके जो नवजात बछड़े होते हैं उसकी विशेष देखभाल होती है। अगर आप जिस वक्त बच्चे जन्मते हैं उस समय आप उसको बिल्कुल जल्दी से सूखा का जितना कपड़ा से रख के उसको पोंछ दें, उसके जो आप नाभि अगर सटी हुई रहती है माँ से तो उसको अच्छे सीजर से काट के टिंचर बेटाडीन से आप उसको साफ करके उसको बांध दें। उसके अलावा कोशिश करें कि वो मिट्टी में नहीं संपर्क करें उसका बच्चा ज़्यादातर, क्योंकि इससे कभी कभी टेटेनस होने का खतरा बढ़ जाता है। ये करें और कम से कम एक घंटे के बाद, जन्म होने के एक से दो घंटे के बाद आप अपनी जो गाय हैं बछड़े हों या बाछी हो उसको माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम बहुत रिच होता है उसको जरूर दें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खीस खीस उसको कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में, उसको नहीं पिलाते हैं जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहता है जो बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप बच्चे के वजन का दसवां भाग एक दिन में जरूर पिलाएं। ये नहीं किसान भाई गलती कर देते हैं कि लगातार पिला देते हैं जिससे पेट झरने लगता है, इसी के डर से किसान भाई नहीं पिलाते हैं। तो बच्चे के वजन का दसवां भाग कोलेस्ट्रम आप उसको जरूर पिलाएं। अगर मौसम में तापमान 25 डिग्री से कम है तो आप वो हर संभव कोशिश करें कि उसके घर के अंदर काफ़ी, खास करके लगातार बरसात हो रही हो तो निमोनिया का प्रकोप विध बच्चों जिन नवजात बछड़ों में देखने को मिल सकता है उससे बचाव के लिए कम से कम उसके रूम का 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रखें। अगर ये सारी बातें आप अगर बरसात के मौसम में आप अपनाते हैं या फॉलो करते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये कोशिश करें कि जहाँ जल जमाव का क्षेत्र है अभी के मौसम में तो अपनी पशुओं को उधर अभी चराने से, ग्रेजिंग से भी बचें। आप अगर उससे उसमें क्या होता है, सारे वेक्टर्स जो कीड़े मकोड़े के वेक्टर्स होते हैं, स्नेल्स के द्वारा फैलाव होते हैं, वो फिर कृमि का जो अंडा है वो आपके पशु के पेट में फिर पुनः चला जाता है और फिर वो संक्रमण करता है और आपके पशु का प्रोडक्शन कम होता है। तो संतुलित राशन, घर का प्रबंधन, टीकाकरण, बरसात से पहले जो भी टीके की आवश्यकता है FMDHS BQ इसका टीकाकरण नियमित रूप से अगर आप करवा लेते हैं, और खाने की भोजन की व्यवस्था, तो इस समय जो घास की बड़ी प्रॉब्लम होती है तो साइलेज और हे बनाना, जिस समय अभी बहुत ज़्यादा खेतों में बहुत ज़्यादा सूडान लगा हुआ होगा, मल्टी कट सोरगम लगा हुआ होगा, मक्का लगा हुआ होगा, इसका इसको चॉपिंग करके साइलेज बैग में अगर आप एकत्रित कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
6: जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो बातें बताई और विस्तार से बताई हमारे किसान भाई बहनों के लिए और ख़ास तौर से हमारे पशुपालक भाई बहनों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी साबित होगा। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का और ख़ास तौर से अपने पशुओं का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
8: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
9: जी
8: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
9: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
8: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बांकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का ऊपरी निवेशन करें, यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंह पका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजी जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सब के जीवन की कहानी है।
2: जी
3: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपा नुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
2: जी
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती, कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
3: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
2: जी
3: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
2: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
3: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी।
2: जी
3: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
2: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
3: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
2: जी।
3: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
2: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
3: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
2: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
3: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
2: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
3: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
2: जी।
3: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
2: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
3: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
2: जी।
3: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
2: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
3: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
3: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का, अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
1: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
2: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
3: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी।
4: इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
0: अरे आ गए, देखो।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
3: हाँ, ये बात तो है,
4: पानी की समस्या तो है,
5: हम तो परेशान हो गए हैं।
2: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
6: जल चक्र?
2: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
2: चलो झुमकी।
0: ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
1: रिम झिम रिम झिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
2: बताते हैं, सुनिए।
1: पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है,

0: रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
1: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
2: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
3: जी,
2: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
3: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
2: ये कैसी अजीब बात है।
3: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
2: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
3: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
2: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
3: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
2: अच्छा,
3: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। जल्दी सुनाइए
2: बेटा,
3: जल्दी सुनाइए।
2: अरे सोचने तो दो,
3: जल्दी सोचिए
2: किसकी कहानी सुनाऊं। देखो
3: अरे जीवन काका।
2: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई।
4: बाबूजी, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
2: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
4: जी
2: यहाँ लेट जाओ
4: जी।
2: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु,
3: जी
2: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
3: जी अभी लाई।
2: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
4: जी
2: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
4: जी।
2: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
4: जी जी जी, जी।
2: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
3: जी जी नाना जी।
2: हाँ ला बेटा ला। जीवन
4: जी
2: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम।

0: एक बात कही तूने बेटा,
1: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था?
0: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
1: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
0: चलो।

0: यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
1: जी।
0: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
1: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
0: बेटे, एकदम अलग आकार था।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
1: जी।
0: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उड़ते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
1: अच्छा।
0: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
1: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
0: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
1: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
0: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
1: जी,
0: जिसे बुखार होता
1: जी,
0: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी,
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
1: जी।
0: समझ गई ना
1: जी।
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
1: जी।
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोल कर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हाँ?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जो सालों भर मिलता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा भी होता है। शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्हें केला पसंद नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं केले की वैज्ञानिक खेती के बारे में, किस प्रकार से केले की वैज्ञानिक खेती की जा सकती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि प्रकाश। मैम, आप हैं फल विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
7: तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में केला की कौन सी प्रमुख किस्में हैं जो लगाई जाती है?
8: बिहार में केले की काफ़ी सारी किस्में लगाई जाती हैं, इसमें से कुछ पारंपरिक किस्में भी हैं और कुछ उन्नत किस्में भी हैं जो लगाई जाती हैं। पारंपरिक किस्मों में चिनिया, मालभोग, अल्पान, कोठिया, ये सारी किस्में हैं। और इसमें से जो चिनिया, मालभोग और अल्पान हैं, ये जनरली हम पकाकर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कोठिया और गोरैया, ये जो है कोठिया, मुठिया और गोरैया, ये तीन जो हमारी किस्में हैं, ये सब्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, कच्चे खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ उन्नत किस्में हैं जो अभी किसान भाइयों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है G9 वैरायटी या फिर ग्रैंड, जिसे ग्रैंड नैने बोलते हैं और G9 के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार में खासकर की नौगछिया और भागलपुर से के आसपास के जिलों में ये G9 वैरायटी आजकल किसान ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो उपज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा जो लोकल वैरायटीज़ है, हमारी पारंपरिक वैरायटीज़ है, जैसे कि चिनिया, अल्पान और मालभोग, स्वाद की वजह से ये ज़्यादा लोकप्रिय हैं जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं उसके लिए। तो किसान भाई अपने दोनों तरह की किस्में लगाते हैं।
7: जी मैम, और अब बात करते हैं भूमि की तैयारी कैसे की जा सकती है और किस प्रकार की मिट्टी उचित होती है केला के फसल के लिए।
8: तो केला जो है वो केला की जो मिट्टी की ज़रूरतें हैं बहुत खास नहीं है केला को, लेकिन एक समतल की मिट्टी चाहिए जो कि दोमट होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए, और इस मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 तक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बस ध्यान रखने की बात यह है कि जो मिट्टी है उसमें पानी रुके ना, निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पर्याप्त नमी, लेकिन वो पर्याप्त नमी भी रहे, ऐसा ना हो कि ज़्यादा बलवी मिट्टी है जिसमें नमी ना रहे, या फिर ज़्यादा गीली मिट्टी हो जिसमें अधिक नमी रह जाए। मिट्टी सबसे अच्छी होगी अगर दोमट मिट्टी है और उपजाऊ है जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, ऐसी मिट्टी केले की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। जब किसान भाई केले के बगान लगाना चाहें तो उसके पहले उसमें अच्छा होगा कि अगर कोई हरी खाद की वाली फसलें जैसे सनई, ढेंचा या लोबिया लगाकर उसे मिट्टी में मिला दें, तो इससे मिट्टी की जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो अच्छा बढ़ जाएगा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद खेत की अच्छी तरह 3-4 बार जुताई कर लें, अप्रैल मई के महीने में उसे खेत को सूरज की धूप लगने दें ताकि जो भी कीटाणु हैं वो मर जाएं और जो मिट्टी है हमारी वो कीटाणु रहित हो जाएं। इसके बाद केले के पौधे लगाने के पहले 60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद लें जो कि 60 सेंटीमीटर, कम से कम 60 सेंटीमीटर गहरा हो। इन गड्ढों को खोदकर उसकी मिट्टी बाहर निकाल लें और फिर उसे 15-20 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उस गड्ढे को खुली धूप में छोड़ने से जो भी अंदर के जो भी कीड़े हैं, मकौड़े हैं या फिर किसी तरह के कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। इसके बाद जब केला का पौधा आप लगा रहे हों तो उस मिट्टी में आप 20 किलोग्राम कंपोस्ट, 1 किलोग्राम नीम की खली तथा 100 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट डाल दें। इसके अलावा 20 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाकर उस गड्ढे को आप भर दें और जो सकर्स लगाएं वो गड्ढे के बीचों बीच लगाएं।
9: मैम, अब आप हमें ये बताइए कि पौध प्रवर्धन क्या होता है, साथ ही पौधा लगाने का समय, उचित समय और रोपण की उचित दूरी क्या होनी चाहिए।
8: केले का पौध प्रवर्धन हम मेनली सकर्स के थ्रू करते हैं। सकर्स कहें तो जो आप केले के पौधे लगाते हैं उसके साइड से जो नए पौधे होते हैं उसे ही हम सकर्स कहते हैं। और ये सकर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सकर्स और दूसरे होते हैं स्वॉट सकर्स। तो जो हमारा केला को हम जब पौध प्रवर्धन की बात करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर स्वॉट सकर्स या तलवारनुमा सकर्स को इस्तेमाल, जिसे हम तलवारनुमा सकर्स बोलते हैं हिंदी में, उसे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो ये स्वॉट सकर्स होते हैं ये ज़्यादातर जो मदर प्लांट होती है उसके पास होते हैं, ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और इसमें जो फल लगते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और बात अब आती है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि वो स्वॉट सकर है या वाटर सकर है। तो आप देखेंगे कि जो केले के साइड से जो सकर्स निकलते हैं उसमें कुछ सकर्स होते हैं जिसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और कुछ होते हैं जिसकी पत्तियाँ नुकीली होती है, पतली होती है और नुकीली होती है। तो जो नुकीली पत्तियां वाले सकर्स होते हैं हमें वही सकर्स को लेना चाहिए पौध प्रवर्धन के लिए। इसके अलावा जब हमने सकर्स ले लिया है तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये सकर्स लाएं तो किसी ऐसे खेत से लाएं जहां पे पहले से कोई किसी तरह की बीमारी ना हो, जिस खेत में साफ सुथरा खेत हो और वहाँ जो केले लगे हुए हैं उसमें किसी भी तरह की बीमारी ना हो। अगर किसी तरह की बीमारी है तो वहाँ उस खेत से नए सकर्स लेने से किसान भाइयों को बचना चाहिए। अब इन सकर्स को लाते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि सकर्स आपके हेल्दी सकर्स हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा छोटे सकर्स आप ले आएं, कम से कम वो सकर्स 1.5 से 2 किलो के होने चाहिए। इसके अलावा जब आप सकर्स को आप लगाते हैं तो उसे गड्ढे में बहुत ज़्यादा अंदर भी ना डालें। अभी जब पौध प्रवर्धन की बात करते हैं तो सकर्स के अलावा हम टिश्यू कल्चर के पौधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बिहार सरकार के द्वारा G9 वैरायटी के जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पे किसानों को दिए जाते हैं। तो जो ये टिश्यू कल्चर के पौधे होते हैं वो पौधे अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर के पौधों से ही पौध प्रवर्धन करें, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उसमें किसी भी तरह की रोग व्याधि नहीं होती है और वो उसका जो उपज होता है ये देखा गया है कि नॉर्मल जब हम वाटर स्वॉट सकर्स या नॉर्मल खेत के सकर्स से जब हम ग्रो करते हैं और जब हम टिश्यू कल्चर के पौधे से ग्रो करते हैं तो देखा गया है कि जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे होते हैं उनका उपज ज़्यादा होता है। तो अगर आपके इलाके में टिश्यू कल्चर वाले पौधे मिल रहे हैं तो कृपया आप उसी को पहले लगाएं। फिर ये जो सकर्स हम लगाते हैं, ये केले को हम सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि वो जून जुलाई या अगस्त के महीने में लगाएं तो उसमें सिंचाई की प्रबंधन ज़्यादा अच्छे से हो सकती है क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है। तो इस वक्त किसान ज़्यादा अच्छे से वो पौधे लगने की जो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और सकर जल्दी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इन पौधों को जो लगाना है कितनी दूरी पे लगाना है, तो दूरी की बात करें तो अगर किसी बौनी किस्म को लगा रहे हैं तो आप 1.8 बाय 1.8 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, और अगर बहुत लंबी किस्में हैं जैसे मालभोग हैं, चिनिया हैं, ये जो लंबी किस्में हैं इनको अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर या 2.5 बाय 2.5 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं।
9: जी मैम, अब आप हमें ये बताइए कि सिंचाई के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए।
8: केले के पौधों को उनके पूरे जीवन चक्र में लगभग 900 से 1200 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत होती है, और यह पानी की ज़रूरत या तो बारिश से हो जाए या फिर आर्टिफिशियली इरिगेशन देके सिंचाई करके दी जाए, दोनों से दिए जा सकते हैं। और इसमें विकास के हर चरण में पानी की ज़रूरत होती है। ये केला सूखा ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में 3 से 4 दिन के अंतराल पे तथा ठंडी के मौसम पे हर 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि पैदावार ज़्यादा अच्छे हों। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन में एक और चीज़ की ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है कि जब हम सिंचाई करें तो या तो हम ड्रिप इरिगेशन लगा दें जिससे कि जितनी ज़रूरत है हर पौधे को उतना ही पानी दिया जाए, या अगर फ्लडिंग या चैनल इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वो पानी केले के पौधों के पास ज़्यादा दिन तक रुका ना रहना चाहिए। ये पौधों को अगर पानी रुका रह जाएगा तो पौधों के विकास में रुकावट कर सकता है। उसके बाद बात आती है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन केले में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केला पोटेशियम का एक हैवी फीडर है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम चाहिए। अगर बात करें तो एक केले के पौधे को उसके पूरे जीवन चक्र में 300 ग्राम नाइट्रोजन, 45 से 50 ग्राम फॉस्फोरस और 400 ग्राम पोटेशियम की ज़रूरत होती है। इसमें से जो खाद है और पौधे लगाने के समय ही हम खाद 20 किलोग्राम खाद और 1 किलोग्राम नीम की खली डाल सकते हैं, और साथ ही जो फास्फोरस है वो भी हम जब हम पौधे लगा रहे होते हैं उसी वक्त डाल दें। उसके अलावा जो नाइट्रोजन और पोटैश है ये आप 5 विभाजित खुराक में डालें, जैसे कि अगर आपने पहले लगाने के पहले महीने में नाइट्रोजन डाला है, फिर आप तीसरे महीने में डालें, पांचवें महीने में डालें, फिर सातवें महीने में डालें। इसी तरह से पोटेशियम का भी है कि अगर आपको 400 ग्राम पोटेशियम डालना है तो आप उसे 5 खुराकों में विभाजित करें, और पहले महीने, तीसरे महीने, पांचवें महीने, सातवें महीने और आखिरी खुराक जो फूल निकलते हैं उस वक्त आप डालें। इस तरीके से खाद एवं उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो इससे आपके जो केले हैं उसकी वो फली बहुत अच्छी और भरी हुई होंगी और आपका जो उपज है वो ज़्यादा अच्छा आएगा।
9: और मैम, अब हमारे किसान भाई बहनों को आप ये बताइए कि केले की फसल में उसके तुड़ाई तक क्या क्या ऐसे विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है।
8: तो केले में काफ़ी सारे कार्य होते हैं जो बुआई से लेके फसल कटने तक हमें करना होता है। उसमें से सबसे पहले आती है डीलीफिंग, यानी कि पत्तियों को हटाना। केले के पौधे से अतिरिक्त पत्तियों को समय समय पर हटाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके जो पुराने पत्तियां होती हैं वो सूख जाते हैं या गिर जाते हैं, तो आप उन्हें समय समय पर हटा कर खेत से बाहर कर दें, ताकि वो क्या होता है कि जो ये सूखी हुई पत्तियां होती है इसमें कीड़े मकौड़ों का घर हो जाते हैं। तो अगर वही सूखी पत्तियां वहीं गिरी रहेंगी तो उसमें कीड़े ज़्यादा अच्छे से पनप सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप केले के पत्ते हटा, जो भी सूखे हुए पत्ते हैं आप उन्हें हटाकर बाहर निकाल दें। दूसरा आता है वीडिंग, खरपतवार निराई गुराई। केले के जो बगान होते हैं उसमें निराई गुराई करना एक बहुत बहुत आवश्यक कार्य है, क्योंकि क्या होता है कि जो जो भी खरपतवार होते हैं उसमें भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाते हैं, उनको एक घर मिल जाता है। और केले में जो कीड़े मकोड़े हैं वो बीमारियों का बीमारियों को फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए केले के खेत को आप जितने साफ तरीके से साफ सुथरा रख सके उतना अच्छा होगा केले के अच्छे पैदावार के लिए। उसके बाद आता है डीनेवलिंग। डीनेवलिंग होता है कि जो नर पुष्प होते हैं, आप देखेंगे जब एक गोंद में से सारे सारे फल निकल जाते हैं उसके बाद लास्ट आखिर में एक फूल बचा रहता है, कली बची रह जाती है, तो उसे भी हमें हटा देना चाहिए ताकि जितनी भी एनर्जी है या जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो केला वो फल में दे सके और फल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो सके। इसके बाद आता है फूल हटाना। ये आप अगर छोटी बौनी किस्में हैं और फूल तक अगर आपके हाथ पहुंच रहे हैं तो आप जो सूखे हुए फूल हैं, जो केले के फली लग गई है उसके नीचे जो सूखी फूल है वो भी आप हटा सकते हैं। उसके बाद आता है गुच्छों को ढकना या बंच कवरिंग, जिसे बंच कवरिंग भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें क्या होता है कि जो जब घोंद बाहर निकल रहा होता है उस वक्त ही हमें गुच्छों को, जो गुच्छे बाहर आ जाते हैं पेड़ से, तो हमें उसे ढकना चाहिए। वो ढकने के लिए या तो आप पीपी बैग्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे जनरली हम पीपी बैग से या फिर छिद्रयुक्त पॉलिथीन या फिर नॉन वुवन बैग से ढक देते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि जो जो फल हैं उसमें एक तो डायरेक्ट सन धूप नहीं लगती है और उससे टेम्परेचर, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो स्केरिंग बीटल होता है, जो आप देखे होंगे कि केले के फल पे धब्बे हो जाते हैं, वो स्केरिंग बीटल के वजह से होती है। और जब अगर हम बंच कवरिंग कर दें तो ये जो स्केरिंग बीटल से नुकसान होता है, जो केलों पे धब्बे होते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। बंच कवरिंग करने से जो किसान भाई कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल की ज़रूरत भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्केरिंग बीटल होते हैं उसी की रोकथाम के लिए किसान भाई कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। बट इस स्केरिंग बीटल को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस बंच को ढक दें। जब बंच निकल रहा है उसी वक्त स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आप उसे ढक देंगे तो वो स्केरिंग बीटल उसे नुकसान ही नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको कीटनाशक देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद दूसरा आता है डीसकरिंग, या फिर जो जो सकर्स होते हैं। आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके चारों तरफ छोटे छोटे और नए पौधे आते रहते हैं, तो आपको किसान भाइयों को ये छोटे छोटे जो सकर्स निकलते रहते हैं उसे समय समय पर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सकर्स क्या होते हैं कि अगर आप इसे भी साथ साथ में ग्रो करने देंगे तो ये सकर्स भी मिट्टी से वो खाद लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे जो आपने मेन पौधे के लिए दिया था। तो इसलिए कोशिश करें कि सारे सकर्स को आप हटा दें और एक बार जब फूल आ जाए, फल आने लगे, तब रेटूनिंग के लिए आप एक सकर को रखें, उसे बढ़ने दें। जब फूल आके फल आ जाए उसके बाद आप एक सकर को मेंटेन करके रख सकते हैं, जो आप अगले साल जिससे आप अगले साल फसल लेने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आगे बताना भूल गई थी कि अगर आप केले की खेती करते हैं तो तीन बार से ज़्यादा एक ही सकर से आप ग्रो नहीं करेंगे, मतलब तीन रेटूनिंग के बाद आप फसल चक्र अपनाएं और उस एक ही सकर से आप ग्रो नहीं करेंगे, मतलब तीन रेटूनिंग के बाद आप फसल चक्र अपनाएं और उस खेत को पूरा खाली करके उसमें कुछ और फसल लगा दें, चाहे आप मक्का लगा दें या फिर धान लगा दें, गेहूं लगा दें, कुछ भी लगा दें, और उसके बाद एक साल का गैप छोड़ें, उसके बाद ही दूसरा फसल लगाएं उसमें। फिर आता है एक क्रॉपिंग, यानी कि सहारा देना। जब केले के घौन निकल जाते हैं और फलियां बड़ी होने लगती हैं तो केले के पेड़ फलों के भार से झुक जाते हैं, तो इस वक्त ज़रूरी है कि केले के पौधे को सहारा दिया जाए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बांस से हम केले के पौधे को सहारा दे देते हैं और इससे क्या होता है कि फल पेड़ गिरते नहीं, झुकते नहीं हैं और ना गिरते हैं। बहुत बार संभावना होती है कि जो फल है वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो पौधे झुक जाते हैं और झुककर गिर जाते हैं, तो इससे फलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए जब फल आ जाए, पूरा गोंद बाहर आ जाए और सारे फल निकल जाए तो बांस की सहायता से पौधों को आप सहारा दे दें।
9: मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि तुड़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए और उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
8: तो जब केले की तुराई की बात होती है तो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तुराई करें वो जब केले परिपक्व हो जाए उसके बाद ही करें। बहुत बार किसान क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम दूर कहीं किसी दूर बाज़ार में हमें केले बेचने हैं तो वो अपरिपक्व स्टेज पे ही केला को तोड़ लेते हैं या हार्वेस्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप परिपक्वता के पहले उसे तोड़ेंगे तो वो इथिलीन देने से वो पक तो जाएगा या फिर रखे भी वो पक जाएगा, लेकिन जो उसका स्वाद है वो ख़राब हो जाएगा। जो अंदर की जो फली है वो उसका जो गूदा है उसमें ना वो स्वाद आएगा ना ही वो उतना भरेगा। तो अभी आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप इंतज़ार करें कि जब वो केला परिपक्व हो जाए तभी तोड़ें। अब बात आती है कि आप कैसे जानेंगे कि ये केला परिपक्व हो गया है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप केले का एक एक जो फली है उसे देखें। तो जब कच्चा रहता है तो आप देखेंगे वो उसके चारों तरफ किनारे नुकीले होते हैं, मतलब किनारे गोल नहीं होते हैं। तो जब केले परिपक्व हो जाते हैं तो उसके किनारे गोल हो जाते हैं, केला पूरा ही गोल हो जाता है। अगर केले गोल हो चुके हैं तो यानी कि वो परिपक्व हो चुके हैं, वो केले आपको दिखेंगे वो गहरे हरे रंग से वो हल्के हरे रंग की तरफ, उसका रंग छिलके का रंग बदलने लगता है। तथा अगर कुछ केले गोंद में कुछ केले पीले पड़ने लगते हैं तो समझना चाहिए कि अब ये केले परिपक्व हो चुके हैं और हम इसकी तुराई कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश किस्मों में 90 से एक फूल निकलने के 90 से 100 दिन के 120 दिन तक में केला परिपक्व हो जाता है और आप इसकी तुराई कर सकते हैं।
9: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से मैम ने बताया आप उस प्रकार से केले की खेती कर सकते हैं और जिन भी बातों का ध्यान रखने की बात मैम ने कही उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके केले के जो

0: फसल होंगे वो बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे उत्पादन का आप लाभ उठाएंगे। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही आप अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का ऊपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंहपका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान PMJY की बात करने वाले हैं, और आज हम जानेंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती है, और अगर कोई परेशानी आए तो आप किनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल 24 घंटे सातों दिन कोई एक कॉल सेंटर है क्या, या फिर कोई आयुषी चैट बॉट कैसे काम करता है, कैसे आपकी मदद कर सकता है, इन बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया। भैया, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए कि कैसे हैं आप।
1: धन्यवाद आरजे उमा, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आज तो दिल खुश करने वाली खबर भी लेकर आया हूँ। हमारे गांव की उर्मिला दीदी हैं,

0: उम्र करीब 55 साल, कई महीनों से दिक्कत में थी, पेट में दर्द रहता था, लेकिन पैसे की चिंता में अस्पताल जाने से डरती थी। फिर एक दिन आशा दीदी ने उन्हें समझाया कि उर्मिला दीदी, आपके नाम पर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, इसलिए अस्पताल चलते हैं। उसी दिन आशा दीदी के साथ वे नज़दीकी सूचीबद्ध अस्पताल गईं। अस्पताल वालों ने आयुष्मान कार्ड स्कैन किए और बिना एक भी रुपया लिए उनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई। आज उर्मिला दीदी ठीक है और खेतों में काम कर रही हैं।
1: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो, अस्पताल का पता ना मिले या योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो वो किससे पूछे? मतलब कोई ऐसी जगह है जहां दिन रात कोई उनके सवाल सुनकर उचित जवाब दे सके?
0: हाँ बिल्कुल है ना उमा, आयुष्मान योजना के लिए सरकार ने आयुष्मान संपर्क नाम का 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर बना रखा है। बस आप 1455 डायल कीजिए और उधर से कोई न कोई तुरंत बात करने के लिए आ जाएगा। मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके कार्ड पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, या किसी को अस्पताल में ओपीडी या भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो बस कॉल कीजिए, कॉल सेंटर वाले आपको एक एक चीज समझा देंगे। कई बार मरीज अस्पताल से लौट आता है लेकिन आगे की दवा या जाँच कहाँ करानी है ये समझ में नहीं आता। ऐसे में आयुष्मान वाले संपर्क करते हैं और संपर्क करके बताते हैं कि नज़दीक में कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां फॉलोअप मिल सकता है। अगर आपको अस्पताल में गलत जानकारी दी गई या शिकायत दर्ज करवानी है तो भी आप इस नंबर पर बता सकते हैं। एक बात और, ये सिर्फ जानकारी देने वाली जगह नहीं है, यहाँ लोग आपकी राय भी पूछते हैं कि सेवा कैसी लगी, क्या सुधार होना चाहिए।
1: सेहतिया भैया, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है।
0: देखिए, आयुष्मान योजना की अपनी एक वेबसाइट है जो कि आप वेबसाइट पर जाकर beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पर आपको आयुषी नाम का एक चैटबॉट मिलता है। आयुषी बड़ी ही मददगार है। मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपका कार्ड बना है या नहीं, योजना में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं, या आपके आसपास कौन सा अस्पताल आयुष्मान में सूचीबद्ध है, तो इस वेबसाइट को खोलिए और आयुषी से बात कीजिए। आप जैसे ही अपना सवाल टाइप करेंगे आयुषी तुरंत जवाब दे देगी। न किसी का इंतजार, न कॉल लगाने की टेंशन, बस मोबाइल में लिखिए और जानकारी आपके सामने। ये चैटबॉट बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में जवाब देता है, जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हों, चाहे आप लाभार्थी हों या अस्पताल चलाते हों। आयुषी दिन रात उपलब्ध रहती है, आपको जब भी जरूरत हो बस क्लिक कीजिए और आपका जवाब तैयार मिलता है।
1: बहुत अच्छा सेहतिया भैया, वैसे आयुष्मान PMJY में किस किस बीमारी का इलाज कवर होता है?
0: देखिए, आयुष्मान PMJAY बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बिल्कुल फ्री कर देता है। जैसे अगर किसी को जनरल सर्जरी की जरूरत हो, मतलब पेट का ऑपरेशन, हॉर्निया, अपेंडिस वगैरह योजना में शामिल हैं। फिर आता है ENT यानी कान नाक और गले से जुड़ी हुई कोई परेशानियां। अगर किसी के कान में पानी बह रहा है या टॉन्सिल की दिक्कत हो तो उसका इलाज भी इस योजना के तहत होता है। मोतियाबिंद से परेशान हो तो सर्जरी भी आयुष्मान PMAJY से हो सकती है। महिलाओं के लिए भी ये योजना बहुत काम की है। प्रसूति और स्त्री रोग यानी डिलीवरी, महिलाओं की सर्जरी या अन्य बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाता है। हड्डी वाली परेशानियां जैसे फ्रैक्चर, जोड़ बदलना या हड्डी में दर्द की समस्या भी इस योजना में आती है।
1: सेहतिया भैया, अभी आपने कई तरह के इलाज बताए, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, दिल की बीमारी हो या दिमाग से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो, तो क्या उसका भी इलाज आयुष्मान PMJY कराता है?
0: बिल्कुल करता है ना। कई लोग सोचते हैं कि योजना बस छोटे मोटे इलाज तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुष्मान PMJAY कठिन और महंगे इलाजों को भी कवर करता है। जैसे अगर किसी की दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट में कोई चोट लग जाए, कई जगह फ्रैक्चर हो जाए, इसे ही पॉलीट्रॉमा कहते हैं। ऐसे में इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन आयुष्मान PMJAY में इसका खर्च कवर होता है। और फिर आता है दिल का इलाज, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, स्टेंट लगाना जैसे बड़े ट्रीटमेंट भी इस योजना में शामिल हैं। लोग लाखों के खर्च से बच जाते हैं। अब बात करते हैं दिमाग और नसों यानी कि न्यूरोसर्जरी की। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो या सिर में चोट के बाद ऑपरेशन की जरूरत है तो वो भी आयुष्मान पीएमजेएवाई के तहत कराया जा सकता है। कैंसर का इलाज हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत पैसा लगता है, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई में कैंसर की सर्जरी कवर होती है।
1: सेहतिया भैया, क्या चेहरे का ऑपरेशन, जलने का इलाज, छोटे बच्चों की सर्जरी जैसे बड़े इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई में कवर होते हैं?
0: आयुष्मान पीएमजेएवाई महंगे ऑपरेशन भी कवर करता है, जैसे प्लास्टिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जैसे हादसे में किसी के चेहरे या हाथ पैर पर चोट आ गई हो या शरीर का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो इस सर्जरी में से डॉक्टर मरीज को ठीक कर देते हैं। इसका खर्च भी योजना उठाती है। फिर है चेहरे और मुँह की सर्जरी। किसी को चेहरे में चोट लग गई, जबड़े में समस्या है या कोई जन्मजात दिक्कत, तो इन समस्याओं का इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई के तहत हो जाता है। अब बात करते हैं कार्डियोथोरेसिक और वास्कुलर सर्जरी की। ये छाती, दिल के आसपास और शरीर के नसों से जुड़ी बड़ी सर्जरी होती है। ये इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई इन्हें भी कवर करता है, जिससे लोगों को लाखों का खर्च उठाना नहीं पड़ता। फिर है वर्म्स मैनेजमेंट, यानी जलने के बाद का इलाज। अगर कोई घर में खाना बनाते समय झुलस जाए या किसी दुर्घटना में जल जाए तो उसका पूरा इलाज, ड्रेसिंग, सर्जरी सब कुछ योजना में शामिल है। और इस योजना की सबसे प्यारी बात बच्चों का इलाज। अगर बच्चों को किसी बीमारी के लिए सर्जरी की जरूरत है तो ऐसी सर्जरी भी आयुष्मान पीएमजेएवाई में कवर है। छोटे बच्चों का इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन इस योजना से माता पिता का बोझ हल्का हो जाता है।
1: सेहतिया भैया, अभी तक आपने सर्जरी वाली कई सुविधाएं समझाई, लेकिन क्या जनरल मेडिसिन, नवजात शिशुओं की देखभाल या गुर्दे मूत्र से जुड़े कोई इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई में आते हैं?
0: देखिए, आयुष्मान पीएमजेएवाई सिर्फ ऑपरेशन वाला इलाज ही नहीं करता, बल्कि कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट भी कवर करता है, जैसे यूरोलॉजी यानी गुर्दे, मूत्र नली और प्रोस्टेट जैसी जुड़ी समस्याएं। अगर किसी को किडनी स्टोन है, मूत्र रुक रहा है या प्रोस्टेट बढ़ गया है तो इसका इलाज भी योजना में हो जाता है। फिर आता है जनरल मेडिसिन, जिसमें डायबिटिक, ब्लड शुगर, बुखार, संक्रमण जैसी आम लेकिन गंभीर बीमारियां का इलाज भी हो जाता है। अब बच्चों की बात करते हैं। बच्चों की सामान्य बीमारियां जैसे जुकाम से लेकर इन्फेक्शन, सांस की दिक्कत, ब्लड से जुड़ी समस्याओं का इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई में होता है। नवजात शिशुओं की देखभाल भी इस योजना में कवर है। कई परिवार कैंसर का नाम सुनकर ही टूट जाते हैं क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई में कैंसर, बच्चों के कैंसर का इलाज भी शामिल है।
1: सेहतिया भैया, एक बात और जाननी जरूरी है कि क्या कैंसर की दवाइयाँ, रेडिएशन, इमरजेंसी इलाज, मानसिक स्वास्थ्य और अंग प्रत्यारोपण जैसे बड़े बड़े इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई कवर करता है?
0: बिल्कुल करता है। आयुष्मान पीएमजेएवाई का दायरा बहुत बड़ा है। कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, कई बार तो महीनों तक चलती हैं, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई में ये भी कवर होता है। इसके बाद आता है रेडिएशन एंकोलॉजी, मतलब कैंसर को विकिरण से जलाकर खत्म करना। ये भी बहुत हाईटेक और महंगी सुविधा है, पर योजना इसका खर्च भी अपने जिम्मे ले लेती है। मानसिक स्वास्थ्य भी इस योजना में शामिल है। डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई गंभीर मानसिक विकार का इलाज भी इस योजना में आता है। और अंग प्रत्यारोपण सबसे अहम है। दिल, किडनी, लीवर जैसे बड़े प्रत्यारोपण का खर्च सोचकर ही लोग कांप जाते थे, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई में अंग प्रत्यारोपण भी कवर है।
1: सेहतिया भैया, जिन मरीजों को गंभीर बीमारी हो जाती है, जिन्हें पूरी तरह ठीक करना मुश्किल होता है, उनके तकलीफों को कम करने वाला उपचार भी क्या आयुष्मान पीएमजेएवाई में मिलता है?
0: देखिए, कई बार बीमारी ऐसी होती है कि मरीज पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, जैसे कैंसर का आखिरी स्टेज या कोई गंभीर रोग। ऐसे में पॉलिएटिव केयर बहुत जरूरी है, जिसका मतलब मरीज की तकलीफ कम करना, दर्द कम करना, सांस की दिक्कत ठीक कर उसे आराम देना। आयुष्मान पीएमजेएवाई में भी ये सुविधा कवर है। अब आते हैं उन खास इलाजों पर जो बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्लोक्लियर इम्प्लांट जिसमें बच्चों को सुनने की शक्ति वापस मिलती है, या किडनी प्रत्यारोपण। इन सब के लिए भी आयुष्मान पीएमजेएवाई में विशेष पैकेज है।
1: दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि आयुष्मान पीएमजेवाई देश की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है। ये योजना करोड़ों परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से बचाती है और अस्पताल के दरवाजे सबके लिए खोलती है। 5 लाख रुपए तक का सालाना उपचार किसी भी गरीब परिवार के लिए एक मजबूत सहारा है। जब इलाज बिना पैसे के, बिना भाग दौड़ के कैशलेस हो जाते हैं तो घर के लोग राहत महसूस करते हैं। श्रोताओं, सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आयुष्मान पीएमजेवाई के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे आशा और एएनएम की भूमिका, ऑनलाइन समाधान, अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाएं और मरीजों को मिलने वाली फॉलो अप केयर के बारे में। अब मुझे इजाजत दीजिए, पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं,

0: और के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों उन्नत कृषि कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम कृषि की बात करते हैं, जब हम खेती गृहस्थी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हमारा जो देश है, हमारा प्यारा भारत, वो किसानों का देश है। और समय बहुत बदल चुका है लेकिन फिर भी आज भी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है खेती गृहस्थी। लेकिन आजकल जो कुछ युवा हैं वो सोचते हैं कि शायद इसमें रोजगार नहीं है या फिर इसका महत्व क्या है, वो इस बारे में समझ नहीं पाते हैं। इसके बारे में समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश कुमार। सर आप हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद मैम। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाश, मैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग में यहाँ सहायक प्राध्यापक हूँ और आज मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है उसके कुछ पहल जो बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा और कुछ आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आपके लिए भी ज्ञानवर्धन होगा। और उस क्रम में आप जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत और अपना राज्य पूरा देश की बात की जाए तो कृषि प्रधान देश है। आज भी पूरे देश में जो रोजगार की बात है, हम लोग सब जानते हैं रोजगार दिन ब दिन गिरते जा रहा है। टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण से काफी इंजीनियरिंग क्षेत्र में
0: रोजगार
2: घटते जा रही है। लेकिन कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी रोजगार की असीम
0: संभावनाएं
2: हैं। उसमें से आज अगर पूरे देश की बात की जाए तो लगभग 45% जो 45% आबादी, लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। और अगर बिहार की बात की जाए तो लगभग 80% ऊपर, 82% के आसपास। इसमें ग्रामीण रोजगार मुख्य स्रोत है। आज भी गांवों में लगभग 100% लोग खेतीबाड़ी करते ही हैं और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए काम उनका प्रधान कार्य है। उस दूसरा, जैसे खेती की बात की जाए तो हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के कारण आज हमारे पूरे देश की जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है टोटल, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान एक कृषि का है। आज भी एक जो अहम भूमिका सकल घरेलू उत्पाद में पूरे देश का, उसमें 18% योगदान, लगभग 18% खेती से और कृषि से है। उसमें इस बार लगभग 25-26 में, पिछले साल की अगर बात की जाए तो लगभग पूरे देश की जो हम आमदनी, जिसको हम बोलेंगे देश का भी पूरा इनकम होता है, जिसको हम अर्थशास्त्र के भाषा में उसको सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी बोलते हैं, अगर उसको आमदनी के तौर पे देखा जाए तो लगभग 24 लाख करोड़ जो है इस पर केवल एक साल में खेती से सरकार को गई है। अगर आप देखिए, आप कितना भी विकसित हो जाइए, आप कितना भी विकास कर लीजिए, चांद पे चले जाइए, मंगल पे चले, लेकिन खाने के बिना आप नहीं रह सकते।
0: जी बिल्कुल नहीं।
2: और हमारे पास जो हमारे 150 से ज्यादा आबादी वाला देश, इतनी बड़ी आबादी वाली देश, वहां पर हमेशा सबको खाना मिले ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा पे हम लोग जो वैज्ञानिक लोग खेती में यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, देश दुनिया में काम कर रहे हैं, जिससे आज कम से कम इतना हो गया है जो हम लोग, कोई ऐसा नहीं होगा जो खाना के बिना मतलब भूखा सोता होगा। तो कम हम लोग, और जितनी हमारी जरूरतें हैं पूरे देश में उससे कहीं ज़्यादा, लगभग दुगुनी हम लोग उत्पादन करते हैं। तो जो खाद्य सुरक्षा की बात है, आप कुछ भी कितना भी अमीर हो जाइए, खाने के बिना आप नहीं रह सकते, खाना आपको खाना ही पड़ेगा। और उसके लिए कृषि क्षेत्र ही, कृषि एक सोर्स है जिसमें 140 करोड़ जनसंख्या के लिए अनाज उत्पादन लगभग 320 मिलियन

0: टन, 325 मिलियन टन अनाज हम लोग एक साल में उत्पादन करते हैं, जबकि हमें लगभग 150-200 टन की आवश्यकता है। तो हम लगभग 2 डबल के आसपास, तो इस मामला में हम आत्मनिर्भर हैं, चावल गेहूं दाल में आत्मनिर्भर हैं। फिर इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये विदित है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है, लग सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कृषि का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली गांव का विकास होगा, वो किसान का विकास होगा, गांव का विकास होगा। तो उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 70% ग्रामीण परिवार कृषि से जुड़े हैं, 70% से ज्यादा, 45% तो मैं बताया था जो रोजगार दे रही है, लेकिन जो डायरेक्ट जो लोग जुड़े हुए हैं लगभग 70% पूरे देश में, आप मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है, पूरे में पूरे जनसंख्या का 70% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। उसमें से मनरेगा, मनरेगा का नाम अभी जी राम जी नया नाम जी, रखा जी, गया है। फिर पीएम किसान जैसी योजनाओं का आधार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और ग्राम गाँव में लोग इससे इससे काफ़ी ज़्यादा उनको लाभ मिलता है। फिर इससे जो आर्थिक प्रभाव भी जो हुआ, उसमें उद्योगों का कच्चा माल, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो पूरी तरह खेती पर आश्रित है, जैसे आप जितने जैम जेली बिस्किट चाय, आप जो भी इस तरह के खाद्य पदार्थ से बने हुए सामान आप जो भी लेते हैं, वो सारा का सारा खेती पर, कृषि पर आधारित है। तो जितनी खाद्य प्रसंस्करण, बहुत सारे वस्त्र जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, उसके आधे से ज्यादा कपड़े जो है प्योर सूती के होते हैं या कपास के होते हैं, जिसको जूट बोलते हैं, कॉटन। अब कॉटन जो है जो सूती के, वो तो पूरा का पूरा खेती में ही होगा, कृषि आधारित ही है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चीनी, पूरा चीनी उद्योग जो है वो पूरा का पूरा खेत पर निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है। तो इस तरह से लगभग 14% औद्योगिक उत्पादन खेती से होता है। फिर निर्यात, निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुआ है। पहले जब हम हमारी देश आज़ाद हुई थी, तो उस टाइम हम भूखमरी थी, खाने को नहीं मिल रहा था, और आज हम लोग $11 बिलियन का केवल चावल निर्यात किए, $11 बिलियन। फिर मसाले, सब्जियां, इसमें मसाले में हम शुरू से ही मतलब हमारे बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारी पहुँच रही है, और हम हमेशा से हम उसमें एक नेतृत्व किए, और भारतीय मसालों का काफ़ी मांग है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। 2025 में कृषि निर्यात लगभग $50 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है 25-26 के। फिर जो महंगाई दर है, मुद्रास्फीति, जो इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, वो सब में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए जैसे महंगाई, प्याज का दाम बढ़ता है तो दूसरे चीज का भी दाम बढ़ जाएगा।
1: जी, जी।
0: तो ये जो है, इसमें हम जब हमें इन्फ्लेशन को कम करना हो, उसमें भी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अच्छी फसल होगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई मतलब सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा, तो दाम घट जाएगी, महंगाई नियंत्रित होगा। फिर अगर हम जितना ज्यादा बाहर भेजेंगे, हमारी जरूरतें मान लीजिए 200 मिलियन टन का है और हम उगा रहे हैं लगभग 350, तो जो बाकी का 125 मिलियन टन है विदेश भेजते हैं, निर्यात होता है, उससे हमें विदेशी मुद्रा का खजाना हमारा पूरे दुनिया में मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा है। उसमें आज जो विदेशी मुद्रा, जो एक्सपोर्ट, जिस फसल का जितना मतलब यहाँ से जितना एक्सपोर्ट होगा उतना विदेशी मुद्रा बढ़ेगा, उसमें हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय का भी अहम योगदान है। कैसे, जो हम लोग 5 फसलों को GI करवाने में, जो GI टैगिंग कर देने में जो हमारी प्रयास रही, उसमें जो हम सफल हुए, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारत अपने देश में भी काफ़ी मांग बढ़ी दूसरे बाजारों में, जिससे जैसे उससे आमदनी बढ़ा। और विदेशी मुद्रा जब हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट होता है, तो उससे विदेशी मुद्राएं का भंडार बढ़ रहा है। उसमें जो मखाना का मिथिला मखाना के नाम से जब GI टैग मिला, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा विदेश में भी मांग बढ़ी, और उसके कारण समय से उससे विदेशी मुद्रा भी हमारा बढ़ रहा है। बिहार जैसे राज्यों में मखाना निर्यात उल्लेखनीय है, और जर्दालू आम का भी निर्यात काफ़ी बढ़ा है इससे। फिर उसमें क्या क्या अब चुनौतियां हैं, अब जब हम कृषि जब इतना हमारे लिए जरूरी है, इतना ज़्यादा लोग इस पर आश्रित हैं, इतने ज़्यादा रोजगार और भी ज़्यादा रोजगार वृद्धि की संभावनाएं हैं, तो क्या क्या यहाँ पर चुनौतियां हैं और क्या उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे आज भी हमारी उत्पादकता जो है, जो अगर हम बोलें जो प्रति एकड़ और प्रति हेक्टेयर जितनी उत्पादन होनी चाहिए, आज भी हम अमेरिका जापान जैसे देशों से बहुत कम है। तो हमारे पास जो खेती योग्य जमीन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादकता कम है। अगर उत्पादकता बढ़ा दी जाए तो हमें और हम जितनी उत्पादन कर रहे हैं उससे डबल हम कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे प्रति हेक्टेयर उपज वैश्विक औसत से 50% कम है हमारी। अच्छा। मतलब जितना औसत जो पूरी दुनिया की है उसके आधार से, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हमारा आधी है, 50% कम है। और मानसून पे निर्भरता हमारी जो है 60% है। अगर बारिश नहीं होती है, वर्षा अगर ठीक से नहीं होती है मानसून में, तो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन कम हो जाता है। 60% क्षेत्र जो है मतलब वर्षा पे आधारित सिंचाई क्षेत्र है। फिर जलवायु का क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे सूखा, बाढ़। बिहार में ही लीजिए तो दक्षिण बिहार जो सूखा पीड़ित है और उत्तर बिहार जो बाढ़ में डूबा रहता है, तो 5-10% उत्पादन का लॉस हो जाता है इसमें जो। और उसको कवर करने के लिए ऐसे सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यवस्था किया है। फिर उससे बाजार सुधार की आवश्यकता है। बिहार जैसे राज्य में आज देखिए जो APMC नहीं है, उसके लिए हमें MSP नहीं मिल पाता है, तो ये सब यहाँ पर भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तो APMC हो गया, ई नाम हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे इस बार मैंने बताया जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इस बार बजट में 1.64 लाख करोड़ रुपया बुनियादी ढांचा के लिए दिया गया। और ड्रोन तकनीकी, मतलब इस बार जो एडवांस अब जो है टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपनाना जरूरी है अगर आपको उत्पादकता बढ़ाना है। तो जैसे AI हो गया, भारत विस्तार योजना जिसको बोलते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के, फिर ड्रोन आजकल इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती, इस सबको बढ़ावा की आवश्यकता और है। अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो राज्य GDP में 20% कृषि योगदान है। अगर पूरा देश की बात की जाए तो कृषि का 18% है, और बिहार में जिसको SGDP बोलते हैं, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, उसमें बिहार में कृषि का 20% योगदान है। फिर बाजार उत्पाद सामग्री, सब एग्री स्टार्टअप्स जैसे अपने विश्वविद्यालय में है, बिहार विश्वविद्यालय में है, उसके तहत और उसके माध्यम से और भी लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और बजट 2026 में जो मखाना प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया गया है, तो इससे कृषि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का इंजन है और उत्पादकता विविधीकरण से आय दुगुनी का लक्ष्य रखा गया है।
1: सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से भारत और कृषि का रिश्ता आज भी मजबूत है और कुछ चुनौतियां हैं जिसके लिए काम किया जा रहा है और सरकारें काम कर रही है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत सी बातें बताई आपने।
0: जी, धन्यवाद मैम।
1: दोस्तों, आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास। टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SK चौधरी सर। सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद मैडम।
3: सर सबसे पहला प्रश्न यही है कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है?
4: धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा। जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4,22,00,000 हेक्टेयर में की जाती है। आजकल धान का उत्पादन लगभग 9 करोड़ टन तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा बिहार राज्य में इसकी खेती लगभग 31,00,000 हेक्टेयर में की जाती है तथा इसकी उपज 70,00,000 टन तक तथा उत्पादकता 22.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी क्षमता से काफी कम है। इसके कई कारण प्रमुख हैं, जैसे कि कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन, बीज की गुणवत्ता में कमी, और भी इसके अलावा जो खरपतवार का प्रबंधन की समस्या और गलत शस्य क्रियाएं, इस सब कारणों से जो औसत उपज है वो बिहार राज्य में कम है। धान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की खेती को अपनाना होगा। हमारे देश तथा बिहार राज्य में मुख्यतः दो परिस्थितियों में धान की खेती की जाती है, पहला वर्षा आधारित और दूसरा संचित अवस्था में।
3: जी सर, अगर अब हम बात करें कि धान में अगर खर पतवार का प्रबंधन ना करें तो खर पतवार से किस प्रकार से हानि पहुंचता है हमारे धान के फसल को?
4: सबसे पहले तो खर पतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसलों में खर पतवार से लगभग 15-85% तक का नुकसान होता है। कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है। सीधे बोए गए धान में खरपतवार से नुकसान रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणु एवं कीट व्याधियों का भी आश्रय देता है। कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धान में 20 से 40 किलोग्राम नत्रजन, 5 से 15 किलोग्राम स्फुर और 15 से 50 किलोग्राम पोटास तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 7 से 14 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेता है तथा धान की फसल में पोषक तत्व से वंचित कर देता है और यह डायरेक्टली जो उपज है उसको कम कर देता है।
3: तो धान के फसलों में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो उगाते हैं?
4: मुख्यतः धान में या कोई भी फसल में तीन तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार और एक होता है मोथा कुल के खरपतवार। उसमें से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसमें नाम है जो इक्लिप्टा अलवा जिसको कहते हैं, कैना भी नाम से जानते हैं, सिजुलिया एक्जेलरिस है, कोमेलिना बेंगेलसिस है, एजीटीटम कोनोजॉइट्स जो उस फैमिली का प्रजाति का जो घास है वो निकल आते हैं, और उस तरह से लाल साग को भी देखा गया है जो कभी कभी निकल आते हैं खरीफ मौसम धान के फसल में। इसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसको खास घास कुल के खरपतवार है, उसमें जो है छोटा सावक जिसको हम लोग इकाइनोकोलोना कोलोनम भी कहते हैं, उसके बाद एक सावक होता है जो इकर्ना कोलोना क्रुसिगेली होता है, इसके अलावा जो है मरुआ जिसको एलोसिन इंडिका, इसके अलावा एरगोटिस जेपोनिका जो मुड़मुड़ नाम से जो खरपतवार है वो प्रायः सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है। इसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार आते हैं उसमें से जो साइप्रस इरिया है, साइप्रस फैमिली के मुख्य खरपतवार आते हैं जिसमें साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस जो कि स्केपरस मेरिसिमस इत्यादि, ये जो जो खरपतवार है वो मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
3: तो सर कौन से स्टेज पे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं?
4: धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान, खरपतवारों की संख्या, धान की किस्म एवं फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास के कुल के खरपतवार जैसे सावा, कोदो, फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जैसे कि सिजुलिया जिसको थुकचट्टा भी कहते हैं, इसके अलावा जो बन घाय जो घाय साग के जो एमरेंथस होता है, वो सब जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फसल के लेट मतलब कि देरी से निकलते हैं। इसके अलावा जो है धान में बुआई के लगभग 15 से 45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35 से 45 दिन के धान में बाद समय में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक या नाजुक दिन के बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए आते हैं। इस दिनों में खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल के उत्पादन में भी अधिक प्रभावित नहीं करता है।
3: तो अब बात करते हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
4: खरपतवार का प्रबंधन बहुत तरह से करते हैं जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। धान की फसल में खरपतवार की रोकथाम निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला है निवारक विधि। इस विधि में वो शस्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धान की खेती में खरपतवार के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे कि प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करके अच्छी सरी गोबर की खाद जो हम खेत को तैयारी करते समय देते हैं उसको अपना करके, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके, सिंचाइयों की नाली साफ सफाई करके, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र की बुआई से पूर्व साफ सफाई करके। इसके अलावा जो है यांत्रिक विधि है जो कि खरपतवार को पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इस विधि में किसान अपने हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। खेतों में हो चलाकर या पेडीवीडर चलाकर खरपतवार का रोकथाम करते हैं। समानता धान की खेती की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन बाद करने से खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो शस्य क्रिया विधि है उसमें भी परिवर्तन करके खरपतवार को आप अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है बुआई से पूर्व खरपतवार को नष्ट करके, इसको स्टेल सीड बेड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कहते हैं खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसको शाकनाशी जैसे ग्लाइफोसेट पाराक्वाइट जो केमिकल जो शाकनाशी है उसके द्वारा स्प्रे करके उसका एप्लीकेशन करके आप यांत्रिक विधि जोताई करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफी कमी आती है। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवार के बीज एवं उसके कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर ऊपरी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इस विधि से कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। रोपाई वाले खेत में पडलिंग करके खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। पडलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खेत में पानी भरकर लंबे समय तक खरपतवार को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस्मों को चयन जो सही चयन करके आप उसका भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्या है जहां पर खरपतवार के रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां पर ऐसी धान की किस्म का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़ावार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों को आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई असिंचित उपजाऊ भूमि में धान का छिटकवा विधि से बोते हैं। छिटकवा विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। अतः धान को हम कतार में ही बोना लाभदायक होता है और उसमें खरपतवार की जो समस्या है वो छिटकवा विधि से कम होता है। इसके अलावा जो कतार की जो बीच की दूरी है उसको आप मेंटेन करके भी खरपतवार को अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें करते हैं, धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखते हैं, खरपतवार उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवार की संख्या एवं वृद्धि में कमी की जा सकती है। धान की कतारों को संकरा करने से लगभग 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा देने से प्रयोग करने से खरपतवार को वृद्धि की दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। एक ही फसल को बार बार एक खेत में उगाने से भी खरपतवार की समस्या और भी जटिल हो जाती है तथा उसका जो रख रखाव है, जो एक ही इकोलॉजी का जो खरपतवार है वो ज्यादा उगते हैं। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष एक ही खेत में एक ही फसल लेने की बजाय फसल के बाद उसमें दूसरी फसल जो पल्सेज है, ऑयल सीड है, अगर दूसरी कोई भी परिवार का फसल है उसको लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल का प्रबंधन करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। रोपाई किए गए धान में पानी की उचित प्रबंधन करके खरपतवार को रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1 से 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी का स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग किए गए धान, सीधे बोए धान की खेत में जब फसल 30 से 40 दिन का हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई, क्रॉस जुताई करके पाटा लगा देने से भी खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। उर्वरक का प्रयोग करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय के फसल एवं खरपतवार की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में नियत पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्व की उपलब्धता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाता है। असिंचित उपजाऊ भूमि जहां खरपतवार समस्या अधिक होती है वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा में बुआई समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को धान में की लाइनों के पास डालना चाहिए जिससे कि इसका ज्यादा भाग फसल को मिल सके।
3: जी सर, ये तो आपने बताया अलग अलग तरीकों से किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। सर, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि रासायनिक विधि से खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और इस विधि के दौरान कौन कौन से रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन।
4: निश्चित ही रासायनिक विधि बहुत ही कारगर, जितने भी विधि बताएं उसमें सबसे ज्यादा कारगर रासायनिक विधि को माना जाता है। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम की यांत्रिक विधियां तथा हाथ से निराई गुड़ाई यद्यपि काफी प्रभावी पाई गई है लेकिन विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया है। इनमें से मुख्य कारण यह है कि धान के पौधे एवं स्वसमय खरपतवार जैसे जंगली धान एवं सावा के पौधे में पुष्प अवस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है, इसलिए पहले साधारण किसान निराई गुड़ाई के समय आसानी से इनको पहचान नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी में विधियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय में मजदूरों की उपलब्धता में कमी, खरीफ मौसम का असामान्य मौसम जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवार का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने के समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना भी बनी रहती है। धान की फसल के प्रयोग की जाने वाली प्रमुख रासायनिक बहुत से हैं, जिसमें कि जो हम शुरू के ही समय बताए थे, जो धान में मुख्यतः तीन तरह के खरपतवार पाई जाती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और साथ ही साथ मोथा कुल के खरपतवार, उसको मारने के लिए चाहे उसका प्रबंधन करने के लिए निम्न रसायन का प्रयोग करना किसान के भाइयों के द्वारा उचित होता है, जिसमें से सबसे पहला है ब्यूटाक्लोर, जो कि बहुत अच्छी दवाई है, जिसको मिंचेट नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग बुआई एवं रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। ये लगभग में इसका जो मात्रा है वो कम से कम 1.5 से 2 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जो कि सिर्फ घास कुल के खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है एलिलोफॉस एलिलोगार्ड, जिसका मात्रा जो है 400 से 500 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, ये भी प्री इमरजेंस जो प्री जो है उसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी बुआई के 2-3 से 4 दिन के बाद ही उसको देना लाभदायक है। ये भी घास एवं मोथा कुल के खरपतवार के लिए कारगर है। इसके अलावा जो है बिस्पेरीबैग सोडियम नाम का एक दवा है, जो कि इसका जो 10% इसी की मात्रा पाया जाता है, जो कि लगभग में 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका दर होता है और ये 25 से 30 दिन के बाद देना उपयुक्त होता है। ये चौड़ी पत्ती एवं घास कुल के खरपतवार के लिए कारगर होता है। इसके अलावा जो है एक ऑक्सीडाइजोन जो है कम से कम 750 से 1500 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर की दर से है, जो कि घास और मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नर्सरी लगाते हैं उसमें भी बहुत से खरपतवार का प्रकोप रहता है, उसमें भी ये दवा जो है वो कारगर है, जैसे कि पेट्राक्लोर, जो कि 50% इसी का मात्रा पाया जाता है, जिसका डोज है 750 ml से 1000 ml AI प्रति हेक्टेयर। यह घास मोथा चौड़ी पत्ती कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, जो कि आप इसको धान के नर्सरी में भी और जब रोपा करते हैं उस समय भी देना बहुत ही लाभदायक। जो कि एक और भी दवा है जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 2,4-D नाम का एक दवा है, जिसका जो डोज है 0.5 लीटर से 1 लीटर ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद देना कारगर पाया गया है और ये सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो है बहुत से दवा है, जैसे ऑल मिक्स जो दो हर्बिसाइड दो शाकनाशियों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्लोरोमिरोन और मेटसल्फिरोन है, ऑल मिक्स करके आता है, वो 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से पाया जाता है, जिसमें कि चौड़ी पत्ती मोथा कुल के खरपतवार के कारगर है। जिन किसान भाइयों को चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को मारना है, उसमें इथॉक्सी सल्फिरोन सनराइज के नाम से है, जो कि 100 ml प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, जिसमें चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाइयों सिर्फ मोथा को ही मारना है, उसमें है एजीम सल्फिरोन नाम का एक है, जिसमें 50 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से देते हैं, जो कि सिर्फ मोथा के ही घास जो कुल है उसको ये कारगर होता है। इसके अलावा जो भी और भी जो खरपतवार है, इतना अगर कोई भी अगर शाकनाशी अवेलेबल है उपलब्ध है, उसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपको जो रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन में सहायता मिल सकता है।
3: जी सर, सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
4: संदेश यही है, जो अगर आपके खेत में खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या है, तो सबसे पहले तो उसका पहचान करना बहुत जरूरी है, उसके उपरांत ही आप कोई भी जो उसका उपाय है उसका आप उपयोग करें, नहीं तो लाभ के बदला हानि का हानि ही हो सकता है। और साथ साथ पहले आप उसकी पहचान करें, उसके बाद ही उस शाकनाशियों को उसके जो अगेंस्ट जो उसके में काम करें उसका प्रयोग करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाई बहनों, जिस तरीके से सर ने बताया, उन तरीकों को अपनाकर आप धान की फसलों में खरपतवार का प्रतिबंधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का उपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीति और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंहपका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: इस पाठ का शीर्षक है बुलबुल।

0: क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो चिड़िया बुलबुल है। जब वो उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी।
1: बुलबुल अभी आप सुन रहे थे ध्वनि पाठ। विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार गीता वर्मा और दिनेश वर्मा, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: कॉलेरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का ऊपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीति और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंह पका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है. अक्सर हम ऐसी कुछ सब्जियों को खाते हैं जो हम अगर बिहार के बाहर जाएं तो बहुत कम लोग जानते हैं और बाहर मिलता भी नहीं है, जबकि उन सब्जियों में भी काफी पोषक तत्व होते हैं और काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होता है. लेकिन बावजूद इसके उन सब्जियों पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो अल्प उपयोगी रह जाते हैं. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी फसलों की भूमिका के बारे में. और इस बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी. आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा, और धन्यवाद मेरे भाई बंधु किसान भाइयों और एवं बहनों. मैं आज आपसे जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड फसलों की भूमिका इस विषय पर चर्चा करूंगी. तो देखा गया कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है. बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी तथा नई नई कीट एवं रोग समस्याएं किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रही है. ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है जो बदलती जलवायु के अनुकूल हो तथा कम संसाधनों में भी अच्छा उत्पादन दे सके. अल्प उपयोगी अथवा अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलों इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रही है.
0: मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अल्प उपयोगी सब्जी क्या है.
1: अल्प उपयोगी सब्जियां वे फसलें हैं जिनका स्थानीय स्तर पर लंबे समय से उत्पादन और उपयोग होता रहा है, लेकिन आधुनिक कृषि एवं बाजार व्यवस्था में उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उसमें बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रहा है. सो इनमें से देखा जाए तो चौलाय, सहजन, मालाबर पालक, ककोड़ा, विंग्ड बीन, याम बीन तथा राइस बीन जैसे प्रमुख फसलें हैं.
0: मैम इसका क्या जलवायु परिवर्तन में भी कुछ रोल रहता है.
1: हाँ बिल्कुल, इन फसलों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जलवायु सहनशीलता ही है. अधिकांश अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कम पानी, अधिक तापमान तथा कम उर्वरक भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है. यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन में बढ़ते प्रभावों के बीच इनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है. उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं सहजन का पौधा, सूखा और गर्मी दोनों को सहन करने की क्षमता रखता है. मलाबार पालक जिसको हम लोग पोईसाक भी बोलते हैं, और चौलाय जैसे पत्तेदार सब्जियां कम अवधि में तैयार हो जाती है तथा विपरीत मौसम में भी किसानों को उत्पादन प्रदान करती है. इसी प्रकार ककोड़ा और विंग्ड बीन जैसी फसलें स्थानीय परिस्थितियों में अच्छी तरह विकसित होती है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकती है.
0: मैम ये तो बात हो गई जलवायु परिवर्तन की, अगर हम पोषक तत्व के नजरिए से समझें तो पोषक तत्व के नजरिए से इसका क्या महत्व है.
1: हाँ उमा, तो इसमें अल्प उपयोगित सब्जियां पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इनमें विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. सहजन की पत्तियां और फलियों पोषण का उत्कृष्ट स्रोत है, जबकि चौलाई में आयरन और खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है. इनका नियमित सेवन कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है.
0: मैम आजकल हम लोग काफी ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी अल्प उपयोगी सब्जी महत्वपूर्ण होता है.
1: जी बिल्कुल, इन फसलों के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है. इससे खेती की लागत कम होती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है. जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है. अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कृषि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है. जब किसान केवल कुछ सीमित फसलों पर निर्भर रहते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के समय जोखिम बढ़ जाता है. लेकिन विभिन्न प्रकार की सब्जियां का उत्पादन कृषि प्रणाली को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाता है।
0: मैम, अभी जब आपने उदाहरण दिए तो बहुत सारे ऐसे सब्जियों का आपने नाम लिया जो बिहार में पाए जाते हैं, बिहार के लोग खाते हैं, लेकिन बिहार में इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सब्जियों को?
1: हाँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। तो बिहार में भी इन फसलों के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें हम लोग गृह वाटिका, पोषण वाटिका, समेकित कृषि प्रणाली तथा व्यावसायिक खेती में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सकता है। इसीलिए इनके संरक्षण, उन्नत किस्मों के विकास, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारा BAU साबोर विशेष प्रयास कर रहा है।
0: मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों और श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कृषि में विविधता लानी होगी और ऐसी फसलों को बढ़ावा देना होगा जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन दे सके। अल्प उपयोगी या अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि पोषण, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी इन फसलों के महत्व को समझें, इनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दें तथा जलवायु स्मार्ट कृषि के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद उमा।
0: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई बहन और अन्य श्रोता, आपने इस बात को अभी जो मैम ने बताया आपने समझा होगा कि कुछ जो अल्प उपयोगी सब्जी है वो कई पैमानों पर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उन सब्जियों को आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा, इस तरीके से हम अपनी ओर से इन सब्जियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त RJ उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
6: जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है, लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती है। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है,
5: मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
6: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं, तो AI जब कदम रख रहा था तो, या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं, AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई, टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पर ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
7: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन ना समझें, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
6: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
7: अच्छा।
6: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें, तो AI के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही AI आपको बता देगा। और हम लोग भी AI आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AI आपको

0: एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाव की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए, कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रति उत्तर जो आएगा,

0: में थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो एआई जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल्स स्मट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है ये जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एआई अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा एआई जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या एआई की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन एआई जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि एआई को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है। और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हो तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा। और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुंचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है क्योंकि बाजार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पे होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहां पर भी इसकी जानकारियां आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियाँ भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पर लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में AI को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती है उसमें अगर AI के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से AI का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप AI का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास AI का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी AI के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है तो आने वाला दिन आपका रहेगा, बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप AI वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए AI से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जब 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहां पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा, बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे जहां 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही AI का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से AI के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। AI आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर AI ही AI का बोलबाला रहेगा। अगर आप AI से डरेंगे तो AI वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, AI से आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उस AI से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस AI के मास्टर बन जाएंगे, AI आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि AI से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब AI से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से AI के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, AI से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो, लेकिन जब आप AI का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

है। हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो FM 3। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस्ड डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नज़र आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं। इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो तरबूज का रस नहीं, आपको चाहिए होगा 2 चम्मच तरबूज का रस, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर लें। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है। तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूँगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहाँ पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं और ख़ास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती है, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले। अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहा है। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहें। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है, या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
2: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
1: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
2: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाउइंग करते हैं और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं वतर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लाउइंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को। तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
1: पडलिंग यानी कि
2: हम कई बार, एक पडलर होता है तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेती हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस पर कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में। वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें यह ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो, और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डेपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डेपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक मॉडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरिगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरिगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डेपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें, तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपनी डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने तीन बताए आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
2: जी
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
2: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुवाई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और डीएसआर क्या होता है, डीएसआर में तो हम डायरेक्टली बुवाई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुवाई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली तीन तरीके की होती है, एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे एक से एक डेढ़ मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले एक दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डिपॉग नर्सरी। तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पर भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डिपॉग नर्सरी। तो ये डिपॉग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डिपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है। तो इसलिए हम श्री विधि में यूजुअली डिपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुवाई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुवाई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: 19 कृषि।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में. धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है. अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है. उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें. साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है. तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन. मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है. यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है. इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है.
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए. तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
1: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए. अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है. साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए. धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो.
0: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
1: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है.
0: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
1: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है.
0: जी मैम, और बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए?
1: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने. बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है. इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है. तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं. पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं. इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं. लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए. इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं, और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं, और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे. तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं. इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं. रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदी नाशी से उपचार करना चाहिए.
2: फफूंदी नाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेविस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
0: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
2: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है, वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी खासियत ये है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें यानी कि 2-3 प्लॉइंग्स करना चाहिए, और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएँ आसानी से की जा सके, और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहां पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहां पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
0: और मैम, अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
2: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है, और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 kg जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 kg चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
0: मैम अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
2: रोपनी के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्धजल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं उनमें सबौर श्री, राजेंद्र मैसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
0: तो किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम आपने जो जानकारी दी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद उमा।
0: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
4: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें 3 कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
0: तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
4: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते हैं और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
0: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
4: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
0: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
4: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़ो कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि इस सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
0: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
4: जी,
0: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
4: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छंटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छंटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुँचाने वाला कीट है उसको खा जाता है, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
0: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
4: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूंगा। जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% ईसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
0: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
4: धन्यवाद आपको भी।
0: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फ़ायदे हैं। मैम
6: थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है, तो आम फलों का राजा ये काफी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 ग्राम जो है उसमें प्रति 100 ग्राम में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफी ज्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
5: अच्छा।
6: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसके जो गिरी होता है उसके अंदर, गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है, उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक के चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसके हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है। इसमें चूंकि विटामिन मिनरल्स पाया जाता है तो ऑटोमेटिक है, और ये एनर्जी रिच फूड है, तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है, और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से दूर होता है, नींद आने की किन्हीं को समस्या हो वो नींद

0: बहुत फायदा है। यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है और उसको हमें सेवन अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण और मूल्य संवर्धन?
0: अनु, ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है, तो उसका उसमें कुछ उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2-3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहन ये वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10-15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी कई महीने रख सकते हैं, लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, खत्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी खराब होने लगता है, 2-3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ चीज तो ऐसे है कि 1-2 दिन में ही हमारा खराब होने लगता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन का, कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि जो चीज की मौसमी है, यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं। वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है। दूसरा कि यदि हम कोई जो किसी चीज को उत्पादन में जो खर्च लगता है उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है। तो जैसे कि हम आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। यदि उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए। इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हमें अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: अच्छा।
0: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए। इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इसे। मैम, अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
0: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद है, जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियां बनाती हैं, जिसपे लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही है। तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं जनरली, वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबसल्फाइड के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे आमतौर पर महिलाएं उसको सीधे धूप में सुखा करके बनाती हैं, लेकिन यदि ये आप एक स्टेप कर लेती हैं तो आपका आमचूर का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पन्ना भी, आजकल जब धूप होता है तो हर घर में पन्ना बनता है, यहाँ तक कि चौक चौराहे पर भी पन्ना मिलता है और दिल्ली जैसे शहर में पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है, मतलब इसका काफी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 liter पानी, 80 gram नमक, 20 gram काली मिर्च और 20 gram

0: सैट्रिक हम मिलाकर गर्म करते हैं, तब तो उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश को हम लोग बोतल में भरते हैं उसी तरह बोतल में भर देते हैं, और इसमें KMS पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं कि जैसे 5 लीटर है तो उसमें 3 ग्राम के अंदाज से उसमें के दर से उसमें मिला करके उसको पैक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आमचूर बना सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफ़ी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है, उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉप फल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उस फलों को आप अच्छे से धो कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें, टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीच का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आपका पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं। तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके उबालने के बाद उसको या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गुदा को अलग कर लेते हैं, रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं, उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गुदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गुदा हुआ है उस गुदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं। और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं, चीनी का आधा पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आँच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं, उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसके बाद प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम चूँकि कच्चे आम का बना रहे हैं इसलिए 4 ग्राम सैट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा चाशनी और आम दोनों जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर का आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम सैट्रिक एसिड डाले तो वहाँ 5 से 6 ग्राम सैट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से, और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका कुछ हटा करके उसके गुदे को निकाल लेना है, गुदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है, इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं, ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में इसे गर्म करके गुदा को नरम कर लेते हैं। अब गुदे की मात्रा का 3/4 या बराबर, मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गुदा लेते हैं उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो, पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 ग्राम सैट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 ग्राम भी सैट्रिक एसिड डाल सकते हैं और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 ग्राम भी सैट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके देते हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2-3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में लपेटकर खौलते पानी में 5-10 मिनट तक डुबोएं। बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उससे थोड़ा छेद कर दीजिए और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चाशनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5-2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से साइट्रिक अम्ल मिला दें। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चाशनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें। उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए। उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं, फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं, इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य एवं पोषणीय सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और श्रोताओं, आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं आरजे अनु को। आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बातें। तो आज भी एक खास विषय और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत लीची और आम के बागों का प्रबंधन कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रूबी रानी। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: मैडम। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत आम और लीची के बागों का प्रबंधन, तो इनके तोड़ने के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं इस फल की, और ताकि आने वाले समय में अच्छी फलन उन्हें प्राप्त हो सके।
2: किसान भाइयों, बागवानों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बगीचे की उत्पादकता एवं उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन किया जाए। वास्तव में होता क्या है कि किसान को जब फूल आने लगते हैं पौधों में, चाहे लीची में चाहे आम में, तब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब इसमें क्या करें ताकि मेरा फलन ज़्यादा हो। लेकिन ये आवश्यक है कि तुड़ाई के बाद ही उसका सही ढंग से प्रबंधन करें, चाहे कीट व्याधि का प्रबंधन हो, चाहे पोषण प्रबंधन हो, चाहे उसकी तुड़ाई हो, प्रूनिंग हो, और कुछ भी तरह की जो है समस्याएं हैं उसका प्रबंधन अगर सालों भर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे बागवान को उत्पाद का अधिक मूल्य और मुनाफा प्राप्त होता है।
1: जी,
2: तो हम एक एक करके बताना चाहेंगे कि लीची और आम में तुड़ाई के उपरांत
1: क्या
2: करना चाहिए, बगीचे में क्या करना चाहिए ताकि अगले साल में आने वाले फलन जो हो वो ज़्यादा अच्छा हो और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता युक्त भी हो।
1: जी मैम, अब कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो क्या कुछ क्रियाकलाप करना चाहिए तुड़ाई के बाद बागों के प्रबंधन के लिए?
2: सबसे पहले आम और लीची के तुड़ाई के समय में तुरंत या उसके तुरंत बाद बगीचे में बहुत सारी सूखी एवं टूटी टहनियाँ, पत्ते, सड़े गले फल आदि रह जाते हैं, जो कि कीट एवं व्याधि के लिए वैकल्पिक आधार का स्रोत का काम करते हैं। जब वो पेड़ में नहीं रहते हैं तो टूटे पत्तों में, टहनियों में, और जो सड़े वाले फल होते हैं जब या तो पेड़ पे सड़ जाते हैं या फिर टूटने के बाद सड़ जाते हैं, तोड़ने के दौरान जो है बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं जिसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े का प्रकोप होता है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत बगीचे की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई में क्या करें, रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, सड़े फलों को बगीचे से बिल्कुल बाहर निकाल दें। साथ ही पेड़ में अगर कोई रोगग्रस्त टहनियाँ हो, पत्तियाँ हो, कीड़ों का आदि का प्रकोप हो, तो उसका जो है अगर वो टहनी काटने लायक हो तो उसको काट दें, अगर वो टहनी काटने लायक नहीं हो तो उन सभी रोगों और व्याधियों का समुचित प्रबंधन करें ताकि उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाए। अगर टहनियाँ अधिक झुकी हों, अर्थात जमीन पर भी कोई सटी हुई हो, क्योंकि उसमें जब फल लगते हैं तो फल के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें भी अगर फल होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि तुम्हारा फल इसमें लगा हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं, परंतु फल की तुड़ाई के बाद वैसी टहनियाँ जो जमीन को छूती हुई हों या अधिक झुकी हुई हों उनकी छटाई भी आवश्यक है, ताकि जो है 1 से 1.5 मीटर जमीन तक जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कोई टहनी रहे और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके।
1: जी मैम, अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की, तो आम और लीची के बागान में जो है पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
2: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे जून के महीने में लीची की तुड़ाई जो है जून तक ख़त्म हो जाती है, जून के महीने में जो है आप लीची का जो है तुड़ाई के उपरांत की सूखी टहनियाँ, आड़ा तिरछा और रोगग्रस्त टहनियाँ, वृक्ष के छत्रक के बाहर जाती टहनियों को छटाई कर दें ताकि उसमें समुचित हवा और सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहे। और छटाई के उपरांत जो है बेधक छटाई अगर समुचित ढंग से करेंगे तो जो स्टेम बोरर का कीड़ा है उसका प्रकोप कम हो जाता है और छत्रक के अंदर की तरफ भी फल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रक के अंदर में भी तब उचित हवा और सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना शुरू होता है। साथ ही साथ लीची की मकड़ी से आक्रांत टहनियाँ जो हैं उसको भी काटकर बगीचे से दूर मिट्टी में दबा दें। उसके बाद बागों की हल्की जुताई करें, जिससे जून जुलाई के महीने में जो भी खरपतवार और मिट्टी के साथ सड़े गले की मिट्टी के साथ मिट्टी में पड़े कीड़े और मकोड़े उसके लार्वे नष्ट हो जाएं। और इसके बाद जब तुड़ाई हो जाता है तब उसके बाद जो है उसके पोषण प्रबंधन करते हैं, चाहे आम हो या लीची हो, तुड़ाई के उपरांत ही उसका हम पोषण प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले बगीचे की सफाई करते हैं, उसके थाले का निर्माण करते हैं, और पोषण कहाँ पे दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि जो भी छत्रक का फैलाव हो, उस छत्रक के फैलाव से आप एक सीधी जहाँ पर लकीर खींच दें ऊपर से नीचे तक, और तने के से और उस दूरी को चार बराबर भागों में बांट दें, यानी कि जो भी छत्रक का फैलाव हो वहाँ से और पेड़ के तने की दूरी को चार बराबर भागों में बांटें, एक भाग अंदर की तरफ एक भाग बाहर की तरफ को छोड़ दें, और बीच वाले जो दो भाग हैं उसी में मुख्यतः आप फर्टिलाइजर का उपनिवेश करें, वहीं पर फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि पौधे का अधिकतर जो है वो अवशोषी जड़ें जो होती हैं, रूट हेयर्स जो रहते हैं, जो कि पानी और पोषण का अवशोषण करते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में रहता है। इसलिए पहले थाले का सफाई करके पेड़ जो भी बगीचे में आपकी सूखी टहनियाँ, रोगग्रस्त टहनियाँ, सड़े गले पत्ते, उसको हटा दें, एक बार जुताई कर दें, फिर उसको थाले का निर्माण करके पोषण प्रबंधन करें। पोषण के रूप में अगर आपका वृक्ष जो है, बगीचा जो है, वो व्यावसायिक रूप से फल रहा है, 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर का है, तो उसके लिए आप जो है नाइट्रोजन 800 से 900 ग्राम, फॉस्फोरस 400 से 50 ग्राम और पोटास जो है 800 से 1000 ग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष दें। इसके साथ ही 40 से 50 किलो आप जो है कंपोस्ट भी उसमें डालें। ध्यान रहे कि ये मात्रा जो है प्रति वर्ष प्रति पेड़ के लिए है, और इसकी मात्रा जो इस मात्रा की 3/4 भाग आप जुलाई माह में डालें, और 1/4 भाग जो है फल के उपरांत, फल जब लग जाता है तब उसके बाद अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह में दें, ताकि उसमें फल की बढ़वार ज़्यादा अच्छे से हो सके, फल का साइज बढ़ सके। लेकिन 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में ही, जून जुलाई के महीने, जून लीची के केस में जून के अंतिम से लेकर के जुलाई अगस्त महीने तक, और आम के केस में जुलाई अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर तक आप पोषण का प्रबंधन कर लें।
1: जी कई बार मैम देखा जाता है कि आम और लीची के बागों में कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे कर सके हैं? कैसे करें?
2: कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए आपको तुड़ाई के उपरांत ही ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत ध्यान देना शुरू करें होगा। जैसा कि मैंने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ उसकी प्रूनिंग कर लें, उसकी छटाई कर लें, और जहाँ पर भी आपको लगे कि कीड़े मकोड़े हैं उसका उचित प्रबंधन कर लें। अब है कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं
1: जी।
2: लीची के केस में हम बता दें कि लीची माइट का प्रकोप बहुत होता है। इसका ये लक्षण होता है कि पत्तियाँ में जो है वो ब्राउन कलर का, कॉफ़ी के कलर का एक वेलवेट नुमा संरचना बन जाती है पत्ती के पिछले भाग में, और धीरे धीरे ये पत्ती सिकुड़ जाती है
1: जी।
2: और ये जो वेलवेट नुमा आकार का जो है बनता है वो संरचना जो बनती है पत्ती में, इसको कहते हैं इरेनियम, और उस इरेनियम के नीचे जो है वो उसके कीड़े रहते हैं, माइट के जो है वो कीड़े रहते हैं, लीची माइट के कीड़े रहते हैं। तो इसलिए जो अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आक्रांत पत्ते हैं उसको आप तोड़ करके उसको दूर, बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको, लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हैं उसको काट कर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें, और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए, और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों को काफ़ी आक्रांत करता है, एंथ्रेक्नोज के कारण फल का जो है वो रंग बड़ा ख़राब हो जाता है और काला काला पड़ने लगता है, इसलिए एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करें ताकि आपके फल की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये खासकर आम के पौधे में होता है और बरकरार रहें। कभी कभी क्या होता है, अधिक बारिश की होने की वजह से बाग में जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल निकासी की समस्या नहीं हो पाती है और पेड़ में तना छेनक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे जगहों में। तो अगर आपको तना छेदक का प्रकोप दिखे तो आप अगस्त सितंबर के महीने में जाला को साफ करके, जो भी उसका जो अगर तना छेदक का प्रकोप होता है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो छेदक जो है कुछ बुरा लकड़ी जो है अंदर के तने में घुस करके उसको लकड़ी जो है काट करके बाहर बुरादा के रूप में गिराते हैं, तो जहाँ भी आपको बुरादे के रूप में लकड़ी दिखे आम के पेड़ के बाहर, आप समझ जाइए कि इसमें तना छेदक है। और उसके उपचार के लिए उस वहाँ पर जो जहाँ पर आपको गिर रहा है वो लकड़ी का, उसको साफ करके उसको क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करें। इसके अलावा क्या होता है कि तना में छेद कर देते हैं, लीची में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तना में छेद करते हैं और बहुत जालेदार संरचना, गोल गोल संरचना बना के जाले के रूप में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आप लीची के पेड़ में जाले को साफ करें, या आम के पेड़ में भी ये प्रकोप देखने का मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें, जहाँ भी आपको छेद दिखे उसमें कपड़े में पेट्रोल लपेट के उस छेद की सफाई करें। उसके बाद न्यूबान से भींगी रुई छेद में डाल करके उस छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें और इस तरह से वो वाष्पीकृत गंध के प्रकोप से वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से आप जो है स्टेम बोरर से आप अपने लीची या आम के पौधे को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर नवम्बर महीने में रेड बेंडेड कैटरपिलर का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। आजकल किसान बहुत परेशान हैं इस रेड बेंडेड कैटरपिलर से। वो कैसे पहचानेंगे कि रेड बेंडेड कैटरपिलर है, तो आम में जो है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब देखते हैं आम के निचले भाग में एक छिद्र टाइप से दिखता है और वहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का छेद दिखता है, उसके कुछ दिन के बाद से आम नीचे से फटने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब अक्टूबर और नवंबर के माह में हम इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसके लार्वे, इसके जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में आम के पेड़ के तने जो होते हैं उसमें जो कुछ तने के जो नीचे क्रैक्स होते हैं, जो खुरदरे भाग होते हैं उसके नीचे वो अंडे छुपे रहते हैं, तो उस समय आपको बहुत आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस से बहुत अच्छी तरह से आम के पूरे तने को आप स्प्रे कर दें। अगर उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो लार्वा बाहर नहीं आ पाएगा, लार्वा बाहर नहीं आएगा तो फिर आपको इस आक्रांत से बच सकते हैं। और आजकल ये बहुत एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है, आम में 2/3 3/4 भाग कभी कभी किसी बगीचे का पूरा नष्ट हो जाता है, और इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक है ये काम आप अक्टूबर नवम्बर माह में करें
1: जी।
2: इसके अलावा अक्टूबर नवंबर माह में आपको उकठा रोग या डायबैक की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर डायबैक की समस्या में क्या होता है कि ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं, आम की हो या लीची की हो समस्या सूखने लगती हैं, तो आप इसके लिए क्या करें, प्रभावित शाखाओं को 5 से 10 सेंटीमीटर हरे भाग के साथ काट कर हटा दें। उसके बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इस तरह से जो है आप इस डायबैक के रोग से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लीची और आम में फूल आने तक, नवंबर मास के बाद से फूल आने तक कभी भी जो है सिंचाई और पोषण का प्रबंधन ना करें। आम और लीची में ध्यान रखें, आम और लीची में नवंबर माह के बाद सिंचाई और पोषण का प्रबंधन आप नहीं करें। अगर आप पोषण देते हैं, लोग क्या होता है कि वर्षा के बाद प्लॉइंग करते हैं खेत में बगीचे की खेती प्लॉइंग करते हैं और उनको लगता है कि अब ये फूल आने वाला है तो हम अच्छे से पोषण दे दें ताकि जो है हमारा आगे आने वाले साल में फलन अच्छा हो। लेकिन जब आप नवंबर महीने में आप पोषण करेंगे तो क्या होता है कि फल बनने की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होती है वो बंद होकर के पत्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके पौधे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम और लीची में पोषण का प्रबंधन आप सितंबर के माह तक ही कर लें तो बेहतर है। दूसरी बात, अक्टूबर के महीने में आप जो है बगीचे की जुताई अवश्य करें। आप हम ये नहीं करें कि आप पोषण प्रबंधन करें, अक्टूबर नवंबर महीने में बगीचे की जुताई अवश्य करें ताकि बरसात में होने वाले जो भी खरपतवार हो गए हैं उसकी सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि खरपतवार जो है कीट और रोग का एक अल्टरनेट माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। अगर कोई कीट वादी पेड़ में अगर नहीं है तो भाग करके वो तत्काल में जो है वो खरपतवार में छुप जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बरसात के बाद जो है आप एक बार बगीचे की अच्छी तरह से जुताई करें, पेड़ के में थाला बनाएं, पेड़ के थाला को साफ रखें और तूतिया चूना तूतिया और पानी का घोल 5:5:50 में बना करके पेड़ के धड़ों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक अच्छी तरह से पुताई कर दें। इससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिल पाएगा। तो ये करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे आप थाला तो बनाएंगे, थाला की सफाई करेंगे, लेकिन पोषण अभी नवंबर महीने में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको फूल बनने की प्रक्रिया बंद हो करके पुनः पत्तियां का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मिली बग जो कि आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं, कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, इसको मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें, उस मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस का भी आप समावेश कर दें और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें और उसके ऊपर नीचे पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिली बग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुजिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे, और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें ताकि आप जो गुजिया कीट से आप बचा सकें। साथ ही साथ छाल खाने वाले मतलब बार्क ईटिंग कैटरपिलर और तना छेदक कीड़ों को भी पहचान कर पहले इसका जाला साफ करें नवंबर महीने में भी, और मोनोक्रोटोफॉस या डाइक्लोरोफॉस का 0.05% के घोल से छेद में डाल करके उसको छेद बंद करें। ये सारे जो है अगर आप इस तरह का प्रबंधन दिसंबर माह तक करते हैं तो ये आप आने वाले फलन के समय में आप जो है बहुत सारे कीट और व्याधि का से आप निजात पा सकते हैं और उसके बाद आपका जो फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी उपज भी ज़्यादा होगी।
1: जी ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम, और आशा करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
3: उन्नत कृषि

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो। बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए, आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं, और आपको छुट्टी दे रहे हैं कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है, जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा, फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजह होती है और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में, अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं।

मैजिशियन भी उस वक्त रिसेट होता है, तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50 से 80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30 से 90 मिनट की देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना ले कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग ही गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं
आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज 1 बजे सोइए। आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है। तो आपका शरीर वैसे अपने आप

0: ढाल लेगा।
1: हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2 बजे 3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फ़ोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम।
1: मैम सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
2: जी ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास जमीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
1: तो मैम FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
2: जी इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है, जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं, किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपये किलो मिलता है वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपये किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाएं तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
2: जी यही तो पूरा खेल है, फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात यह है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2-3 गुना तक हो सकता है।
1: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं?
2: जी तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन है उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो है उनके साथ एक बैठक करने की जरूरत है। अपने जिले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड उनके कार्यालय में संपर्क करने की जरूरत है। सरकार भी एफपीओ बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
1: मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें एफपीओ बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
2: जी जरूर। तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो एफपीओ होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल एफपीओ के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
1: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
2: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
1: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
2: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10 से 15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
1: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता ले।
2: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
1: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
2: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
1: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि,

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।